इस वक्त आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

इस वक्त आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी यूं ही सुनते रहे।

91.2 MHz पर ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तने मैं शशी हाजिर होइयो कार्यक्रम लेकरी माती दी महक तशुतों कर दिन अपने कार्यक्रम दी शुरुआत इस प्यारे दे गीते करने तो तुहां सारे इन्हें सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

दर्शकों तो सारे ही सुने प्यारा दिया गीत दर्शकों फिर ते अपने कार्यक्रम च अगे बढ़ना है कने जेड़ा कार्यक्रम दा सफर है सह फिर ते अगे बढ़ाना है फिर ते सुनदे निक प्यारा दिया गीत तो सारे भी सुना कने सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

सारे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला ताशोता तुम्हारे सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देन अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि करने तुम्हारे सारे सुना देन अपना माटी दी महक कार्यक्रम ताशोता फिर यहाँ तुम्हें ले चल देन एक गीत संगीत दी तरफ तुम्हारे भी सुना कने नहीं सुन दे रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह तुहां सारिआं दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। श्रोताओं तुहां सारे इस टाइम जिहड़ा कार्यक्रम सुनांदे ने से सुनांदे ने माशनी दी महक अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि कन्नै। तो कार्यक्रम च फिर अहां अगे बढ़ना है जिहड़ा कि तुहां दा ध्यान है से फिर एक गीत संगीत दी तरफ ले चलदे ने।

तो तुम्हारे सारे ही सुने प्यारा दिया गीत तो फिर ते आपने कार्यक्रम च अगे बढ़ना है कने जेड़ा कार्यक्रम दा सफर है से फिर ते आहां अगे बढ़ाना है फिर ते सुनदे निक प्यारा दिया गीत तो तुम्हारे सारे भी सुना कने सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

मतलब 2 MHz पर ये है तुम्हारा सारे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। काश तो तुम्हारा सारे कार्यक्रम सुना दे थे अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि कन्ने। कार्यक्रम दा जेड़ा सफर है सही संपन्न होंदा तो तुम्हारा सारे अपने रेडियो दोस्त शशि दे अनुमति कन्ने सुन दे रहे अपना रेडियो गुंजन धर्म।

0: लो आ गई फायर ब्रिगेड।
1: चुप कर माँ, कितनी बार कहा है बिजली बचाओ।
2: अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है, और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो। बिल भर देंगे पापा।
1: माँ बात बिल की नहीं है, बात खपत की है। देखो बिजली कहाँ से आती है, थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, और पता है इससे जो फ्लाई ऐश निकलती है वो हवा पानी और मिट्टी तीनों को प्रदूषित करती है।
0: हमें उससे क्या,
1: उपभोग कम तो मांग कम, पावर प्लांट से प्रोडक्शन का बोझ कम, समझे?
0: आना समझ गया।
1: मम्मा पानी बंद करो, ये भी बिजली से ही आता है।
3: सुविधाओं का इस्तेमाल समझदारी से करें, जरूरत के अनुसार ही पानी और बिजली खर्च करें। उत्पादन का बोझ होगा कम तो सुरक्षित पर्यावरण और हम।

0: आपकी इसकी खासियत तेज चल रही है, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा।
1: तुम तो यूं ही घबरा जाती हो।
2: अच्छा, मेरी एग्जाम कब है?
1: एग्जाम?
2: हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है?
1: बेटा, ये सब माँ को पता होगा ना?
2: पापा, जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना।
3: चलो अस्पताल चलते हैं।
4: इसे निमोनिया हुआ है, सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही।
5: पार्थ, याद रखना, जिंदगी कल से शुरू नहीं होती, क्योंकि वो कल कभी आता ही नहीं। जो तुम आज नहीं कर सकते, उसे तुम कल भी कभी नहीं कर पाओगे। हम अक्सर कल के इंतजार में अपना आज खो देते हैं और फिर एक दिन बस अफसोस ही बाकी रह जाता है। अगर जीतना है तो आज से ही लड़ना सीखो, क्योंकि बहाने बनाने वालों के लिए मंजिल हमेशा दूर होती है। अपनी मेहनत को कल पर मत टालो, क्योंकि वक्त किसी का सगा नहीं होता। उठो और आज ही कुछ ऐसा करो कि तुम्हारा कल खुद बदल जाए।
6: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
7: हेलो सर, सर मैं फॉर्चुनेट लॉटरी से अनुज।
8: हाँ बोलिए।
7: बधाई हो सर, आपको 10 लाख की लॉटरी लगी है।
8: 10 लाख? सच्ची?
7: जी जी सर। एंड सर, आपको क्लेम करने के लिए सिर्फ 10,000 की रजिस्ट्रेशन फी देनी होगी।
8: 10,000 की रजिस्ट्रेशन? क्यों?
7: सर ये वन टाइम प्रोसेसिंग फी है।
8: ओके।
7: इससे आपकी लॉटरी पे टैक्स भी नहीं लगेगा।
8: अच्छा।
7: सर मैं पेमेंट के लिंक भेज रहा हूँ, आप उस पे ट्रांसफर कर दीजिए।
8: अच्छा, ये लिंक?
7: यस सर।
9: मछली तो फंस गई। शिंगे, और ये स्क्रीन का फोटो लो। हार्ड डिस्क, सारे हार्ड डिस्क उठाओ। याद रखिए, ऐसे फर्जी लॉटरी कॉल्स पे या उनसे आए मैसेजेस पे विश्वास ना करें, ना ही किसी अनजान लिंक पे क्लिक करें। तो सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
10: चलो बच्चों, खाना लग गया।
11: पर ये क्या माँ, ये तो हरी हरी सब्जियाँ हैं।
12: कुछ अच्छा नहीं बनाया।
10: अरे ये हरी सब्जी ही है सबसे अच्छी। हरी सब्जियाँ बच्चों,

0: अरे 6 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चे बने स्वस्थ और तंदुरुस्त।
1: सुनो तुम पढ़ी लिखी हो?
2: हाँ बिल्कुल।
1: तो मेरे एक सवाल का जवाब दो।
2: पूछो।
1: रेडियो और अखबार में क्या फर्क है?
2: सिंपल, रेडियो में रोटी नहीं लपेट सकते।
1: वाटसन यूनिवर्सिटी से पढ़ी हो?
2: हाँ, तुम्हें कैसे पता?
1: बस गेस कर रहा था।
2: तुम्हारे गेस भी
3: कौन है? कहाँ से आते हैं?

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोतो, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

0: तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।
1: ये पर्दा हटा

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मन पसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: कारवा मिनी,
2: ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

तो श्रोतो, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मन पसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्म।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 MHz पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने, नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोतो, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 FM पर आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे गीत सुहाने नए पुराने अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: लो आ गई फायर ब्रिगेड।
1: चुप कर माँ, कितनी बार कहा है बिजली बचाओ,
2: अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है। और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो, बिल भर देंगे पापा।
1: माँ बात बिल की नहीं है, बात खपत की है। देखो बिजली कहाँ से आती है, थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, और पता है इससे जो फ्लाई ऐश निकलती है वो हवा पानी और मिट्टी तीनों को प्रदूषित करती है।
0: हमें उससे क्या,
1: उपभोग कम तो मांग कम, पावर प्लांट से प्रोडक्शन का बोझ कम, समझे?
0: आना समझ गया।
1: मम्मा पानी बंद करो, ये भी बिजली से ही आता है।
3: सुविधाओं का इस्तेमाल समझदारी से करें, जरूरत के अनुसार ही पानी और बिजली खर्च करें। उत्पादन का बोझ होगा कम तो सुरक्षित पर्यावरण और हम।

0: देखिए इसकी सांसें तेज चल रही है, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा।
1: तुम तो यूं ही घबरा जाती हो।
2: अच्छा मेरी एग्जाम कब है?
1: एग्जाम?
2: हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है?
1: बेटा ये सब माँ को पता होगा ना।
2: पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना।
1: चलो अस्पताल चलते हैं।
3: इसे निमोनिया हुआ है, सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही।
4: पार्थ याद रखना, जिंदगी कल से शुरू नहीं होती, क्योंकि वो कल कभी आता ही नहीं। जो तुम आज नहीं कर सकते उसे तुम कल भी कभी नहीं कर पाओगे। हम अक्सर कल के इंतजार में अपना आज खो देते हैं और फिर एक दिन बस अफसोस ही बाकी रह जाता है। अगर जीतना है तो आज से ही लड़ना सीखो, क्योंकि बहाने बनाने वालों के लिए मंजिल हमेशा दूर होती है। अपनी मेहनत को कल पर मत टालो, क्योंकि वक्त किसी का सगा नहीं होता। उठो और आज ही कुछ ऐसा करो कि तुम्हारा कल खुद बदल जाए।
5: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
6: हेलो।
7: हेलो सर। सर मैं फॉर्चुनेट लॉटरी से अनुज।
6: हाँ बोलिए।
7: बधाई हो सर, आपको 10 लाख की लॉटरी लगी है।
6: 10 लाख? सच्ची?
7: जी जी सर। एंड सर आपको क्लेम करने के लिए सिर्फ 10,000 की रजिस्ट्रेशन फी देनी होगी।
6: 10,000 की रजिस्ट्रेशन? क्यों?
7: सर ये वन टाइम प्रोसेसिंग फी है।
6: ओके।
7: इससे आपकी लॉटरी पे टैक्स भी नहीं लगेगा।
6: अच्छा।
7: सर मैं पेमेंट की लिंक भेज रहा हूँ, आप उस पर ट्रांसफर कर दीजिए।
6: अच्छा ये ले।
7: यस सर।
8: मछली तो फंस गई।
9: शिंगे
10: देखो, और ये स्क्रीन का फोटो लो। हार्ड डिस्क, सारे हार्ड डिस्क उठाओ। याद रखिए, ऐसे फर्जी लॉटरी कॉल्स पे या उनसे आए मैसेजेस पे विश्वास ना करें, ना ही किसी अनजान लिंक पे क्लिक करें। तो सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
11: चलो बच्चों खाना लग गया।
12: पर ये क्या माँ, ये तो हरी हरी सब्जियाँ है।
13: कुछ अच्छा नहीं बनाया।
11: अरे ये हरी सब्जी ही है सबसे अच्छी। हरी सब्जियाँ बच्चों खाओ।

0: विटामिन्स और मिनरल से ये सब है भरे। 6 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चे बने स्वस्थ और तंदुरुस्त।
1: सुनो, तुम पढ़ी लिखी हो?
2: हाँ बिल्कुल।
1: तो मेरे एक सवाल का जवाब दो।
2: पूछो।
1: रेडियो और अखबार में क्या फर्क है?
2: सिंपल, रेडियो में रोटी नहीं लपेट सकते।
1: वाटसन यूनिवर्सिटी से पढ़ी हो?
2: हाँ, तुम्हें कैसे पता?
1: बस गेस कर रहा था।
2: तुम्हारे गेस भी
3: कौन है? कहाँ से आते हैं?

फ्रीक्वेंसी 91.2 पर श्रोता इस समय आप जुड़ चुके हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। और हाँ, आज का कार्यक्रम लेकर हाजिर हुई है आपकी दोस्त सुमन। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारी ओर से प्यार भरी नमस्ते। और श्रोताओं, सुबह हो चुकी है, संडे का दिन है और बारिश लगी हुई है। इस प्यारी सी बारिश में हर किसी का मन करता है कि थोड़ा सा सोए रहे, थोड़ा ज़्यादा सो लें, क्योंकि हर दिन की भाग दौड़ में तो जल्दी होती है अपने कामकाज पर जाने की और सभी जल्दी उठकर निकल पड़ते हैं अपने अपने कामकाज पर। लेकिन आज है छुट्टी का दिन और छुट्टी के दिन तकरीबन हमारे श्रोता लेट उठते हैं। वैसे उनमें से कोई श्रोता ऐसे हैं जिन्हें जल्दी उठने की भी आदत है, भाई उन्हें रूटीन बन चुकी है उनकी जल्दी उठने की और ढेर सारे काम होते हैं और उठ जाते हैं वो। लेकिन सबका अपना अपना हिसाब होता है, सब अपने अपने तरीके से जीते हैं। कुछ जल्दी उठते हैं तो कुछ लेट उठते हैं, लेकिन छुट्टी का दिन होता है फन डे, खुशी का दिन, मौज मस्ती का दिन, आराम का दिन और बहुत सारे काम भी होते हैं। तो श्रोताओ, खैर, काम तो ज़िंदगी के ख़त्म नहीं होते हैं, काम तो यूं ही चलते रहते हैं। फ़िलहाल हम भी थोड़ा सा काम कर लेते हैं अपने दोस्तों तक प्यारा सा गीत पहुँचाने का। खैर, एक श्रोताओ, आपका प्यार है हमें जो खींच लाता है आपकी और, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्यार हमें आपसे हुआ है, थोड़ा अभी करना बाकी है। तो ये मिलजुल कर एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत। तो आप

तो इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, राज का कार्यक्रम लेकर हाजिर हुई है आपकी दोस्त सुमंत। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात हम मुस्कुराहट की करते हैं। मुस्कुराहट का कहते हैं कोई मोल नहीं होता, रिश्तों का कोई तोल नहीं होता, इंसान तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता है। जी हाँ, हमारे दोस्त बहुत ही अनमोल है हम सभी के लिए, और साथ ही साथ दोस्ती का रिश्ता इतना प्यारा और इतना मजबूत है कि श्रोताओं, हम हर दिन चले आते हैं आपसे मिलने और ढेर सारी बातें और जानकारियां आपके साथ साझा करने। जानकारियों का सिलसिला अभी जारी रहेगा क्योंकि समय अभी हमारे पास बहुत सारा है, अभी तो शुरुआत हुई है, देखिए धीरे धीरे क्या होता है। तो हम कार्यक्रम में और भी बातें और जानकारियां साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में रुकते हैं और आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन कार्यक्रम के इस अगले प्यारे से गीत के साथ। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

फ्रीक्वेंसी 91.2 पर श्रोता, इस समय आप जुड़ चुके हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में जो अभी अभी श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हें एक बार फिर से हमारी ओर से प्यार भरी नमस्ते। इसी नमस्ते के साथ ही श्रोता, थोड़ा सा वेदर की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि आज बारिश हो रही है। सुबह से बारिश लगी हुई है और इस बारिश में, इस बरसाती मौसम में हम सभी को अपना ध्यान और ख्याल रखना है। मौसम कोई भी हो श्रोताओं, थोड़ी सी परेशानियां लेकर ज़रूर आता है, लेकिन मौसम का बदलाव भी ज़रूरी है। तो आप रखिए अपना ध्यान और ख्याल और जल्द कार्यक्रम में एक बार फिर से आप तक पहुंचा देते हैं कार्यक्रम का ये गीत। तो आप कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिएगा रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: श्रोता, इसी प्यारे से गीत के साथ है कार्यक्रम में समय हो गया है 9:20। आइए सुनते हैं समाचार।
1: असाध्य व गंभीर रोगों से पीड़ित लोगों के लिए प्रदान कर रही संबल। अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून 17 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार की नई पहलों के बाद राज्य में प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कल देर सायं कृषि विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को इस दिशा में पूर्ण दक्षता व लगन से कार्य करने के उन्होंने निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को प्राकृतिक खेती से तैयार किए गए उत्पादों को बाजार उपलब्ध करवाने के लिए कृषि विभाग में अलग मार्केटिंग विंग स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने इन उत्पादों की डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पर बिक्री की संभावनाएं तलाशने को भी कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के 2.5 लाख से अधिक किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो किसान खेती छोड़ चुके थे वे भी अब दोबारा खेती की ओर लौट रहे हैं और प्राकृतिक खेती में रुचि दिखा रहे हैं। अधिक ब्यौरे के साथ समाचार कक्ष से हमारी सहयोगी।
2: हिमाचल देश का पहला राज्य है जिसने प्राकृतिक खेती से तैयार की गई फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किया है। राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार की गई फसलों की MSP में भी उल्लेखनीय वृद्धि की है। अब प्राकृतिक खेती से तैयार किए गए गेहूं की खरीद 80 रुपए, मक्की की 50 रुपए तथा कच्ची हल्दी की 150 रुपए प्रति किलोग्राम और पांगी घाटी के जौ की 80 रुपए प्रति किलोग्राम तथा अदरक 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने के बाद प्रदेश में दूध उत्पादन तथा सहकारी डेयरी प्रणाली से जुड़ने वाले किसानों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। सरकार ने गाय के दूध का MSP 32 रुपए से बढ़ाकर 61 रुपए प्रति लीटर तथा भैंस के दूध का MSP 47 रुपए से बढ़ाकर 71 रुपए प्रति लीटर कर दिया है। सरकार की इस पहल का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत डेयरी किसानों के अलावा अधिक से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ सुनिश्चित करना है। राज्य सरकार ने पिछले 3.5 वर्षों में प्रदेश के दूध उत्पादकों को 300 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। मुख्यमंत्री ने बैठक में कृषि विभाग को कांगड़ा जिले के बड़ा भंगाल क्षेत्र को प्राकृतिक खेती पंचायत घोषित करने की सभी औपचारिकताएं शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने बड़ा भंगाल क्षेत्र में उगाई जाने वाली राजमा के लिए भौगोलिक संकेतक GI टैग प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू करने के भी निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचारों के लिए समाचार कक्ष से मैं गोदावरी वर्मा।
1: केंद्र सरकार ने मूल्य स्थितिकरण बफर के लिए प्याज की खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि संशोधित खरीद मूल्य से प्याज उत्पादक किसानों को बेहतर लाभ मिलेगा और साथ ही बफर खरीद प्रयासों को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार के मूल्य स्थितिकरण बफर के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड NAFED और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। कृषि और किसान कल्याण विभाग के वर्ष 2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान है। मंत्रालय ने कहा है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में वर्तमान स्टॉक पर्याप्त है और फिलहाल प्याज के भंडार में कोई कमी नहीं है। बारिश और ओलावृष्टि से प्रदेश के बागवानों की चिंताएं बढ़ गई है। सेब सहित स्टोन फ्रूट की पैदावार कम होने से बागवानों की परेशानी बढ़ गई है। बागवानों का कहना है कि मौसम की बेरुखी के चलते फसल बेहद कम हुई है। दवाइयां और उपकरण महंगे हो गए हैं, खर्चा ज्यादा और आय ना के बराबर रह गई है। इस बार सेब का उत्पादन 6,99,000 मीट्रिक टन से घटकर करीब 4,36,000 मीट्रिक टन रहने का अनुमान है।
3: फल राज्य होने के साथ साथ इसमें 5,000 करोड़ की इकोनॉमी का जो कंट्रीब्यूशन रहता है और इसमें लगभग 4.5 लाख किसान इसके अंतर्गत काम करते हैं जिनका जो इस बागवानी से जुड़े हैं। तो इस बारी जो एक्सपेक्टेड जो प्रोडक्शन है एप्पल के अंतर्गत तो वो इस बारी थोड़ा लास्ट ईयर से कम रहेगी, जो जिसका अनुमान लगभग 4,36,000 मीट्रिक टन के आसपास विभाग ने लगाया है। जो प्रोडक्शन में कमी आ रही है तो थोड़ा सा जो ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है और थोड़ा टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, 1 से 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ चुका है, तो लोगों से यही सलाह हमारी विभाग की भी रहेगी कि थोड़ा सा जो विभाग द्वारा जो भी वैरायटीज और जो हम बताते हैं तो उसकी तरफ लोग अपना आइडेंटिटी की तरफ भी जाएं।
1: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पात्र शिक्षक 10 जुलाई तक ऑनलाइन नामांकन भर सकते हैं। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग द्वारा देश भर के पात्र शिक्षकों से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए ऑनलाइन स्व नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य उन उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित करना है जिन्होंने अपने समर्पण, नवाचार व उत्कृष्ट शिक्षण कार्य के माध्यम से विद्यार्थियों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऑनलाइन स्व नामांकन पोर्टल 15 जून से खुल चुका है। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी सहारा योजना जनजातीय जिला किन्नौर में गंभीर व असाध्य बीमारियों से पीड़ित जरूरतमंद लोगों के लिए बड़ी राहत प्रदान कर रही है। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। हाल ही में इस योजना का संचालन स्वास्थ्य विभाग से सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग को हस्तांतरित किया गया है। अधिक जानकारी के साथ हमारी किन्नौर जिला संवाददाता।
4: जिला कल्याण अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में किन्नौर में सहारा योजना के 25 सक्रिय लाभार्थी हैं। लाभार्थियों की EKYC प्रक्रिया प्रगति पर है। प्रक्रिया पूरी होते ही पात्र लाभार्थियों को नियमानुसार वित्तीय सहायता उपलब्ध करा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि किन्नौर जैसे जनजातीय एवं दुर्गम क्षेत्र में गंभीर बीमारियों का उपचार कराने में लोगों को आर्थिक और भौगोलिक दोनों तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जिला कल्याण अधिकारी ने जिले के पात्र नागरिकों से अपील की कि यदि वे सहारा योजना के लिए पात्र हैं तो वे अपने निकटतम तहसील कल्याण कार्यालय अथवा जिला कल्याण कार्यालय से संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त करें और समय पर सभी औपचारिकताएं पूरी करें ताकि उन्हें योजना का लाभ मिल सके। आकाशवाणी के लिए किन्नौर से मैं सुमेश नेगी।
1: राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हालांकि मौसम विभाग ने आज प्रदेश में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। जनजातीय जिला किन्नौर में मौसम साफ है जबकि लाहौल स्पीति में बादल छाए हुए हैं। धर्मशाला में सुबह से ही बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 6 व 7 जुलाई को राज्य में वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है जबकि 8 व 9 जुलाई को राज्य में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते लोक निर्माण विभाग में फील्ड में तैनात कर्मचारियों की छुट्टियां अगले आदेश तक रद्द कर दी गई हैं। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान राज्य के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। लाहौल स्पीति जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने चंद्रभागा नदी में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जोबरंग पुल पर आवाजाही को लेकर सार्वजनिक सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है। प्रशासन ने जोबरंग पंचायत और आसपास के क्षेत्रों के लोगों से अपील की है कि यदि पुल के ऊपर से पानी बह रहा हो या नदी का जलस्तर अधिक हो तो किसी भी परिस्थिति में पुल पार करने का प्रयास न करें। चिकित्सा, आपातकाल या अन्य जरूरी परिस्थितियों में लोग पंचायत प्रतिनिधियों या जिला आपदा संचालन केंद्र से संपर्क व सहायता प्राप्त कर सकते हैं। जिला प्रशासन ने बताया है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि आधिकारिक निर्देशों का पालन करें, अनावश्यक जोखिम न उठाएं और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला का शीर्षक है हिमाचल में इसी माह मंत्रिमंडल विस्तार संभव, फेरबदल भी होगा। पंजाब केसरी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से लिखता है हाईकमान की अनुमति के बाद भरा जाएगा मंत्री पद। दैनिक जागरण उच्च न्यायालय के हवाले से लिखता है कृत्रिम ब्रेक देकर नहीं रोक सकते नियमितीकरण, हाईकोर्ट ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के हक में सुनाया फैसला। दैनिक भास्कर लिखता है लोअर मिडल बेल्ट में कम फसल के बीच 15 से सेब सीजन शुरू होगा, ओलावृष्टि से फसल बर्बाद, 1,31,00,000 पेटियां घटने का अनुमान। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा आयोजित। प्रदेश में प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों की लगातार बढ़ रही संख्या, मुख्यमंत्री ने इस दिशा में अधिकारियों को गति लाने के दिए निर्देश। बारिश और ओलावृष्टि से प्रदेश के बागवानों की चिंताएं बढ़ीं और किन्नौर जिला में सहारा योजना असाध्य व गंभीर रोगों से पीड़ित लोगों के लिए प्रदान कर रही संबल। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

श्रोताओं, इसी गूंज के साथ कार्यक्रम में हम फिर से वापस आ चुके हैं और थोड़ा सा बरसात की हम बात कर रहे थे। बरसात का मौसम चल रहा है तो थोड़ा सा हम सभी को अपना ध्यान रखना है और बरसात के मौसम की कुछ सावधानियां भी होती हैं। जी हाँ श्रोताओं, बरसात के मौसम में स्वस्थ और सुरक्षित रहने के लिए हमें थोड़ा सा खुद को अपना सभी को ध्यान रखना है। जैसे अब उबला हुआ और फिल्टर किया हुआ पानी ज़रूर पिए, क्योंकि बरसाती मौसम में पानी साफ़ सुथरा ना होने की वजह से बहुत सारी बीमारियां जो हैं हमें घेर लेती है, पेट दर्द, दस्त इत्यादि लग जाते हैं। और दूषित खाद्य पदार्थों से भी बचना है, साथ ही साथ जल भराव वाले स्थानों से दूरी बनाकर रखनी है। अपने आसपास पानी जमे नहीं होने देना है, इससे डेंगू मलेरिया जैसे मच्छरों से बचाव हो सकता है। हम सभी जानते हैं कि हमारे घरों के आसपास नालियां होती हैं और उन नालियों में पानी इकट्ठा हो जाता है और जहां पर पानी इकट्ठा होता है वहां पर मच्छर पनपने की संभावना होती है। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के श्रोताओं, हम सभी को अपना ध्यान और ख्याल रखना है। और शुद्ध पानी की हम बात करें तो हमेशा उबला या शुद्ध किया हुआ पानी पीना है। पेट से जुड़ी बीमारियों से बचने के लिए बाहर का पानी पीने से बचना है। इसके साथ साथ हमेशा हमें ताज़ा खाना खाना चाहिए और उतना ही बनाना चाहिए जितना एक समय में पूरा हो जाए। कई बार क्या होता है कि स्ट्रीट फूड खाने के हम सभी शौकीन होते हैं और मन करता है कुछ चटपटा खाने के लिए, तो श्रोता हम जाते हैं रेहड़ी पर चटपटा खाने के लिए, तो कई बार क्या होता है कि खाना जो है साफ़ सुथरा नहीं बना होता है और उसकी वजह से हम लोग जो है बीमार पड़ जाते हैं। और कुछ दिन बीमार रहने की वजह से दवाइयाँ भी खाना पड़ती हैं और हमारा जो खाना पीना है वो भी छूट जाता है। तो इसलिए जितना हो सके बरसाती मौसम में बाहर का खाना खाने से परहेज रखना चाहिए। चाट पकौड़ी कुछ भी खाने को मन करता हो तो हम घर पर इस तरह की चीज़ें बनाकर खा सकती हैं। और किसी भी चीज़ को खाने से पहले और घर पर आते ही हमें अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धो लेना चाहिए, क्योंकि बाहर जब हम जाते हैं तो बहुत सारे कीटाणु हमारे हाथों से लगते हैं, हर जगह को हम छूते हैं और फिर क्या होता है कि वो कीटाणु लग जाते हैं और बिना हाथ धोए जब हम खाना खाते हैं तो वो कीटाणु हमारे पेट में चले जाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आए दिन आपने भी देखा होगा बरसाती दिनों में हम सभी को पेट में दर्द होती ही रहती है, कुछ भी खा ले तो वो ऐसा लगता है कि पेट में दर्द हो रही है, तो कारण यही रहता है हाथ साफ ना होना, पानी साफ ना पीना या इसके साथ साथ खाना जो है बाहर खाना जो है पेट में तकलीफ पैदा करता है। इसके साथ साथ अगर हम श्रोताओं कपड़ों की बात करें तो हल्के हवादार और जल्दी सूखने वाले कपड़े पहनने चाहिए। गीले कपड़े ज़्यादा देर तक नहीं पहनने चाहिए, नहीं तो फंगस इन्फेक्शन हो जाता है। और कई बार क्या होता है कि ज़्यादा देर तक हम उन्हीं गीले कपड़ों में बैठे रहे तो उसे ठंड चढ़ने की भी संभावना बनी रहती है। और जहाँ तक हो सके जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं या कार्यालय जा रहे हैं तो अपना अच्छे से अपना छाता या बरसाती ज़रूर डालकर जाएं, ताकि सारा दिन आप भीगे ना रहे। अगर इस तरह का लगता है तो अपना एक जोड़ी सूट अपने साथ आप रख सकते हैं, ताकि गीले होने के बाद आप उन्हें चेंज कर सकें और पूरा दिन आपका अच्छा निकल सके। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में हम और भी जानकारियां आपके साथ साझा करेंगी। फिलहाल कार्यक्रम में रुकते हैं और आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत के साथ। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोतो, इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम आप सभी के रेडियो सेट पर इस वक्त चल रहा है गुड मॉर्निंग धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में हम बरसाती मौसम की कुछ सावधानियां आपके साथ साझा कर रहे थे श्रोतो। तो मच्छरों से बचाव इन दिनों में बेहद ज़रूरी होता है। घर के आसपास जैसे हमने पहले भी बात की, पानी जमा ना होने दे, कूलर गमलों और नालियों में पानी ना रुकने दे। सोते समय मच्छरदानी का उपयोग कर सकते हैं। खैर आजकल लोग मच्छरदानी का उपयोग बहुत कम करते हैं, लेकिन कहीं कहीं गाँव में आज भी इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। शहरों की बात करें तो हर तरफ जाली वाले दरवाजे, खिड़कियों पर जालियाँ या फिर बहुत सारे ऐसे मच्छरों से बचाव के लिए हम घर पर जो है इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्ट, तो साथ ही साथ शरीर को भी बचाने के लिए क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ अगर गीले उपकरणों को ना छूने की बात करें तो भीगे हाथों से बिजली के स्विच, प्लग या किसी अन्य उपकरण को बिल्कुल नहीं छूना चाहिए। बिजली की तारों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। अक्सर हम सभी जानते हैं कि हम सभी के घरों पर छोटे बच्चे ज़रूर होते हैं और बेहद शरारती होते हैं, क्योंकि शरारत करने का भी समय यही होता है। लेकिन हम अभिभावकों को, हम बड़ों को इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे कहीं भी किसी भी समय हाथ लगा सकते हैं। तो बिजली के उपकरणों में कहीं भी तार नंगी ना हो, अगर ऐसा है तो उसे टेप कर दें या फिर बिजली वाले को बुलाकर सही से समाधान ज़रूर करें। और जिनके घरों पर प्लग नीचे लगे हैं, शू नीचे लगे हुए हैं, तो उनको ज़रूर बंद करवा दें या ऊपर उठवा के हम लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान इधर उधर होता है और बच्चे कई बार क्या होता है कि उंगली उसके बीच में डाल देते हैं, स्विच ऑन कर देते हैं और दुर्घटना हो जाती है। तो इन छोटी छोटी बातों का श्रोतों हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। बरसात के अलावा भी बच्चे इस तरह के शरारतें करते हैं, तो जिन घरों में बच्चे छोटे हैं उन पर बिल्कुल भी स्विच नीचे नहीं होने चाहिए, बिजली के बोर्ड नीचे नहीं होने चाहिए, ताकि बच्चे इनसे शरारतें ना करें। अब घर और सफ़र पर हमें जाना हो तो हमेशा छोटी मेडिकल किट, टॉर्च, पावर बैंक और ज़रूरी कुछ दवाएं ज़रूर साथ रखें। आजकल का समय ऐसा है कि हर कोई दवाइयों पर डिपेंड है, हर कोई दवाई खा रहा है। या फिर सफ़र की बात करें तो किसी को उल्टी, किसी को पेट दर्द, किसी को पेचिस, इस तरह की परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। और कई बार तो क्या होता है, सर दर्द भी सफ़र की वजह से हो जाती है। तो छोटी छोटी दवाइयां अपने पास से ज़रूर रखें, इस तरह की परेशानी होने पर आपको इधर उधर ना भटकना पड़े। तो श्रोता, बरसाती मौसम में सावधानियां बेहद ज़रूरी होती हैं। सावधानियों के साथ साथ हम सभी को थोड़ा सौड़ा गीत संगीत की और भी रुख करना चाहिए, क्योंकि गीत कार्यक्रम में बेहद ज़रूरी होते हैं। अगर गीत ना हो तो थोड़ा सा कार्यक्रम में अधूरापन लगता है। तो आइए इस अधूरेपन को दूर करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं।

चलो, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से हमारी वापसी हो चुकी है, क्योंकि अभी जानकारियां हमारे पास बहुत सारी है। तो आइए फिर हम जानकारियों की ओर रुख करते हैं। अब हम थोड़ी सी बात जो है करते हैं दोस्ती पर। दोस्ती या मित्रता दो या दो से अधिक लोगों के बीच में स्नेह और विश्वास का एक अनमोल और पवित्र रिश्ता होता है। ये उन चुनिंदा रिश्तों में से है जिसे व्यक्ति या हम लोग खुद चुनते हैं। सच्चा दोस्त वह होता है श्रोता, जो दुख सुख में साथ देता है, ज़रूरत पड़ने पर सही सलाह, और कभी अपनी दोस्ती में स्वार्थ नहीं आने देता है। और दोस्ती का रिश्ता ही श्रोता वह रिश्ता होता है जहां हम अपने दिल की बात कह सकते हैं, जो बात हम अपने पारिवारिक रिश्तों में नहीं कह सकते हैं। दोस्ती में भरोसा भी होना चाहिए। किसी भी रिश्ते की नींव विश्वास पर टिकी होती है, और दोस्ती में ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। सच्चा दोस्त हमेशा सच बोलता है और भावनाओं तथा विचारों का सम्मान करता है। इसके साथ साथ श्रोताओं, अच्छे दोस्त बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करते हैं और अकेलेपन व मुश्किलों में लड़ने में भी मदद करते हैं। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में हम और भी जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल थोड़ा सा फिर से कार्यक्रम में रुकते हैं और आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन कार्यक्रम के इस अगले प्यारे से गीत के साथ। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओं, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में हम रिश्तों की बात कर रहे थे, विश्वास की बात कर रहे थे। ये रिश्ते विश्वास की डोरी से बंधे होते हैं। दोस्ती, प्यार, तकरार और सबसे ज़रूरी सहयोग का रिश्ता होता है। कई बार यही दोस्ती हमें किसी बाहर के शख्स से नहीं मिलती, बल्कि खून के रिश्तों में ही दोस्ती मिल जाती है। कभी भाई सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है तो कभी बहन सबसे अच्छी और प्यारी दोस्त बन जाती है, और कई बार हमारे माँ बाप ही हमारे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो बिल्कुल सही कहा ना दोस्तों, इसी तरह से माता पिता में दोस्ती होना बेहद ज़रूरी होती है। अगर माता पिता यानी अभिभावक अपने बच्चों के साथ दोस्त बनकर रहते हैं तो बच्चे अपने दिल की हर एक बात अपने पेरेंट्स के साथ साझा करते हैं, और इसी तरह का हमारा रिश्ता होना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे जो है कहीं गलत राह पर चल रहे हों तो हम उन्हें सही राह दिखा सकते हैं। और पारिवारिक रिश्तों में बहुत सारे दोस्ती के रिश्ते मिल जाते हैं। बचपन में बहनों के साथ खेलने, झगड़ने और फिर मनाने का जो रिश्ता होता है, वही भावनाएं उम्र में बड़े होने के साथ साथ दोस्ती का रूप ले लेती हैं। बहनों के रूप में मिली ये दोस्त सिर्फ साथ हंसने और रोने के लिए नहीं होती है, बल्कि जीवन के हर उतार चढ़ाव में एक सच्चे साथी की तरह हमारे साथ खड़ी भी रहती है, और खुशियों में सबसे पहले तालियां बजाती है और गम में सबसे पहले आंसू बहाती है। और बहुत प्यारी, प्यारा सा और प्यारी हमारी बहना होती है, प्यारा सा रिश्ता होता है, और जो है हमारी चुप्पी को भी पढ़ लेती है और बिना किसी स्वार्थ के हमारी भलाई चाहती है। जी हाँ श्रोताओं, हमारी बहनों के साथ दोस्ती का रिश्ता इसी तरह से रहता है, और बहनें, बड़ी बहनें जो हों वो कभी माँ भी बन जाती है और माँ का प्यार भी हमें देती हैं, और बहुत अच्छा और प्यारा रिश्ता होता है। जिनकी बहनें हैं उन्हें तो बहुत खुशी मिलती है। हम में से कुछ श्रोता ऐसे भी हैं जो अकेले हैं, उनकी बहनें नहीं हैं, तो खैर बहुत सारे समाज में इस तरह के लोग मिल जाते हैं, अपने कज़न में, अपनी रिश्तेदारी में, तो आप उनके साथ ही से प्यारे से मजबूत से रिश्ते को निभा सकते हैं। और दोस्ती का रिश्ता खैर हम भी निभाते हैं, और बढ़ते हैं कार्यक्रम में गीत संगीत की ओर, और सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोता, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में फिर से हम वापस आ चुके हैं और बात हम दोस्ती के ऊपर कर रहे थे, खासकर बहनों की दोस्ती के ऊपर। बहनों का रिश्ता इस तरह का होता है, जो बात हम कहीं नहीं कह सकते हैं वो अपनी बहन से बेझिझक कह डालते हैं। दोस्त या किसी अन्य व्यक्ति को कहने से इसलिए डरते हैं कि हमें लगता है कि वो कहीं हमारी बात को बाहर ना कर दे। और बहन का रिश्ता ऐसा होता है, वो हमारी हर परिस्थिति को जानती है, उसे हमें क्या तकलीफ़ है वो इन चीज़ों से वाकिफ़ होती है, इसलिए हमारी किसी भी बात को बाहर नहीं निकालती है। जी हाँ श्रोताओ, दोस्ती में तकरार और थोड़े बहुत लड़ाई ज़रूर होती है, लेकिन बहनों की डांट में प्यार छुपा होता है, उनकी सलाह में सच्चाई, उनकी मुस्कान में ढेर सारी दुआएं होती है। बहन जैसी दोस्त न सिर्फ हमें अच्छे वक्त में हमारे साथ रहती है, बल्कि तनाव या किसी गहरे दुख या कष्ट से भी हमें बाहर निकालती है। बहन का हमें बहुत सहारा होता है, वो हमारी ताकत, हमारी प्रेरणा और कभी कभार हमारी माँ भी बन जाती है। तो श्रोता, बहुत प्यारा सा मजबूत सा रिश्ता होता है, इसी रिश्ते को और गहरा करते हैं और आप तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोतो, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में फिर से हम वापस आ चुके हैं और दोस्ती की बात हम कार्यक्रम में कर रहे थे। दोस्ती बड़ी प्यारी और मजबूत सा रिश्ता होता है, हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा भी दोस्ती रहती है। और अगर हम भारतीय पौराणिक कथाओं में मित्रता की बात करें तो भारतीय पौराणिक कथाओं में भी सच्ची मित्रता की कहानियाँ हमारे सामने आती हैं, जिसमें कृष्ण और सुदामा की कहानी तो हम सभी ने सुन रखी है। सुदामा एक श्रोताओं, जैसे कि हम बात कर रहे थे कृष्ण और सुदामा की कहानी की बात कर रहे थे कि पौराणिक कथाओं में भी इनका काफ़ी जिक्र हुआ है। ये इनकी कहानी बहुत प्यारी और मजबूत है और हम सभी ने तकरीबन अपने स्कूल टाइम में ये पढ़ रखी होगी, सुन रखी होगी। और होता क्या था कि कृष्ण आप एक राजा की तरह रहा करते थे और सुदामा उनके मित्र जो थे बहुत ही गरीब थे और उनकी हालत भी काफ़ी दयनीय थी और वे अपने परिवार के लिए भोजन भी नहीं जुटा पाते थे। उन्होंने अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने द्वारका जाने का निर्णय लिया और वे पहुंच चुके द्वारका। द्वारपाल से जाकर कहा कि श्री कृष्ण से कहिए कि मैं आया हूं उनका बचपन का मित्र। उनके फटे पुराने कपड़े देखकर द्वारपाल ने उन्हें मिलने से इनकार कर दिया। बार बार उनके आग्रह करने पर कहा कि कोई बात नहीं, मैं एक बार बात करता हूँ कृष्ण श्री कृष्ण जी से, अगर वो मिलने के लिए कहेंगे तो मैं तुम्हें मिलवा दूँगा। इतने भी जैसे श्री कृष्ण को ये संदेश मिला कि उनके बचपन के मित्र सुदामा आए हुए हैं, तो कृष्ण बहुत खुश हुए और जल्दी से भागते हुए उनका स्वागत करने के लिए आ पहुँचे। उनके अच्छे से जो है आदर सम्मान किया, आवाभगत की और साथ में उनका जो है अपने साथ बिठाया, बातचीत की। तो श्रोतो, इसी कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दोस्ती में अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती है, एक प्यार भाव देखा जाता है कि सच्चा प्यार जहाँ हो वहाँ वस्त्र या फिर उठना बैठना रहना सहना मान्य नहीं रखता है। दोस्ती तो किसी से भी हमारी हो जाती है और दोस्ती में हम सभी को अपना फ़र्ज ज़रूर निभाना चाहिए। दोस्ती में जितना हमें हो सके, हमसे हो सके, हमें अपने दोस्त की मदद भी करनी चाहिए, सही राह भी दिखानी चाहिए। और सच्चे दोस्त वैसे भी वही होते हैं जो अपने दोस्त की हर दुख मुसीबत में साथ दे और ज़िंदगी के सफ़र में उसे सही रास्ता दिखाए। तो श्रोताओ, ये तो थी हमारी जानकारियाँ। अपनी जानकारियों के साथ साथ कार्यक्रम में फिर से आगे बढ़ते हैं और आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत के साथ। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

फ्रीक्वेंसी 91.2 पर श्रोता इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम आप सभी के रेडियो सेट पर इस समय चल रहा है गुड मॉर्निंग धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को एक बार फिर से हमारी ओर से प्यार भरी नमस्ते और इसी नमस्ते के साथ फिर से हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फाइबर के बारे में। श्रोताओं, फाइबर की कमी को किस तरह से पूरा किया जा सकता है, किस तरह से दूर किया जा सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। सभी प्रकार के पोषक तत्वों से युक्त संतुलित आहार हर व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है, चाहे उसकी उम्र और शारीरिक स्थिति कुछ भी हो। फाइबर हमारे दैनिक आहार का एक महत्वपूर्ण घटक है जो हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है। फाइबर एक तरह का कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो पेट में आसानी से नहीं पचता है। इसकी कमी से स्वास्थ्य संबंधी कई दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में हम इस तरह की जानकारियां और भी आपके साथ साझा करेंगे ताकि आपकी जो है फाइबर की कमी पूरी हो जाए। और इसी के साथ फिलहाल कार्यक्रम में थोड़ा सा रुकते हैं और आप सभी तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का ये गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में फिर से हम वापिस आ चुके हैं और बढ़ते हैं आगे की ओर। श्रोताओ, शरीर को हेल्दी रखने के बारे में हम बात कर रहे थे। तो शरीर को हेल्दी रखने के लिए हमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स के अलावा फाइबर की ज़रूरत होती है। फाइबर कोलेस्ट्रॉल और ग्लूकोज के स्तर को कम करने में भी मदद करता है और साथ ही साथ ये भोजन को पाचन प्रणाली से निकालने में मदद करने के साथ साथ ज़रूरी मात्रा में हमारे शरीर की कमियों को पूरा करता है। फाइबर की कमी श्रोताओं पेट के अन्य स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी खड़ी कर देती हैं। इसलिए हमारे शरीर को हर चीज़ की ज़रूरत होती है। अपने भोजन में, अपनी थाली में हमें वो हर चीज़ शामिल करनी चाहिए जिसकी हमारे शरीर को ज़रूरत है। मौसमी फल, मौसमी सब्जियां ज़रूर खाएं। और आजकल के दिनों की बात करें तो आजकल बरसात के दिन है तो कटे फटे फल या सब्जियों को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जितनी सब्ज़ी हमें बनानी है उतनी ही सब्ज़ी काटनी चाहिए, उतनी ही बनानी चाहिए और उतनी ही खानी चाहिए, क्योंकि जब हम ज़्यादा दिनों की बनी सब्ज़ी खाते हैं तो कहीं ना कहीं बीमार पड़ जाते हैं। तो इसके साथ साथ जो है फाइबर एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही होता है जो पेट में आसानी से नहीं पचता है और छोटे छोटे कण टूटकर शुगर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। और साथ ही साथ श्रोताओं, फाइबर की कमी होने पर शरीर में कई लक्षण जो है दिखाई देते हैं। शरीर में फाइबर की संतुलित मात्रा होने से हमारा पाचन तंत्र दुरुस्त रहता है। इसके अलावा पेट में गैस बनने की समस्या भी फाइबर की कमी से होती है। तो कहीं ना कहीं श्रोताओं, किसी चीज़ की कमी होने पर हमारा शरीर जो है हमें बता देता है कि हमें कमी है, या फिर हम जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी शरीर की समस्या को, अपनी दिक्कतों को, अपनी परेशानियों को बताते हैं तो हमारे डॉक्टर समझ जाते हैं कि किस चीज़ की कमी है। कई बार वो हमें जो है टेस्ट करवाने के लिए सलाह देते हैं और टेस्ट करवाने के बाद वो कमी जो है दिखती है। तो हम चाहते हैं कि श्रोताओं, आपको कमी किसी भी चीज़ की शरीर में ना हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने खान पान का ख्याल रखें, ध्यान रखें। जब हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो कहीं ना कहीं स्वस्थ रहकर इस प्यारे से जीवन का आनंद रखते हैं। तो श्रोताओं, हम तो हमेशा यही चाहते हैं कि हमारे श्रोता जो है हमेशा तंदुरुस्त रहे और तंदुरुस्ती की हालत में रेडियो गुंजन के साथ भी जुड़े रहे और अपने डेली रूटीन के कामकाज भी करते रहे। तेरी बात और जानकारियों के साथ साथ फिर से हम कार्यक्रम में आगे की ओर रुख करते हैं और आप तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

सखियों इस और दोस्तों इस प्यारे से गीत के बाद फिर से हम वापस आते हैं, क्योंकि इस जो हम रेडियो गुंजन के माध्यम से बहुत सारे दोस्त सखियां हमें मिले हैं और इस प्यारे से रिश्ते को निभाने हम हर बार चले आते हैं आपसे मिलने और ढेर सारी बातें और जानकारियां साझा करने। तो फिर से हम जानकारियों की ओर रुख करते हैं और हम कार्यक्रम में फाइबर की कमी की बात कर रहे थे। शरीर में फाइबर की कमी होने पर शुगर लेवल में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है और डायबिटीज़ के मरीजों की बात करें तो डायबिटीज़ के मरीजों में वजन बढ़ने की सबसे मुख्य वजह डाइट में फाइबर की कमी होती है। ऐसे में पर्याप्त मात्रा में फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करने से व्यक्ति का वजन जो है संतुलित बना रहने के साथ साथ ब्लड शुगर लेवल भी ठीक रहता है। तो श्रोतो ये तो थी हमारी जानकारियाँ अभी और भी हम आपके साथ साझा करेंगे, आप कहीं जाइएगा नहीं, आप तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का प्यारा सा गीत। गीत से पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

श्रोतो, इस समय आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में हम फाइबर की शुरुआत कर रहे थे। तो फाइबर की कमी होने पर पाचन तंत्र प्रभावित होता है। पाचन क्रिया में आने वाली रुकावटों की वजह से खाना पच नहीं पाता है और धीरे धीरे वजन बढ़ने लगता है। बढ़ा हुआ ये वजन हमें मोटापे का शिकार बना देता है। ऐसे में फाइबर युक्त आहार का सेवन करने से हमारा पेट काफ़ी समय तक भरा रहता है और हमारे शरीर को फाइबर युक्त आहार को पचाने में थोड़ा अधिक समय लगता है। यही वजह है कि व्यक्ति को बार बार भूख नहीं लगती है और उसका वजन जो है संतुलित बना रहता है। तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, हम अपने वज़न को बढ़ने से भी रोक सकते हैं। और अगर वज़न बढ़ गया है तो खान पान के साथ साथ योग, एक्सरसाइज, वॉक, इस तरह के तरीके भी हम अपनाकर अपने बड़े वज़न को कम कर सकते हैं। क्योंकि श्रोताओं, जो मोटापा होता है हर बीमारी की जड़ होता है। अगर मोटापा शरीर में आ जाए तो हम बहुत सारी बीमारियों से घिर सकते हैं। और अगर चाहते हैं कि हम ज़्यादा मोटे ना हों तो उसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत तो ज़रूर करनी पड़ेगी। तो आप करें थोड़ी सी मेहनत और मेहनत।

श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में फिर से हम वापिस आ चुके हैं, क्योंकि अभी समय हमारे पास बाकी है आपके साथ बातें और जानकारियां साझा करने का। तो हम फाइबर की बात कर रहे थे श्रोताओं। फाइबर की कमी होने पर पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता है, शरीर में फैट जमा होने लगता है। ये फैट जो है बैड कोलेस्ट्रॉल को शरीर में जमा करने लगता है। ये संकेत फाइबर की कमी को दर्शाता है, जिसे खान पान से दूर हम कर सकते हैं। अब थोड़ी सी हम थकान की बात करें कि जैसे जैसे उम्र हमारी आगे बढ़ती है तो थोड़ी सी थकान भी हमें महसूस होने लगती है। पाचन तंत्र पर लोड बढ़ने के कारण शरीर की अधिकतर एनर्जी होने से डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बेस्ट होने लगता है, जिसकी वजह से शरीर को अक्सर थकान महसूस होती है। पाचन तंत्र को दुरुस्त करने के लिए शरीर में फाइबर युक्त चीज़ें होनी ज़रूरी है। इसीलिए श्रोताओं, कहा जाता है कि अपने भोजन में हमें हर वो चीज़ शामिल करनी है जिसकी हमारे शरीर को ज़रूरत है। तो इन्हीं ज़रूरतों के साथ अभी कार्यक्रम में ज़रूरत है गीत संगीत की। तो आइए मिलकर सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए रेडियो।

फ्रीक्वेंसी 91.2 पर श्रोता इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सुमन। तो श्रोता, हम फाइबर की बात कर रहे थे कि फाइबर कितना ज़रूरी होता है हमारे शरीर के लिए, फाइबर की कमी को दूर करने की भी बात हम कर रहे थे श्रोताओं। तो आहार में फाइबर की कमी होने पर पेट से जुड़ी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है, इसी वजह से हमें पाचन तंत्र में गड़बड़ी महसूस होती है। फाइबर की कमी होने पर दस्त की समस्या भी हो सकती है। तो श्रोताओं, थोड़ा सा हम जी मचलाने की समस्या की बात करें तो शरीर में फाइबर की कमी होने पर व्यक्ति को मतली या उल्टी की शिकायत हो सकती है, जिसकी वजह से थकान का सामना भी करना पड़ता है। इसके साथ साथ फाइबर की कमी को कैसे पूरा करें, शरीर में फाइबर की कमी पूरा करने के लिए फाइबर युक्त आहार का हम सेवन कर सकते हैं। साबुत अनाज, फल और सब्जियों का सेवन करें। इसके अलावा मटर, नाशपाती, ब्राउन राइस, मक्का, अलसी के बीज, फूलगोभी, पत्ता गोभी, संतरा, केला, बादाम, अंजीर, सेब को अपनी डाइट में शामिल करें। इसके अलावा प्याज में भी प्रचुर मात्रा में फाइबर होता है। तो श्रोताओं, इस तरह से हम अपने शरीर से फाइबर की कमियों को दूर कर सकते हैं। और थोड़ा सा हम अपने कार्यक्रम में गीत संगीत की कमी को पूरा करते हैं और आप तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का ये

चलो इसी गीत के साथ हम पहुंच चुके हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर। तो आइए चलते चलते आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अंतिम प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए रेडियो मंचन।

0: लो आ गई फायर ब्रिगेड।
1: चुप कर माँ, कितनी बार कहा है बिजली बचाओ।
2: अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है, और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो। बिल भर देंगे पापा।
1: माँ बात बिल की नहीं है, बात खपत की है। देखो बिजली कहाँ से आती है, थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा। और पता है इससे जो फ्लाई ऐश निकलती है वो हवा पानी और मिट्टी तीनों को प्रदूषित करती है।
0: हमें उससे क्या,
1: उपभोग कम तो मांग कम, पावर प्लांट से प्रोडक्शन का बोझ कम, समझे?
0: आना समझ गया।
1: मम्मा पानी बंद करो, ये भी बिजली से ही आता है।
3: सुविधाओं का इस्तेमाल समझदारी से करें, जरूरत के अनुसार ही पानी और बिजली खर्च करें। उत्पादन का बोझ होगा कम तो सुरक्षित पर्यावरण और हम।

0: देखिए इसकी खांसी तेज चल रही है, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा।
1: तुम तो यूं ही घबरा जाती हो।
2: अच्छा मेरी एग्जाम कब है?
1: एग्जाम?
2: हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है?
1: बेटा ये सब माँ को पता होगा ना।
2: पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना।
1: चलो अस्पताल चलते हैं।
3: इसे निमोनिया हुआ है, सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही।
4: पार्थ याद रखना, जिंदगी कल से शुरू नहीं होती, क्योंकि वो कल कभी आता ही नहीं। जो तुम आज नहीं कर सकते उसे तुम कल भी कभी नहीं कर पाओगे। हम अक्सर कल के इंतजार में अपना आज खो देते हैं और फिर एक दिन बस अफसोस ही बाकी रह जाता है। अगर जीतना है तो आज से ही लड़ना सीखो, क्योंकि बहाने बनाने वालों के लिए मंजिल हमेशा दूर होती है। अपनी मेहनत को कल पर मत टालो, क्योंकि वक्त किसी का सगा नहीं होता। उठो और आज ही कुछ ऐसा करो कि तुम्हारा कल खुद बदल जाए।
5: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
6: हेलो सर, सर मैं फॉर्चुनेट लॉटरी से अनुज।
7: हाँ बोलिए।
6: बधाई हो सर, आपको 10 लाख की लॉटरी लगी है।
7: 10 लाख? सच्ची?
6: जी जी सर। एंड सर आपको क्लेम करने के लिए सिर्फ 10,000 की रजिस्ट्रेशन फी देनी होगी।
7: 10,000 की रजिस्ट्रेशन? क्यों?
6: सर ये वन टाइम प्रोसेसिंग फी है।
7: ओके।
6: इससे आपकी लॉटरी पे टैक्स भी नहीं लगेगा।
7: अच्छा
6: सर, मैं पेमेंट के लिंक भेज रहा हूँ, आप उस पे ट्रांसफर कर दीजिए।
7: अच्छा, ये लिंक?
6: यस सर।
8: मछली तो फंस गई।
9: शिंगे
10: और ये स्क्रीन का फोटो लो। हार्ड डिस्क, सारे हार्ड डिस्क उठाओ। याद रखिए, ऐसे फर्जी लॉटरी कॉल्स पे या उनसे आए मैसेजेस पे विश्वास ना करें, ना ही किसी अनजान लिंक पे क्लिक करें। तो सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
11: चलो बच्चों खाना लग गया।
12: पर ये क्या माँ, ये तो हरी हरी सब्जियाँ है।
13: कुछ अच्छा नहीं बनाया।
11: अरे ये हरी सब्जी ही है सबसे अच्छी। हरी सब्जियाँ बच्चों

0: अरे 6 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चे बने स्वस्थ और तंदुरुस्त।
1: सुनो तुम पढ़ी लिखी हो?
2: हाँ बिल्कुल।
1: तो मेरे एक सवाल का जवाब दो।
2: पूछो।
1: रेडियो और अखबार में क्या फर्क है?
2: सिंपल, रेडियो में रोटी नहीं लपेट सकते।
1: वाटसन यूनिवर्सिटी से पढ़ी हो?
2: हाँ, तुम्हें कैसे पता?
1: बस गेस कर रहा था।
2: तुम्हारे गेस भी
3: कौन है? कहाँ से आते हैं?

नमस्कार दोस्तों, ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका, हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी, गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: लो आ गई फायर ब्रिगेड।
1: चुप कर माँ, कितनी बार कहा है बिजली बचाओ।
2: अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है, और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो। बिल भर देंगे पापा।
1: माँ बात बिल की नहीं है, बात खपत की है। देखो बिजली कहाँ से आती है, थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, और पता है इससे जो फ्लाई ऐश निकलती है वो हवा पानी और मिट्टी तीनों को प्रदूषित करती है।
0: हमें उससे क्या,
1: उपभोग कम तो मांग कम, पावर प्लांट से प्रोडक्शन का बोझ कम, समझे?
0: आना समझ गया।
1: मम्मा पानी बंद करो, ये भी बिजली से ही आता है।
3: सुविधाओं का इस्तेमाल समझदारी से करें, जरूरत के अनुसार ही पानी और बिजली खर्च करें। उत्पादन का बोझ होगा कम तो सुरक्षित पर्यावरण और हम।

0: देखिए इसकी सांसें तेज चल रही है, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा।
1: तुम तो यूं ही घबरा जाती हो।
2: अच्छा मेरी एग्जाम कब है?
1: एग्जाम?
2: हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है?
1: बेटा ये सब माँ को पता होगा ना।
2: पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना।
1: चलो अस्पताल चलते हैं।
3: इसे निमोनिया हुआ है, सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही।
4: पार्थ याद रखना, जिंदगी कल से शुरू नहीं होती, क्योंकि वो कल कभी आता ही नहीं। जो तुम आज नहीं कर सकते उसे तुम कल भी कभी नहीं कर पाओगे। हम अक्सर कल के इंतजार में अपना आज खो देते हैं और फिर एक दिन बस अफसोस ही बाकी रह जाता है। अगर जीतना है तो आज से ही लड़ना सीखो, क्योंकि बहाने बनाने वालों के लिए मंजिल हमेशा दूर होती है। अपनी मेहनत को कल पर मत टालो, क्योंकि वक्त किसी का सगा नहीं होता। उठो और आज ही कुछ ऐसा करो कि तुम्हारा कल खुद बदल जाए।
5: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
6: हेलो।
7: हेलो सर। सर मैं फॉर्चुनेट लॉटरी से अनुज।
6: हाँ बोलिए।
7: बधाई हो सर, आपको 10 लाख की लॉटरी लगी है।
6: 10 लाख? सच्ची?
7: जी जी सर। एंड सर आपको क्लेम करने के लिए सिर्फ 10,000 की रजिस्ट्रेशन फी देनी होगी।
6: 10,000 की रजिस्ट्रेशन? क्यों?
7: सर ये वन टाइम प्रोसेसिंग फी है।
6: ओके।
7: इससे आपकी लॉटरी पे टैक्स भी नहीं लगेगा।
6: अच्छा।
7: सर मैं पेमेंट के लिंक भेज रहा हूँ, आप उस पे ट्रांसफर कर दीजिए।
6: अच्छा, ये लिंक?
7: यस सर।
8: मछली तो फंस गई।
9: और ये स्क्रीन का फोटो लो, हार्ड डिस्क, सारे हार्ड डिस्क उठाओ। याद रखिए, ऐसे फर्जी लॉटरी कॉल्स पे या उनसे आए मैसेजेस पे विश्वास ना करें, ना ही किसी अनजान लिंक पे क्लिक करें। तो सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
10: चलो बच्चों खाना लग गया।
11: पर ये क्या माँ, ये तो हरी हरी सब्जियाँ है।
12: कुछ अच्छा नहीं बनाया।
10: अरे ये हरी सब्जी ही है सबसे अच्छी। हरी सब्जियाँ बच्चों खाओ

0: छह वर्ष तक के आयु के सभी बच्चे बने स्वस्थ और तंदुरुस्त।
1: सुनो, तुम पढ़ी लिखी हो?
2: हाँ बिल्कुल।
1: तो मेरे एक सवाल का जवाब दो।
2: पूछो।
1: रेडियो और अखबार में क्या फर्क है?
2: सिंपल, रेडियो में रोटी नहीं लपेट सकते।
1: वाटसन यूनिवर्सिटी से पढ़ी हो?
2: हाँ, तुम्हें कैसे पता?
1: बस गेस कर रहा था।
2: तुम्हारे गेस भी।
3: कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं?

इन क्लासिक में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आज के इस एपिसोड में महान गायिका कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी के गाने हैं। जी हाँ, कविता कृष्णमूर्ति जिन्होंने लता जी और आशा जी के दौर में भी अपना एक मकाम हासिल कर लिया, ये अपने आप में बड़ा चमत्कार था। इनका हुनर सर चढ़ के बोल रहा था। और ये बात आपको जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि इनका जन्म हुआ नई दिल्ली में और इनके जन्म का नाम मालूम क्या था? नाम था शारदा जी। तमिल अय्यर परिवार में जन्म हुआ और उसके बाद इनकी एक आंटी रहीं बड़ी नज़दीकी रिश्तेदार प्रतिमा भट्टाचार्य जी, उन्होंने कहा कि भाई कविता में तो बड़ा हुनर है, तो क्यों ना इसको संगीत का विधिवत प्रशिक्षण दिलाया जाए। तो हाँ, बाकायदा ट्रेनिंग हुई और 8 बरस की उम्र में, आजकल तो बहुत रियलिटी शोज़ वगैरह होते हैं पर उस ज़माने में रियलिटी शोज़ तो नहीं थे, पर हाँ कुछ स्टेज कॉन्टेस्ट वगैरह हुआ करते थे। तो एक स्टेज कॉन्टेस्ट हुआ, वहाँ पर कविता जी ने अपनी आवाज़ का जोर दिखाया और गोल्ड मेडल जीता। वहीं समझ में आ गया था कि जो सुपुत्री है ये बड़ी हुनरमंद है और आगे जाकर और भी अवार्ड जीतेगी, लेकिन इतनी बड़ी महान प्लेबैक सिंगर बन जाएगी इसका अंदाज़ा नहीं था। अब वो सारी बातें मैं आपके साथ बांटूंगा, लेकिन उससे पहले जब कविता जी की बात हो रही है तो उनके भाई गाने भी हम सुने, बड़े सदाबहार ये गाने हैं, अलग अलग युग से हमने चुने हैं सिर्फ आपके लिए, सारेगामा वीकेंड क्लासिक पर।

वीकेंड क्लासिक, मैं हूँ गौरव श्रीवास्तव और बड़े अनोखे किस्से जबरदस्त गाने कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम के आप सुन रहे हैं। जी हाँ, डॉक्टर एल सुब्रमण्यम से इन्होंने शादी की और उसके बाद ये कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम हो गई। हाँ, पर उससे पहले इनका विवाह होता उससे पहले भी एक बड़ा अजब किस्सा हुआ इनके साथ। हेमा मालिनी जी, ड्रीम गर्ल, ने इनडायरेक्टली एक बड़ा अजब रोल इनकी ज़िंदगी में प्ले कर दिया। देखिए, हेमा जी तो खैर फिल्मों में आ गई थी और सुपरस्टार बन गई थी, और उनकी माता जी जया चक्रवर्ती, वो भी बड़ी एक्टिव थी। वो नज़र रखती थी कि भाई कोई है जिसमें अच्छा हुनर हो तो उसे भी मौका मिले, और इस तरह का हिसाब किताब था। तो उनकी मुलाकात हुई कविता जी से, तो जया जी ने कहा देखो ऐसा है, तुम गाती तो बहुत अच्छा हो, हेमंत कुमार साहब के साथ भी लाइव शोज वगैरह कर रही थी, सब कुछ था, क्यों ना तुम लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से मिलती, महान संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। अब वो जो मुलाकात करवाई, देखिए कोई ना कोई जरिया बनकर आता है, तो यहाँ जया जी बनकर आई जरिया और LP यानी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से इनकी मुलाकात करवा दी, और उसके बाद कभी इन्होंने पलट के नहीं देखा। वो और बात है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने भी इन्हें अभी प्लेबैक सिंगिंग के लिए नहीं रखा था, सिर्फ गाने डब करवाए जाते थे। जी, गाने डब होते थे और फिर कोई सिंगर जो है उसे आके गाती थी, चाहे वो लता जी हों कि आशा जी हों। तो ये पूरा हिसाब किताब था, और इत्तफाकन जो है जब कोई और गायिका नहीं मौजूद होती तब LP साहब लक्ष्मीकांत जी ने सोचा, प्यारेलाल जी ने सोचा कि अब देखो कविता गाती तो अच्छा है, तो क्यों ना इसी की आवाज़ में गाने रखें जाए। इस तरह से इन्हें हवा हवा ये गाना भी मिला और फिर इन्होंने कभी पलट के देखा नहीं। और इस तरह से कविता कृष्णमूर्ति, जो कि अभी तक सिर्फ डबिंग आर्टिस्ट थी, सिर्फ स्टेज पे गाया करती थी या जिंगल्स गाया करती थी, बन गई एक ज़बरदस्त प्लेबैक सिंगर। और उसके बाद कैसे RD बर्मन साहब के साथ इनका एक अजब नाता जुड़ा वो मैं आपको बताऊंगा। बड़ी इमोशनल याद है ये आपके साथ ज़रूर बांटी जाएगी, लेकिन उससे पहले कविता जी ने हर दौर में गाने गाए हैं साहब, तो एक ताज़ा तरीन गाना, मतलब तकरीबन नए दौर का जो है वो आपको सुनाया जाए, सिर्फ सारेगामा वीकेंड क्लासिक पर।

यस वीकेंड क्लासिक, गौरव श्रीवास्तव को सुन रहे हैं आप। कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, इनके गाने में आपको सुना रहा हूँ। और देखिए, मैं बार बार सुब्रमण्यम इसलिए कह रहा हूँ, हालांकि कविता कृष्णमूर्ति के नाम से ज़्यादा मशहूर है। इसकी मैं वजह बताता हूँ। एक तो ये कि डॉक्टर एल सुब्रमण्यम जो कि महान वायलिनिस्ट हैं, उनसे इनका विवाह हुआ। पर हुआ क्या कि मैं कविता जी के साथ एक स्टेज शो पे था और मैं एंकर कर रहा था उस शो को। तो मैं जा रहा था और स्टेज पे खड़ा हुआ, कविता जी का नाम मैं अनाउंस करने वाला था, इंट्रोडक्शन देने ही वाला था। तभी मैं क्या देखता हूँ कि मेरे दाईं तरफ विंग्स में कविता जी मुझे देख रही हैं और कह रही हैं कि मेरा नाम पूरा बोलना इशारे से। तो मैं उनको लिप रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो कह रही हैं कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। मैंने कहा हाँ, आप चिंता ना करें। और फिर मैंने बोला कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। तो इस तरह से ये जो गुस्साखी हो जाती वो नहीं होने दी उन्होंने, और अपने पति के नाम के साथ ये फिर स्टेज पर इन्होंने एंट्री ली। उस शो में तफाकन डॉक्टर एल सुब्रमण्यम भी थे। तो बहुत ही अलग समा बन गया था। तो ये बड़ी निजी बातें हैं जो मैं आपके साथ बांट रहा हूँ, और ये वो गाने हैं जो आपको आप तक पहुँचाते हैं। जी हाँ, है ना, उनमें वो जज्बात भी तो हैं। इन जज्बातों को सुनेंगे और फिर पंचमदा के साथ एक बड़ा जज्बाती रिश्ता कृष्णमूर्ति जी का, कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी का, वो मैं आपके साथ बांटूंगा। बाकी बहुत इमोशनल ये मामला है, सुनेगा जरूर, सिर्फ और सिर्फ सारेगामा वीकेंड क्लासिक पर।

यस वीकेंड क्लासिक गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप। कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम इनके गाए हुए बड़े अनोखे गाने आप सुन रहे हैं इस एपिसोड में, और पंचमदा के साथ इनका किस तरह का एक जज्बाती जो रहा वो मैं आपको बयां करता हूं। देखिए, एक वक्त ऐसा था कि ये माना जाता था कि कविता जी जो हैं वो सिर्फ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए ही गाने गाती हैं, क्योंकि उनकी उनके लिए डब करती थी बहुत सारे गाने, और ये इमेज काफ़ी टाइम तक बनी भी रही। लेकिन जब धीरे धीरे इस इमेज से वो निकली और पंचमदा के साथ इन्होंने गाने शुरू किए और भी बड़े संगीतकारों के साथ गाए, चाहे वो शंकर एहसान लॉय रहे कि अनु मलिक साहब रहे, गाने तो गाए नहीं थी, पर पंचमदा एक ऐसे दौर से गुजर रहे थे जब इनकी 20-22 फिल्में तकरीबन लगातार फ्लॉप हो गई, और सारा का सारा जो असफलता का ठीकरा था वो पंचमदा के ऊपर था। वो म्यूज़िक रूम जहाँ पर प्रोड्यूसर्स के रेले लगे रहते थे कि भाई एक के बाद दूसरा प्रोड्यूसर आ रहा है, म्यूज़िक सेटिंग हो रही है, वो म्यूज़िक रूम एकदम खाली, जो एक ज़माने में बेताज बादशाह था वो एकदम रंग की स्थिति में, जी पंचमदा बिल्कुल अकेले बैठा करते थे। और फिल्म आई एक उनके हाथ लगी, वो लगी विधु विनोद चोपड़ा साहब की 1942 लव स्टोरी। उसका संगीत ज़बरदस्त बना, और हैरत की बात यह है कि पंचमदा की आखिरी फिल्म जो उन्होंने बनाई उसमें सबसे बेहतरीन गाने कविता जी को मिले, और कविता कृष्णमूर्ति जी ने ज़बरदस्त उन गानों को निभाया। तो अभी यही गाना मैं चाहता हूँ कि हम सुने फिल्म 1942 लव स्टोरी से, और याद करें पंचमदा को भी, और कविता जी की आवाज़ का जादू हमारे सर चढ़ के बोले। और अगले हफ्ते एक और सॉलिड सारेगामा वीकेंड क्लासिक एपिसोड आप सुनिएगा, और जैसा भी आपको हमारा ये एपिसोड लगता है अपने मन की बात हमसे आप बांटते रहें, सिर्फ और सिर्फ सारेगामा वीकेंड क्लासिक पर।

सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियों को हटा लिया है। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें यह दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में भी महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ब्रिक्स महिला ट्रैक ने 4 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह कल से जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये वैश्विक संवाद एआई के अंतर्राष्ट्रीय संचालन को आगे बढ़ाने का अनूठा अवसर है जो अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और बहुहितधारक प्रयासों का पूरक है। 2 दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थी। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सवेरे लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली मंच उपस्थिति और विशिष्ट कथा शैली से तीजन बाई ने पंडवानी को न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दी। महाभारत की कहानियों को मंच पर जीवंत करने की उनकी अद्भुत क्षमता ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रशंसित प्रस्तुतकर्ताओं में से एक बना दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। This is

0: लो आ गई फायर ब्रिगेड।
1: चुप कर माँ, कितनी बार कहा है बिजली बचाओ, अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है, और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो, बिल भर देंगे पापा। माँ बात बिल आया है, और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो, बिल भर देंगे पापा। माँ बात बिल की नहीं है, बात खपत की है। देखो बिजली कहाँ से आती है, थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, और पता है इससे जो फ्लाई ऐश निकलती है वो हवा पानी और मिट्टी तीनों को प्रदूषित करती है।
0: हमें उससे क्या,
1: उपभोग कम तो मांग कम, पावर प्लांट से प्रोडक्शन का बोझ कम, समझे?
0: आना समझ गया।
1: मम्मा पानी बंद करो, ये भी बिजली से ही आता है। सुविधाओं का इस्तेमाल समझदारी से करें, जरूरत के अनुसार ही पानी और बिजली खर्च करें। उत्पादन का बोझ होगा कम तो सुरक्षित पर्यावरण और हम।

0: देखिए इसकी खांसी तेज चल रही है, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा।
1: तुम तो यूं ही घबरा जाती हो।
2: अच्छा मेरी एग्जाम कब है?
1: एग्जाम?
2: हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है?
1: बेटा ये सब माँ को पता होगा ना।
2: पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना।
1: चलो अस्पताल चलते हैं।
3: इसे निमोनिया हुआ है, सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही।
4: पार्थ याद रखना, जिंदगी कल से शुरू नहीं होती, क्योंकि वो कल कभी आता ही नहीं। जो तुम आज नहीं कर सकते उसे तुम कल भी कभी नहीं कर पाओगे। हम अक्सर कल के इंतजार में अपना आज खो देते हैं और फिर एक दिन बस अफसोस ही बाकी रह जाता है। अगर जीतना है तो आज से ही लड़ना सीखो, क्योंकि बहाने बनाने वालों के लिए मंजिल हमेशा दूर होती है। अपनी मेहनत को कल पर मत टालो, क्योंकि वक्त किसी का सगा नहीं होता। उठो और आज ही कुछ ऐसा करो कि तुम्हारा कल खुद बदल जाए।
5: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क को, अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
6: हेलो।
7: हेलो सर। सर मैं फॉर्चुनेट लॉटरी से अनुज।
6: हाँ बोलिए।
7: बधाई हो सर, आपको 10 लाख की लॉटरी लगी है।
6: 10 लाख? सच्ची?
7: जी जी सर। एंड सर आपको क्लेम करने के लिए सिर्फ 10,000 की रजिस्ट्रेशन फी देनी होगी।
6: 10,000 की रजिस्ट्रेशन? क्यों?
7: सर ये वन टाइम प्रोसेसिंग फी है।
6: ओके।
7: इससे आपकी लॉटरी पे टैक्स भी नहीं लगेगा।
6: अच्छा।
7: सर मैं पेमेंट के लिंक भेज रहा हूँ, आप उस पे ट्रांसफर कर दीजिए।
6: अच्छा ये ले।
7: यस सर।
8: मछली तो फंस गई।
9: शिंगे
10: देखो,
9: और ये स्क्रीन का फोटो लो। हार्ड डिस्क, सारे हार्ड डिस्क उठाओ। याद रखिए, ऐसे फर्जी लॉटरी कॉल्स पे या उनसे आए मैसेजेस पे विश्वास ना करें, ना ही किसी अनजान लिंक पे क्लिक करें। तो सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
11: चलो बच्चों खाना लग गया।
12: पर ये क्या माँ, ये तो हरी हरी सब्जियाँ है।
13: कुछ अच्छा नहीं बनाया।
11: अरे ये हरी सब्जी ही है सबसे अच्छी। हरी सब्जियाँ बच्चों

0: विटामिन और मिनरल से ये सब है भरे। 6 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चे बने स्वस्थ और तंदुरुस्त।
1: सुनो, तुम पढ़ी लिखी हो?
2: हाँ बिल्कुल।
1: तो मेरे एक सवाल का जवाब दो।
2: पूछो।
1: रेडियो और अखबार में क्या फर्क है?
2: सिंपल, रेडियो में रोटी नहीं लपेट सकते।
1: वाटसन यूनिवर्सिटी से पढ़ी हो?
2: हाँ, तुम्हें कैसे पता?
1: बस गेस कर रहा था।
2: अरे गेस भी
3: कौन है? कहाँ से आते हैं?

91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी कार्यक्रम तुसी इंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम ते आओ श्रोताओ सुनते ने कार्यक्रम दा अगला पंजाबी गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी कार्यक्रम तुसी इंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम ते आओ श्रोताओ सुनते ने कार्यक्रम दा अगला पंजाबी गीत।

0: लो आ गई फायर ब्रिगेड।
1: चुप कर माँ, कितनी बार कहा है बिजली बचाओ,
2: अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है। और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो, बिल भर देंगे पापा।
1: माँ बात बिल की नहीं है, बात खपत की है। देखो बिजली कहाँ से आती है, थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा। और पता है इससे जो फ्लाई ऐश निकलती है वो हवा पानी और मिट्टी तीनों को प्रदूषित करती है।
0: हमें उससे क्या,
1: उपभोग कम तो मांग कम, पावर प्लांट से प्रोडक्शन का बोझ कम, समझे?
0: आना समझ गया।
1: मम्मा पानी बंद करो, ये भी बिजली से ही आता है।
3: सुविधाओं का इस्तेमाल समझदारी से करें, जरूरत के अनुसार ही पानी और बिजली खर्च करें। उत्पादन का बोझ होगा कम तो सुरक्षित पर्यावरण और हम।

0: देखिए इसकी सांसें तेज चल रही है, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा।
1: तुम तो यूं ही घबरा जाती हो।
2: अच्छा मेरी एग्जाम कब है?
1: एग्जाम?
2: हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है?
1: बेटा ये सब माँ को पता होगा ना।
2: पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना।
1: चलो अस्पताल चलते हैं।
3: इसे निमोनिया हुआ है, सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही।
4: पार्थ याद रखना, जिंदगी कल से शुरू नहीं होती, क्योंकि वो कल कभी आता ही नहीं। जो तुम आज नहीं कर सकते उसे तुम कल भी कभी नहीं कर पाओगे। हम अक्सर कल के इंतजार में अपना आज खो देते हैं और फिर एक दिन बस अफसोस ही बाकी रह जाता है। अगर जीतना है तो आज से ही लड़ना सीखो, क्योंकि बहाने बनाने वालों के लिए मंजिल हमेशा दूर होती है। अपनी मेहनत को कल पर मत टालो, क्योंकि वक्त किसी का सगा नहीं होता। उठो और आज ही कुछ ऐसा करो कि तुम्हारा कल खुद बदल जाए।
5: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क को, अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
6: हेलो सर, सर मैं फॉर्चुनेट लॉटरी से अनुज।
7: हाँ बोलिए।
6: बधाई हो सर, आपको 10 लाख की लॉटरी लगी है।
7: 10 लाख? सच्ची?
6: जी जी सर। एंड सर आपको क्लेम करने के लिए सिर्फ 10,000 की रजिस्ट्रेशन फी देनी होगी।
7: 10,000 की रजिस्ट्रेशन? क्यों?
6: सर ये वन टाइम प्रोसेसिंग फी है।
7: ओके।
6: इससे आपकी लॉटरी पे टैक्स भी नहीं लगेगा।
7: अच्छा।
6: सर मैं पेमेंट के लिंक भेज रहा हूँ, आप उस पे ट्रांसफर कर दीजिए।
7: अच्छा ये लिंक?
6: यस सर।
7: ओके।
8: मछली तो फंस गई।
9: शिंगे
10: और ये स्क्रीन का फोटो लो, हार्ड डिस्क सारे हार्ड डिस्क उठाओ। याद रखिए ऐसे फर्जी लॉटरी कॉल्स पे या उनसे आए मैसेजेस पे विश्वास ना करें, ना ही किसी अनजान लिंक पे क्लिक करें। तो सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
11: चलो बच्चों खाना लग गया।
12: पर ये क्या माँ, ये तो हरी हरी सब्जियाँ हैं।
13: कुछ अच्छा नहीं बनाया।
14: अरे ये हरी सब्जी ही है सबसे अच्छी। हरी सब्जियाँ बच्चों खाओ।

0: अरे 6 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चे बने स्वस्थ और तंदुरुस्त।
1: सुनो तुम पढ़ी लिखी हो?
2: हाँ बिल्कुल।
1: तो मेरे एक सवाल का जवाब दो।
2: पूछो।
1: रेडियो और अखबार में क्या फर्क है?
2: सिंपल, रेडियो में रोटी नहीं लपेट सकते।
1: वाटसन यूनिवर्सिटी से पढ़ी हो?
2: हाँ, तुम्हें कैसे पता?
1: बस गेस कर रहा था।
2: तुम्हारे गेस भी
3: कौन है? कहाँ से आते हैं?

कानू दशमलव दो मेगा हर्ट्स पर ए दोहा सारिया दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला दशोताओं मैं शशि हाजिर हुई हो कार्यक्रम ले करी माटी दी महक। पहले तो तुहां सारिया दा ही माटी दी महक कार्यक्रम दे सफर च शशि दा प्यार भरा स्वागत है, प्यार भरा नमस्ते है। तुह सारी भी इस कार्यक्रम दे सफर कन्ने जुड़ चुके होने न दोपहर दे दो बजे करी दो मिनटा कार्यक्रम चोइया न कन्ने आज कने दिने दी अहां गल करिए ता 5 जुलाई 2026 दा ए दिन संडे दा ए दिन तुहां जरूर इंजॉय करा दे होने न। इसी इंजॉय कन्ने अहां अपने कार्यक्रम दा जेड़ा आगाज है से करदे न प्यारे दे गीत कन्ने। गीत संगीत जलू अहां दे कार्यक्रम दे सफर कन्ने जुड़ी आंदा है ता ये सफर जेड़ा से और भी प्यारा लगदा है ते सफर जो और भी प्यारा बनांदे न इस प्यारे दे गीत कन्ने। तुहां सारी भी इस गीत जो भी इंजॉय करा कन्ने इन्ने ही सुनदे रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो जरूर हाँ कार्यक्रम दा जेड़ा आगाज है से इस गीत कन्ने करा देन तो हाँ भी इस गीत जो इंजॉय करा कन्ने इस कार्यक्रम जो भी इंजॉय करा।

0: ये तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तुहां सारी इस वक्त कार्यक्रम सुना दी ना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने। दर्शकों तुहां सारे भी माटी दी महक कार्यक्रम दे सफर कन्ने जुड़ी सकदे। ये सफर तुहां तक रहिंदा है 2 से 3 बजे तक। दर्शकों माटी दी महक कार्यक्रम का जेड़ा नाम है से बड़ा प्यारा है कि जेड़ा हंदी मिट्टी दी खुशबू है से हां जो हर पल कोई ना कोई जेड़ा एहसास है से जरूर देख रही जाती है। ये मिट्टी हां जो खेलना सिखाती है जलू अहां अपने बचपन च होंदे न तां जो इसी मिट्टी कन्ने बड़ा ज़्यादा प्यार जड़े से होंदे कने हाँ अपने बचपन जो इसा ही मिट्टी च खेलते न कने इसा ही मिट्टी च बिताते न। तो जरूर तुहां सारे जो भी अपना अपना जेड़ा बचपन है से याद आई होना है कि अहाँ भी इसी मिट्टी कने खेलते थे। यही मिट्टी अहाँ जो अनाज दिंदी है, यही मिट्टी पेड़ पौधे जड़े से अगर अहाँ पेड़ पौधे लगाते हैं तो तिना की देखभाल करते हैं तो सभी इस मिट्टी की ही देन है। ये जड़ा अहाँ की धरती माँ है उसका हमेशा अहाँ जो मान सम्मान करना चाहिए कने अहाँ जो वैसे भी खुश होना चाहिए कि ठंडी ठंडी ठंडी ठंडी जड़ा हवा है या ठंडी हवा जड़े से अहाँ जो मिलती रहती कने ताज़ी जड़ा हवा है से अहाँ जो मिलती है। तो शो तो इसी मिट्टी ते अगर अहाँ गल करिए हूँ जड़ा समय है से तुहां सारे ही जड़े से सीजनल अनुसार जड़े से हर फसल हर ऋतु जड़े से इंजॉय करते न कने और भी जड़ा लगाना तुहां लगे होने न क्योंकि और अहाँ लगाते न कने अहाँ अपनी फसलों कने हमेशा जुड़े रहते न या अपनी मिट्टी कने हमेशा जुड़े रहते न। अजकना जेड़ा दिन है संडे का जेड़ा दिन है तो हाँ सारे जरूर इंजॉय करा देने न कने जेड़ा ली और नहीं लगाई बैठे हो से और भी लगा देने न कने मस्ती भरा जेड़ा पल है सभी इंजॉय करा देने न। तो तुम सारे भी कार्यक्रम माटी दी महक च अपने जेड़ा मस्ती भरे पल लैन या मस्ती भरा जेड़ा काम तो हाँ कर दे थे खेती बाड़ी तो हाँ कर दे थे तो किस प्रकार तो हाँ अपने बचपन च जलूर लगाते थे तो कितनी मौज मस्ती जड़े से करते थे ज़रूर अहाँ कन्ने अपनी गलबात जड़े से साझा करी सकते कन्ने थोड़े देर से पल भी अगर अहाँ तिना जो याद कर देन तो कुछ ना कुछ यहाँ जो अपनापन जड़े से ज़रूर मिलता है। पर आज के दौर की अहाँ गल करिए से अपनापन कुछ ना कुछ बिल्कुल गायब जड़े से हो या हर कोई ये सोची करी चला था कि पहले अपना काम अहाँ करते न जल्दी जल्दी अपना काम करने बाकी अगला व्यक्ति है या अगले जेड़ा व्यक्ति है तिना ते अहाँ जो क्या लेना। तो ये प्यार भावना बिल्कुल आज के दौर च खत्म है। तो श्रोताओं तो सारे भी अपनी अपनी गल्ला जेड़ा न से इस कार्यक्रम के माध्यम ने अहाँ कन्ने साझा करी सकते कने फेसबुक लाइव भी तो इस कार्यक्रम के सफर कन्ने जुड़ी सकते कने जितने भी फेसबुक लाइव कन्ने जुड़े न तिना जो भी इस कार्यक्रम माटी दी महक कार्यक्रम के सफर च शशि दा प्यार भरा स्वागत है प्यार भरा नमस्ते है। तो श्रोताओं ये कार्यक्रम फरमाइशी कार्यक्रम है इसी गलबात कन्ने अहां दे जेड़ा पहले श्रोता अहां कन्ने जुड़ चुके हो न कर दें तिना कन्ने गलबात। हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी।
0: जी स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना? जी यहाँ तो बिल्कुल ठीक ठाक है जी। तुहां कुथु ते बोला दे कने तुहांदा ना क्या है जी?
1: हाँ बोला दे कांगड़े ते।
0: जी कांगड़े ते बोला दे स्वर्णा जी।
1: जी
0: जी जी स्वर्णा जी क्या काम कार छेड़िया तो हाँ क्या करा दे आज?
1: हाँ वेल ना
0: जी बिल्ली कोई काम नहीं है
1: कोई काम नहीं रोटी सिवा
0: जी, रोटी सिवा कोई काम नहीं है, मतलब तो हाँ।

0: इंजॉय करते हैं, क्योंकि उरे लगांदिया बरिया वैसे भी हर कुसी दे जी, क्योंकि यादा कुछ ना कुछ आहनियां जुड़ी होनी है ना।
1: जी
0: तो हाँ, जो भी जरूर अपनी जेड़ा बचपने दियां यादा ने, किस प्रकार उर लगांदे थे या उर लगांदे थे या मस्ती करदे थे।
1: मस्ती भी कर दी है, कुड़ियां कुड़ियां कितनी मस्ती कर दी
0: जी जी जी क्योंकि ये पल ही होंगे ना जी, मस्ती करने दे भी
1: जी।
0: जी। जी तो स्वर्णा जी, आज तो हाँ कुंदिया गीत सुनना पसंद करके
1: और नचदे बाबा तेरी नगरी।
0: जी, मोर नचदे बाबा तेरी नगरी
1: हां
0: जी, जरूर एक फरमाइश तुह तक पहुँचा दें जी, जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहदा
1: थैंक यू।
0: जी। तशुतों अहाँ भी अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते न, कने तुहां सारे जो ही ले कर चल दे न फरमाइश दी ओर, सुन दे निशा प्यारिये दिया फरमाइशा जो तुहां सारी भी जल्दी जल्दी इस फरमाइश जो सुना, कने इस कार्यक्रम दे सफर जो भी इंजॉय करा।

माटी दी मेह कार्यक्रम तो हाँ सारी सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने इसी कन्ने तो हाँ सारे ये भजन एंजॉय कीता कन्ने इस भजन दी फरमाइश आहां तक पहुंची होवे व्हाट्सएप दे माध्यम ने तिना दा नाव है सुनील कुमार जी कन्ने से रहने वाले न कोठिया जलोट ते ता जरूर तिना तक कहाँ आएगी ते हाँ फिरी ते वापिस अपनी गलबात उपर आई हो न तो हाँ सारी भी जल्दी जल्दी फेसबुक लाइव कन्ने भी जुड़ी सकते कन्ने इसी कन्ने अपना रेडियो सेट जिड़े सभी ऑन करी सकते अगर ऑन नहीं कित है तो जल्दी जल्दी अपना अपना रेडियो सेट जिड़े से ऑन करी लिया तशो तो बड़ी प्यारी जिड़ा कहानी है से तुह तक पहुँचानी है क्योंकि कहानियाँ जिड़ा न सियाहन की जिंदगी बड़ी अहम भूमिका अदा कर दी यान खाली मटका जिड़े से जरूर खाली मटके दी जिड़ा कहानी है से तुह तक पहुँचानी है कि एक गांव था तिश मतलब एक जिड़ा बुजुर्ग है से जरूर तिथु रहा था कने से किसान जिड़े से अपने बेटे जो बोलता था कि ये खाली जिड़ा मटका है से तो भरी करी लोना है से अपने बेटे जो ये दसना चाहता था कि जिड़ा मेहनत है मेहनत दा महत्व जिड़ा है से अपने बेटे जो समझाना चाहता था कि मेहनत करी करी यहाँ क्या क्या काम जिड़ा है से हासिल करी सकते हैं ना तो एक दिन तिने अपने बेटे जो बोलिया कि एक खाली जिड़ा मटका है से कुएं ते जिड़ा है से भरी करी ले करी आना है पर ठीक है से जिड़ा किसान दा बेटा है से जरूर मेहनत करता है कने जिड़ा लड़का है से जरूर तिस मटके जो भरी करी जिड़े से चली आंदा है कने कुएं ते भरी करी जिड़े से ले करी आंदा है पर से जिड़ा मटके च पानी आंदा है से पानी जिड़े से गिरता जांदा है कने मटका जिड़े से गांव तक पहुँचते जिड़े से मटका बिल्कुल खाली हो जांदा है पर फिरी से जिड़ा लड़का है से निराश हो जांदा है कि मटका तो खाली हुई आ पर जिड़ा किसान है से अपने बेटे जो बोलता है कि मेहनत अगर फिरी ते अहाँ कोशिश कर देन या अपना ध्यान उस साइड लगा देन कि नहीं अगर रस्ते च से पानी गिरा दे तो से फूल भी होंदे रस्ते च पेड़ पौधे भी होंदे से पानी तिना पेड़ पौधे पर पौधा तो से पानी तिना जो जड़े से लगा था कने है फूल जड़ा न से प्यारे ने खिला दे कने सही पानी जड़े से फूला तक पहुँचा दा कने से फूल बड़े प्यारे जड़ा न से खिला दे ता से जड़ा किसान है से अपने बेटे जो बोलता है कि जेड़ा पानी जेड़ा भरी करी तलंदा था से बिल्कुल व्यर्थ जेड़ा है से नहीं गया है क्योंकि इस पानी दा जेड़ा सदुपयोग है से जरूर हुई है क्योंकि से पानी तिना बेचारे जेड़ा फूल लन तिना जो मिली है तो शो तो मेहनत करना जेड़ा है से बड़ी अच्छी गल है अगर अहाँ मेहनत करते जाते न ताई अहाँ अपने जिड़ा सफलता दी सीढ़ी है उस जो चढ़ते जाते हैं पर मेहनत कुथी ना कुथी अहां दी जिड़ा सम्मानित जिड़ा है से जरूर होंदी है तो कहानी बड़ी प्यारी है कने मेहनत दा जिड़ा महत्व है हर कुसी जो समझना जरूरी है चाहे अहां खाना बनाते हैं तो खाना बनाने वास्ते भी मेहनत लगती है अहां सिलाई करा देन हर कुसी दा अपना अपना शौक है सिलाई कढ़ाई करा देन तो तिश भी मेहनत है अगर तुहजो पेंटिंग करना पसंद है तो तिहा पेंटिंग करने च भी मेहनत लगा दी पहले तो ये सोच विचार करने कि पेंटिंग किस प्रकार बनानी है या किस प्रकार अहाँ मेहनत करनी है पर पूरी लगन कने मेहनत ने अगर अहाँ तिस कमे जो कर देन तो कोई भी काम जड़ा है से बिल्कुल नामुमकिन है हाँ हर काम जो करी सकते तो शो तो इसी गलबात कने अगे बढ़ते न कने अगली जड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचाते न सुनते नहीं सब प्यारी दिया फरमाइश है जो तुह सारे भी इंजॉय करा

આ બોલાવીને રેડિયો ગુંજન ધર્મશાલા તે કને તો હા સારી એન્જોય કરા દેન આપની રેડિયો દો શશી કને કાર્યક્રમ દા સફર માટી દી મહેક કાર્યક્રમ દે સફર જો ફરી તે અગે બઢાણે કને તો હા સારી ભી ઇસ સફર કને જરૂર જડે સે જુડી શકતે તશો તો જલ્દી જલ્દી ઇસ કાર્યક્રમ દે સફર કને जुड़िया क्योंकि इंतजार तुझे लगे होंगे कि कालू दिया दो बजे न कने कालू दिया तुह सारे इस कार्यक्रम दे सफर कने जुड़ते न कुछ खास गल्ला बरसात का मौसम है अपना जेड़ा ख्याल है से ज़्यादा रखने की जरूरत है हर तरफ ते चाहे नदी नाले न चाहे अहां ट्रैवल करा दे न तो मैं अपना जेड़ा ख्याल है इसे जरूर रखने की जरूरत है क्योंकि बरसात का मौसम है अगर अहां घूमना फिरना भी जाते न तो पहले मौसम की ओर नज़र जेड़ा है इसे जरूर अपनी जेड़ा वैदर है इसे जरूर चेक करी लैन वैदर के अनुसार ही तुहां घरे ते बाहर निकलन कने ज़्यादातर अपने बच्चों का जेड़ा ख्याल है सभी ज़्यादा रखने की जरूरत होंगी क्योंकि हर जगह फिसनल जड़े से होंगी है चाहे घरे की गल करिए या अपने आस पास की गल करिए बच्चे तो हर जगह खेलने की जगह जड़े से ढूंढते हैं पर फिर भी पेरेंट्स का काम रहता है कि अपने बच्चों का जड़ा ख्याल है से ज़्यादा रखने की जरूरत है कने संडे का ये दिन तुह जरूर इंजॉय करा दे उन्हें न किस प्रकार करा देन या काम करा देन या अपना घरे दा काम करा दे क्योंकि हाँ पहले तो कामकार जेड़ा न से सोचे होंगे कि ये काम इस प्रकार करना है ये काम इस प्रकार करना है पर समय के अनुसार भी चलना हाँ वास्ते जरूरी है कने इसी कने जेड़ा बारिश दा अलर्ट है सभी जरूर देते हैं कने 9 जुलाई तक जड़े से बरखा का ये दौर जड़े से जरूर रहना है तो मौसम के अनुसार तो हाँ अपना जड़ा ख्याल है से जरूर रखना है कने हाँ भी तो जड़ा ख्याल है से रखना है क्योंकि ख्याल रखना तो बनता है ना जिन्ना हाँ श्रोता अपना जड़ा ख्याल है से रखते हैं तिने यहाँ भी जितने भी श्रोता न तिना का ख्याल जड़े से रखते हैं तिना दियाँ जड़ा प्यारियाँ प्यारियाँ फरमाइशा न से तिना तक पहुँचाई करी अगली फरमाइश तिना तक पहुँचा देन तो सारी भी सब प्यारी दिया फरमाइशा जो इंजॉय करा कने इन्हें सुनते रहा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने पंदी।

तशु तो तुहसारे सुनिया ये गीत मगडूरी छेड़। इस गीत की फरमाइश यहाँ तक पहुँची हुए व्हाट्सएप के माध्यम ने तिना दा ना वे चरणदास जी कने से रहने वाले ने खन्यारा ते तो जरूर तिना तक हाँ ये फरमाइश पहुँचाई थी है कने तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम के सफर च अपनी जेड़ा प्यारी दे फरमाइश है से जरूर करी सकते। श्रोताओ अगर सोच कने पानी दी अहां गल करिए बड़ा सही जेड़ा विचार है या बड़ी जेड़ा सही गल है से इस विचार च बोली होवे क्योंकि सोच कने पानी पानी जेड़े से अगर अहां गल करिए हमेशा साफ जेड़े से होना चाहिए। अगर सोच है तो सोच अहां दी हमेशा साफ होना चाहिए कि नहीं अगर पानी है तो पानी भी जेड़े से साफ होना चाहिए। अगर पानी अगर खराब होंदे तो से अहां दी तबीयत जो बिगाड़ी दे कने सोच अहां दी जेड़ा खराब होंदी है तो से अहां दी जिंदगी जो बिगाड़ी दी है क्योंकि अह कोई भी सोच विचार कर दे।

0: या कोई भी सोच अपने अंदर रख देना। अगर सकारात्मक सोच के यहाँ चल देना तो हाँ, हमेशा अपनी जिंदगी जो सफलता दी और पाते ना। कई बार होता ना कि आंधी जेड़ा सोच है, हाँ अगर कोई अगला व्यक्ति बुरा नहीं भी सोचा था, हाँ फिर भी ये सोच जो कुछ ना कुछ सोचना जेड़े से शुरू करी दे, तो ज़रूर अपनी जेड़ा सोच है से अच्छी रखा। क्योंकि अगर तो हाँ सारे जानते ना कि आंधी जेड़ा सेहत है से ठीक रहे, तो तिन्ने ही पानी अगर हाँ साफ पींदे ना ताई आंधी जेड़ा सेहत है से ज़रूर ठीक रहती है। कने अगर हाँ पानी साफ नहीं पींदे ना तो से पानी कुथी ना कुथी आंधी सेहत जो नुकसान जेड़े से ज़रूर पहुँचाते हैं। तो बड़ा ही प्यारियाँ जेड़ा लाइन है ना से ज़रूर तुह तक पहुँचाइया ना, कने तुह सारी भी इस कार्यक्रम के सफर जहाँ कन्ने जुड़ी सकते, कने अहाँ कन्ने गल बात जरूर करी सकते। बार बार तुह तक पहुँचाते ना कि ये कार्यक्रम फरमाइशी कार्यक्रम है, तुह सारे भी इस कार्यक्रम च जेड़ा फरमाइश है ना से ज़रूर करी सकते। पहले श्रोता या अगले श्रोता जिड़ा ने से यहाँ करने जुड़ चुके हैं ना, कर दें तिना करने गाल बात। हेलो
1: हेलो हेलो।
0: हेलो, नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। जी तुहांदी आवाज़ कुछ कटी कटी क्यों दी जी, तुहां अपने रेडियो सेट दी आवाज़ कम करी लिया जी। जी जी करी ली आवाज कम तो। हाँ जी जी स्वागत है जी तोहदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च।
1: धन्यवाद।
0: जी तुह कुथु ते बोला दी, कने तोहदा ना के है जी। जी दाड़ी ते बोला दे मेघनाथ जी।
1: हाँ
0: जी ता मेघनाथ जी, कदिया लगा था तुह जो ये कार्यक्रम माटी दी महक।
1: जी हाँ जी, बड़ा बढ़िया लगता है। इंतजार करते रहते
0: जी अच्छा
1: हैं,
0: जी
1: दो बच्चे ना।
0: जी
1: हाँ जी
0: जी ता मेरिया जेड़ा गल्ला बातां न सेक दिया लगदियां तुह जो।
1: बहुत बढ़िया
0: जी ता
1: हाँ
0: गल
1: जी।
0: हाँ करा दे थे सोच, यानी सोच के ना पानी दी, तो हाँ जरूर मेरी गाल जड़े से
1: हाँ
0: सुनी
1: जी
0: होनी ना जी।
1: अच्छा जी हाँ
0: जी
1: जी सोच
0: जी ता
1: अच्छी होनी चाहिए आदमी की, ठीक
0: जी जी
1: है ना।
0: जी
1: पानी साफ सफाई ठीक है, साफ
0: जी
1: पानी पीएंगे तो ठीक
0: जी
1: है नहीं।
0: जी जी
1: हाँ अपनी भी और भी साफ सफाई रखना चाहिए।
0: जी
1: हाँ जी साफ सुथरा वातावरण जो है सबसे बढ़िया होगा।
0: जी सबसे बेस्ट है ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी ता मेघनाथ जी, आज तुह कुंदिया गीत सुनना पसंद करके।
1: आज राम का बुलावा आया बुढ़िए बन गठड़ी।
0: जी राम दा बुलावा आया बुढ़िए बन गठड़ी।
1: हाँ जी
0: जी जरूर ए भजन ए फरमाइश तुह तक पहुँचान दें जी।
1: बहुत धन्यवाद। 4 बजे से हाँ तुम्हारे प्रोग्राम में सुन ले,
0: जी अच्छा 4 बजे
1: बहुत
0: ते
1: बढ़िया
0: सुनना शुरू हो जाते।
1: लगा।
0: जी
1: हाँ गणेश फ्री चालू है तो वहाँ अपने आप भजन लगाते हैं, बड़े बढ़िया लगते हैं।
0: जी धन्यवाद जी तुहंदा, इतना ज़्यादा तुहां रेडियो गुंजन धर्मशाला जो प्यार दिंदे ना जी।
1: थोड़ा थोड़ा चल सवेरे भी वो आ जाए तो आ जाए, यहाँ तो कुछ और फर्क है, इतने भी वो आ जाए बस और फर्क है।
0: जी ता जिड़ा सवेरे दी आवाज़ तुहां सुन दे ना से रिकॉर्डेड है, कने से हिंदी वाली आवाज़ है ना जी, ये पहाड़ी चाहिए आंदी फिरी। जी जी
1: बड़ा अच्छा लगता, बहुत अच्छा, बड़ी
0: जी
1: खुशी होती है जब वहां सुन लेगा तुम्हारी आवाज।
0: जी
1: हाँ बड़ी दिल की बहुत खुशी
0: जी धन्यवाद जी तोहंदा।
1: होगी।
0: जी तो जरूर तोहंदी जिड़ा फरमाइश है से तोहं तक पहुंचा दें जी, जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तोहंदा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी तशो तो पहुंचा दें ना। मेघना जी तक तिना दी ए प्यारी दई फरमाइश तो हसारे भी जरूर इंजॉय करा।

कानवे दशमलव दो मेगा हर्ट्स पर ए है तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारी कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने इसी भजन कन्ने हाँ फिरी ते तो हाँ तक वापिस पहुंची हो न अपना जेड़ा माइक है तिसिल वापिस आई हो न तो हाँ तक गलबात करना क्योंकि ये माइक ही है जेड़ा अहां दी आवाज़ तो हाँ तक पहुंचा दे कने फेसबुक लाइव भी तो हाँ कने जुड़ी सकते दर्शो तो जरूर इस कार्यक्रम दे सफर कने जुड़ा कने हाँ कने गल बात जेड़े से जरूर करा कने अपना जेड़ा जिंदगी दा सफर है उस भी जरूर इंजॉय करा कल पर निर्भर ना हो करी आज पर अजकना जेड़ा दिन है उस जो खास बना अपने कन्ने तो इसी गलबात कन्ने हाँ अग्गे बढ़ते न कन्ने अगली जेड़ा फरमाइश है से यहाँ तक पहुँची हुए व्हाट्सएप के माध्यम ने तो सारे जो पता है कि जेड़ा श्रोता है न से जो व्हाट्सएप मैसेज भी करते न कन्ने कॉल भी करते न टेक्स्ट मैसेज भी करते न तो ये फरमाइश यहाँ जो आई हुए कांगड़े ते कने तिना दा नाम है अंकित जी। अंकित जी तक हाँ ये गीत पहुँचा देना तो हाँ सारी भी इंजॉय करा।

0: लो आ गई फायर ब्रिगेड।
1: चुप कर माँ, कितनी बार कहा है बिजली बचाओ, अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है।
2: और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो, बिल भर देंगे पापा।
1: माँ बात बिल की नहीं है, बात खपत की है। देखो बिजली कहाँ से आती है, थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, और पता है इससे जो फ्लाई ऐश निकलती है वो हवा पानी और मिट्टी तीनों को प्रदूषित करती है।
0: हमें उससे क्या,
1: उपभोग कम तो मांग कम, पावर प्लांट से प्रोडक्शन का बोझ कम, समझे?
0: आना समझ गया।
1: मम्मा पानी बंद करो, ये भी बिजली से ही आता है।
3: सुविधाओं का इस्तेमाल समझदारी से करें, जरूरत के अनुसार ही पानी और बिजली खर्च करें। उत्पादन का बोझ होगा कम तो सुरक्षित पर्यावरण और हम।

0: देखिए इसकी खांसी तेज चल रही है, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा।
1: तुम तो यूं ही घबरा जाती हो।
2: अच्छा मेरे एग्जाम कब है?
1: एग्जाम?
2: हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है?
1: बेटा ये सब माँ को पता होगा ना?
2: पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना।
1: चलो अस्पताल चलते हैं।
3: इसे निमोनिया हुआ है, सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही।
4: पार्थ याद रखना, जिंदगी कल से शुरू नहीं होती, क्योंकि वो कल कभी आता ही नहीं। जो तुम आज नहीं कर सकते उसे तुम कल भी कभी नहीं कर पाओगे। हम अक्सर कल के इंतजार में अपना आज खो देते हैं और फिर एक दिन बस अफसोस ही बाकी रह जाता है। अगर जीतना है तो आज से ही लड़ना सीखो, क्योंकि बहाने बनाने वालों के लिए मंजिल हमेशा दूर होती है। अपनी मेहनत को कल पर मत टालो, क्योंकि वक्त किसी का सगा नहीं होता। उठो और आज ही कुछ ऐसा करो कि तुम्हारा कल खुद बदल जाए।
5: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
6: हेलो
7: हेलो सर, सर मैं फॉर्चुनेट लॉटरी से अनुज।
6: हाँ बोलिए।
7: बधाई हो सर, आपको 10 लाख की लॉटरी लगी है।
6: 10 लाख? सच्ची?
7: जी जी सर। एंड सर आपको क्लेम करने के लिए सिर्फ 10,000 की रजिस्ट्रेशन फी देनी होगी।
6: 10,000 की रजिस्ट्रेशन? क्यों?
7: सर ये वन टाइम प्रोसेसिंग फी है।
6: ओके।
7: इससे आपकी लॉटरी पे टैक्स भी नहीं लगेगा।
6: अच्छा
7: सर, मैं पेमेंट के लिंक भेज रहा हूँ, आप उस पे ट्रांसफर कर दीजिए।
6: अच्छा, ये ले।
7: यस सर।
8: मछली तो फंस गई। शिंगे और ये स्क्रीन का फोटो लो, हार्ड डिस्क, सारे हार्ड डिस्क उठाओ। याद रखिए, ऐसे फर्जी लॉटरी कॉल्स पे या उनसे आए मैसेजेस पे विश्वास ना करें, ना ही किसी अनजान लिंक पे क्लिक करें। तो सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
9: चलो बच्चों खाना लग गया।
10: पर ये क्या माँ, ये तो हरी हरी सब्जियाँ है।
11: कुछ अच्छा नहीं बनाया।
9: अरे ये हरी सब्जी ही है सबसे अच्छी। हरी सब्जियाँ बच्चों खाओ।

0: अरे 6 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चे बने स्वस्थ और तंदुरुस्त।
1: सुनो तुम पढ़ी लिखी हो?
2: हाँ बिल्कुल।
1: तो मेरे एक सवाल का जवाब दो।
2: पूछो।
1: रेडियो और अखबार में क्या फर्क है?
2: सिंपल, रेडियो में रोटी नहीं लपेट सकते।
1: वाटसन यूनिवर्सिटी से पढ़ी हो?
2: हाँ, तुम्हें कैसे पता?
1: बस गेस कर रहा था।
2: तुम्हारे गेस भी
3: कौन है? कहाँ से आते हैं?

दोस्तों 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

0: श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।
1: गाओ।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

0: लो आ गई फायर ब्रिगेड।
1: चुप कर माँ, कितनी बार कहा है बिजली बचाओ, अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है। और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो, बिल भर देंगे पापा। माँ बात बिल की नहीं है, बात खपत की है। देखो बिजली कहाँ से आती है, थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा। और पता है इससे जो फ्लाई ऐश निकलती है वो हवा पानी और मिट्टी तीनों को प्रदूषित करती है।
0: हमें उससे क्या,
1: उपभोग कम तो मांग कम, पावर प्लांट से प्रोडक्शन का बोझ कम, समझे?
0: आना समझ गया।
1: मम्मा पानी बंद करो, ये भी बिजली से ही आता है। सुविधाओं का इस्तेमाल समझदारी से करें, जरूरत के अनुसार ही पानी और बिजली खर्च करें। उत्पादन का बोझ होगा कम तो सुरक्षित पर्यावरण और हम।

0: देखिए इसकी खांसी तेज चल रही है, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा।
1: तुम तो यूं ही घबरा जाती हो।
2: अच्छा मेरे एग्जाम कब है?
1: एग्जाम?
2: हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है?
1: बेटा ये सब माँ को पता होगा ना?
2: पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना।
1: चलो अस्पताल चलते हैं।
3: इसे निमोनिया हुआ है, सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही।
4: पार्थ याद रखना, जिंदगी कल से शुरू नहीं होती, क्योंकि वो कल कभी आता ही नहीं। जो तुम आज नहीं कर सकते उसे तुम कल भी कभी नहीं कर पाओगे। हम अक्सर कल के इंतजार में अपना आज खो देते हैं और फिर एक दिन बस अफसोस ही बाकी रह जाता है। अगर जीतना है तो आज से ही लड़ना सीखो, क्योंकि बहाने बनाने वालों के लिए मंजिल हमेशा दूर होती है। अपनी मेहनत को कल पर मत टालो, क्योंकि वक्त किसी का सगा नहीं होता। उठो और आज ही कुछ ऐसा करो कि तुम्हारा कल खुद बदल जाए।
5: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
6: हेलो
7: हेलो सर, सर मैं फॉर्चुनेट लॉटरी से अनुज।
6: हाँ बोलिए।
7: बधाई हो सर, आपको 10 लाख की लॉटरी लगी है।
6: 10 लाख? सच्ची?
7: जी जी सर। एंड सर आपको क्लेम करने के लिए सिर्फ 10,000 की रजिस्ट्रेशन फी देनी होगी।
6: 10,000 की रजिस्ट्रेशन? क्यों?
7: सर ये वन टाइम प्रोसेसिंग फी है।
6: ओके।
7: इससे आपकी लॉटरी पे टैक्स भी नहीं लगेगा।
6: अच्छा
7: सर, मैं पेमेंट के लिंक भेज रहा हूँ, आप उस पे ट्रांसफर कर दीजिए।
6: अच्छा, ये लिंक?
7: यस सर।
8: मछली तो फंस गई।
9: और ये स्क्रीन का फोटो लो, हार्ड डिस्क, सारे हार्ड डिस्क उठाओ। याद रखिए, ऐसे फर्जी लॉटरी कॉल्स पे या उनसे आए मैसेजेस पे विश्वास ना करें, ना ही किसी अनजान लिंक पे क्लिक करें। तो सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
10: चलो बच्चों खाना लग गया।
11: पर ये क्या माँ, ये तो हरी हरी सब्जियाँ है,
12: कुछ अच्छा नहीं बनाया।
10: अरे ये हरी सब्जी ही है सबसे अच्छी। हरी सब्जियाँ बच्चों खाओ

0: छह वर्ष तक के आयु के सभी बच्चे बने स्वस्थ और तंदुरुस्त।
1: सुनो, तुम पढ़ी लिखी हो?
2: हाँ बिल्कुल।
1: तो मेरे एक सवाल का जवाब दो।
2: पूछो।
1: रेडियो और अखबार में क्या फर्क है?
2: सिंपल, रेडियो में रोटी नहीं लपेट सकते।
1: वाटसन यूनिवर्सिटी से पढ़ी हो?
2: हाँ, तुम्हें कैसे पता?
1: बस गेस कर रहा था।
2: हमारे गेस्ट भी
3: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं?

नमस्कार श्रोताओं, FM बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो ऐसा भी ट्यून कर रहा हूँ। आऊँ सचिन कपूर हाजिर बुझको अच्छी कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा लेकर बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। हाँ सभी होने वाले रहा सभी श्रोता घंटा क्या हाल चाल नतुंद है, उम्मीद करनो सभी रे हाल चाल ठीक भुणे तो सब खरे भुणे अपने घरे खुश भुणे तंदुरुस्त भुणे और राजी बाजी भूने हिन छोतों। हम अक्सर बोलो बार बार बोलो कि अगर तो है खुश हिन ता तुसु घाट बीमारी लगनी ना, और तो है दिनारा मतलब थोड़ी देर हंसी करे मुस्कुराई करे गल भी कर लेंदे ना ता तुसु घाट बीमारी लगनी है ना। हंसना मुस्कुराना के सो बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तशो तो इस समय धर्मशाला रे मौसम बेगा काफ़ी तेज़ तरार के सो बरखा लग रहे थे शोतो, लेकिन इस समय अगर है गल करना एट प्रेजेंट था इस समय के सो काफ़ी तेज़ धूप किया सो लग रहे है बारिश हो तो है ना, और धौलाधार पर्वत किया सो बड़ा ही प्यारा नज़ारा किया सो हेरने जो इस समय मुड़ो करता है शोतो। तो इस समय मेरी गल करूँ आऊँ तो सब कैसे सोच सकते कि बैगा काफ़ी ज़्यादा किया सो बरखा बोई है शोतो, काफ़ी तेज़ तरार बरखा किया सो बोई है। और अब जो अगर वो मौसम रे गल करूँ शोतो इस समय की 100 डिग्री सेल्सियस रे आसपास मौसम है शोतो, ना मेरी गल करिए 86% के आसो नमी है। और एक कार्यक्रम बिल्कुल लाइव इस समय चल रहा है, आज त्योहार बार है शोतो और आज कार्यक्रम बिल्कुल लाइव है। इस लाइव कार्यक्रम में तो सब भी जुड़ी सकते हैं ना 7081 8 8 7 0 9 पर नंबर अक मौके आप फिर शेयर करनो साझा करनो 7 0 8 8 7 0 9 अक पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत किया सो होनी सकते हैं अपने क्षेत्र रे जानकारी किया सो होगी साझा कर सकते हैं श्रोतों। यह गलारा विशेष ख्याल ध्यान रहे कि जानकारी किया सो वीडियो मन साझा करने लाइक ज़रूर बुआ, रेडियो मन जो दसने लाइक किया सो ज़रूर बुआ श्रोतों। तो कुछ एक खास जानकारी लेकर यासू तुसू अगो जरूर हाजिर भूना हाँ और ज़रूर शेयर करनी सो खास जानकारी भी, लेकिन आइया आगाज कर लंदन कार्यक्रम रा इस गीता सोगे बने रहे तो ये सब वेड़ी गुंजन री सी गुंज सोगे।

शो तो बहुत प्यारे थे गीत, होप सो तो एंजॉय करो बुना अपने घर भाई करे मज़ा भी आप बुना तू सब भी है ना। चलिए लाइव फेसबुक रे माध्यम तो भी पूछे गंदे ये भी जरूरी है, क्या बोलते हैं तो बिल्कुल शो तो FM बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रो और सचिन कपूर बिल्कुल लाइव हाजिर हाथ हूँ सभी रे रेडियो सेट में वेड़ी गुंजन धर्मशाला में तो सब कनेक्ट हो सकते हैं जरूर जी बुंदे ने 7018879 पर कॉल करे करे नंबर एक मौके फिर शेयर कर लूँ तू होगी 7018879 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत होने सकते हैं अपने क्षेत्र की जानकारी किया सो साझा कर सकते हैं। एक अलारा विशेष ध्यान रहे श्रोताओं की जानकारी किया सो रेडियो मंच दसने लाइक जरूर हुआ रेडियो मंच साझा करने लाइक किया सो जरूर हुआ। आइए था खास कार्यक्रम तुम अपना गद्याली खास कार्यक्रम है अपना गद्दी कार्यक्रम है श्रोताओं और इस कार्यक्रम जो आगू बढ़न देने कुछ एक जानकारी के ना सो भी तुसु तक रह है लेकर आए ना और तुसु तक रह है पहुँचंदे हिन तब प्रदेश में सरकारी राशन डिपो में किया सो अब उपभोक्ता जो जल्द मिलना है नवा डिजिटल मशीनर माध्यम तो राशन लेने री सुविधा जी बिल्कुल शो तो बड़ी जल्द अभी तू सो किया सो नए माध्यम तो किया सो राशन लेने भी सुविधा किया सो मोलने तुंदे अपने डिपो मंच शो तो इति वास्ते खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग री और तो किया सो टेंडर हुआ है शो तो विभाग और कंपनी भी टेस्टिंग रे बाद किया सो संबंधित कंपनी जो टेंडर अवार्ड भुचगाना है और इतों बाद विभाग री और तो प्रदेश भर में इसी महीने वे अंत तक किया सो हाईटेक बायोमेट्रिक मशीन जो किया सो इंस्टॉल करने रा प्रयास किया सो जारी रहना और प्रयास संभव भी बुझ गया छा ये सब वह विचार देने का जो कि प्रदेश से सरकारी राशन डिपो में किया सो अब जल्दी नए डिजिटल मशीनर माध्यम तो किया सो राशन लेने री सुविधा किया सो मोलने हाशो तो है ना और अने जानकारी बिल्कुल इस प्रकार होगी चलनी हिन इन द फेसबुक रे माध्यम तो भी ऐसा होगी श्रोता गण सो जुड़ रहे हिन अश्विनी सुकेतिया जी गुड इवनिंग सचिन जी गुड इवनिंग जी गुड इवनिंग और ये लाइव कार्यक्रम चल रहा है अपना गादा कार्यक्रम जो कि फ्रिक्वेंसी 91.2 मंच तो है ट्यून कर सकते हैं वेड़ी गुंजन इन द स्टेशन रहा ना और इतिमा तो है होने सकते हैं और अगर तो एक दूर पार हिन तो है श्रोताओं प्ले स्टोर में खिंच करे गुंजन इंडिया रेडियो अगर लिख दें तो तड़ी भी तो है किया सो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड अपने इस गाद्य कार्यक्रम जो किया सो होने सकते हैं प्यार दे सकते हैं और इस प्रकार होगी जानकारी रा सिलसिला की असोए चलते रहना शो तो जानकारी रा पिटारा की असू शो तो सोए खोलते रहना हाँ अन्य जानकारी भी तू सो गया सू जरूर शेयर करनी है आइए तो लेकर चलते तू सब भी जो शो तो कार्यक्रम जो थोड़ा करे और हगों गया सो बढ़ाई लेंदे हिन है ना और इस गीतरी और किया सो तू सो लेकर ही चलते हैं शो तो कमल नहरी द्वारा एक गौरा एक गीत था और इस गीतारा आनंद लंदन रेडी गुंजन धर्मशाला मंच बने लिया आरजे सचिन कपूर सो गुंज अपने

0: है 701-880-9 पर कॉल करे करे। इसी बीच आशा जी जो कि जी इतों पर खाटी खाटी रे रहने वाले हिन त्यारी फरमाइश छोरे हा ढिम त ढिम ढोल ढिम त ढिम ढोल की रा बाजा ए गीत तिन्या होना जरूर होना ले तिन्या ए गीत लेकिन इन दे श्रोता बेस हो गए कनेक्टेड हिन पुछ दिन कौन बल्लू दिन और कड़ी थो बल्लू करते इन नमस्ते जी नमस्ते। हेलो
1: हेलो
0: हाँ जी बड़ी दूर थो आवाज़ छुंदे जी थोड़ी रेड चली है।
1: हेलो
0: हाँ जी नमस्ते जी
1: जी नमस्कार
0: तो आवाज़ बड़ी दूर हो छुंदे जनाब
1: दूर तो नहीं उल्टा नेड़े ही है ना
0: ना ना दूर हैं तो हाँ जी दूर थों तो अच्छे होंगे आवाज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा जी मुझे तो क्लियर आवाज़ के सो न बुझू कर दे तुम दे।
1: अच्छा
0: हाँ जी
1: ठीक है
0: चलिए ठीक है जी। वैसे तो है दूर हिन आवाज़ दूर हो इच्छुंदे पर कोई गल ना जी दिल था संपर्क जरूरी बुंदा है ना कई वक्त की ऐसा सोगी बेखुरा मनो भी दिला रहना बुंदा पर तो है दूर हिन लेकिन तो है दिल अंदर ने तो है लाइव कार्यक्रम में कॉल करे हा कुंडल गीत होना पसंद कर ले जी
1: गाना सुनना अमन कौर का नवा जेड़ा गाना।
0: अच्छा अमन कौर रा नवा गीत जो निकल रहा क्या बात है चलिए ठीक है जी। तो है होनो थो नवा गीत अमन कौर रा
1: हाँ जी सुने
0: कदे लगो थो तुसु
1: बहुत बढ़िया
0: चले ठीक है जी। अमन कौर रा नवा गीत किया सो तू वह है जरूर हूँ नंदन
1: ठीक है जी बहुत बहुत धन्यवाद
0: धन्यवाद जी धन्यवाद। शोधो एफएम बैंड 91.2 MHz पर है वेडी गुंजन धर्मशाला और एक कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा चल रही है इंदे अगले श्रोता सो के कनेक्टेड हैं। नमस्ते जी
2: नमस्ते सर जी नमस्ते जी
0: नमस्ते जी नमस्ते क्या हाल चाल ठीक ठाक।
2: हाँ जी सर जी ठीक ठाक जी
0: और करे करे लुक
2: ठाक ना सर जी।
0: हाँ जी
2: ठीक ठाक ना तुसा सर जी
0: बढ़िया जी आशीर्वाद है तुंदा
2: नहीं नहीं सर ऊपर आले आशीर्वाद रहना चाहिए सर जी।
0: चलिए जी ऊपर आले रह तो रहना चाहिए पर तुंदा भी जरूरी है ना जी। अच्छा जी जनाब कौन बोलूं देन और कड़ी थो बोलू कर देन
2: सुनील कुमार बोल रहे थे कोकी
0: सुनील कुमार जी।
2: हाँ जी सर
0: सुनील कुमार जी कुंडने गीत होना तुसु
2: मोहित गर्ग की आवाज़ सुनाई नहीं हो कांगड़ी दी बरात
0: मोहित गर्ग की आवाज़ में कांगड़ी दी बरात।
2: हाँ जी सर जी
0: चलिए ठीक है जी। और बरखा बुरखा बुचुंदी
2: बरखा दा प्याग दी है लगी है सर जी हुन दिन ता निंबड़ है हुन।
0: अच्छा
2: राती दा पता नहीं सर जी
0: चलो ठीक है जी जरूर होना ले तो सुई गीत है
2: ठीक है सर जी धन्यवाद सर जी
0: धन्यवाद जी धन्यवाद नमस्कार। तो श्रोतों तो सब बन रहे इस समय एफएम बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला से गया और हूँ सचिन कपूर है तुम्हारा अपना आज से वीडियो जो कि बहुत बहुत स्वागत है जनाब हार्दिक अभिनंदन। हाँ आइए दो फरमाइश आसू लगातार आई त्राई फरमाइश लगातार आई अक खाटियों आया अक इन जो पहले श्रोता थी है सो दाड़ी थोन और इस लास्ट जो श्रोता इन सुनील कुमार जी ये इन श्रोता जो मनखंडी साइड हो है ना तो अलग अलग इलाके थों की सो इस कार्यक्रम मंच कॉल इंदे हाँ लेंद जम्मू थों भी कॉल इंदे इंदे भरमौर थों भी किए श्रोतों सो कॉल इंदे हाँ कदी कदी है ना इंदे श्रोतागण के सो भरमौर रे भी बड़े हिन क्वार्सी रे बड़े इंदे श्रोतागण इन लामू रे बड़े श्रोता निंदे असुगी जुड़ रहे अपना खनी रे बड़े श्रोता असुगी जुड़ रहे भरमौर क्षेत्र रे जगर नाल करता हा। चलिए फिलहाल जी जी जो जो जो जुड़ते गले अस है तुस होगे के सरूबरू जरूर करन दे गले शो तो अतः कार्यक्रम जो आगे बढ़ेंदे और अगली जानकारी तुस होगे शेयर कर देन साझा कर देने। हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून सीजन में वन विभाग है कि 7-8 हज़ार हेक्टर भूमि पर 50 लाख पौधे रोपण करने रहा कि असो लक्ष्य रख रहा शो तो जो कि बहुत ही अच्छी गल है। जति में करीब 4 हज़ार हेक्टर भूमि पर राजीव गांधी वन समृद्धन योजना रे तहत के ऐसो पौधे लगने हैं शतों इति वास्ते विभागे की ऐसो सब वन मंडल स्तर पर की ऐसो तैयारी शुरू करी दी तुरी हिन। विभाग राज्य वे विभिन्न जिला जो भौगोलिक परिस्थिति एवं संतुलित जलवायु रे मुताबिक किया सो चिनार और अन्य प्रजाति रे पौधे किया सो लगाने तैयार है। विभाग वर्ष 2030 तक मिशन 32 यानी राज्य वे हवित आवरण और आवरण जो कि 80% तक बढ़ाने वे लक्ष्य जो पूरा करने वे दिशा में कार्य किया सो करू करता हा शो तो है ना। ठेरे मद्देनज़र इस बार किया सो वन महोत्सव में प्रदेश में सभी जिला में पौधारोपण किया सो अभियान जो सफल बनाने वास्ते विभाग है टारगेट फिक्स कर रहा। इस लक्ष्य तो प्राप्त करने वास्ते जायका वानिकी परियोजना भी महत्वपूर्ण भूमिका किया सो निभाव कर दे हर्षतम। तो कुछ जानकारी हैं जो तुसोगे शेयर करो करते हैं। इंद्र चरण दास सियूरी असु होगे लाइव का जो कि है फेसबुक के माध्यम तो भी लाइव हैं। तो बल्लू कर दिन कपूर जी हरिपुरेरा बाग गीत निवासी खनिहारा हिन इतना करी मुझे पढ़े गोवा खजो की फोन आ सो काफ़ी ज़्यादा दूर की असो रहा। चरण दास जी कमाल दी गल है तो है फेसबुक रे जरिए भी असू हूँ कर देन और रेडियो रे जरिए भी असू क्या सो हूँ कर देन ऐसे शो तो बहुत कम बुंदे ता थैंक यू सो मच जी। और इस कार्यक्रम रिए यूनिकनेस आ कि तो है आजकल रेडियो रे माध्यम तो हूँ कर देन काफ़ी साल तो असू लाइव लेकिन अब फेसबुक रे माध्यम तो भी असो हूँ कर देन और गल यूनिकनेस ये आ कि तो फरमाइश फोन में ना दे करे आजकल लाइव में देखो कर देन कमेंट रे माध्यम तो है ए यूनिकनेस। चलिए था ठीक है जी कार्यक्रम जो चरणदास जी हरिपुरे रे बाग है बिल्कुल नोट कर लेंदे हैं और ऐ नोट करी लो कि तुंदे फरमाइश की सो असू जरूर पूरे करने है ना जी। तो सब बन रहे ने समय FM बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला सोगे ता आइया कार्यक्रम जो आगे बढ़ेंदे हैं शो तो और अब फरमाइश का दौर किया सो पूरा कर देन लेकर चलते तू सब भी जो अब खाट टीरी किनारी बने रहे तो सब हसुस होगी शो तो।

0: शो तो एफ एम मैंड क्या नु दिशम दो इमे क्या हर्ट्स पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम इन अपने गप अगेन सो चल रही बिल्कुल लाइव इन द वेडियो सेट में जनाब जरूर अगर रेडियो ऑन कर रहा तो कॉल कर सकते हैं अपने इस कार्यक्रम में अपने गद्याली कार्यक्रम में 7 0 8 8 8 7 0 9 8 पर नंबर अक मुके फिर हम शेयर करनो साझा करनो हाँ 7 0 8 8 8 7 0 9 पर तो है सब इस समय बन रहे अपने गदयाली कार्यक्रम होगी कार्यक्रम रहना हिंदी अपनी गप्पा तैया फिलहाल कार्यक्रम जो होगो बढ़ते हैं श्रोतों और इन श्रोतगण अस हो गए कनेक्टेड हैं पुछ दिन कौन बोलूँ देन और कड़ी थों बोलू कर दिन नमस्ते जी।
1: नमस्कार महाराज जी।
0: जी नमस्ते जी नमस्ते ठीक ने।
1: हाँ जी ठीक ठाक महाराज और तो सुना।
0: बहुत बढ़िया जी करे लगुरेन कैलूर कमाना
1: बस गहरा लगना आज पुज्जे ये तो रेडियो लगाई हमें।
0: अच्छा अच्छा
1: हाँ जी
0: चलिए रेडियो सो के तुंदा बड़ा पुराना नाता बड़ा पुराना लगाव है ना।
1: और मारा ये मैं तो 1962 हूँ हुंडा लिखा देना जदा हुई
0: 1962 तो 1962 था हूँ।
1: हाँ जी हाँ जी
0: क्या बात है तैने तो मुझे लगता हूँ बिकस की हो रही जन्म अंदर बुना
1: नहीं मतलब ऐसा ना जन्म अंदर ना थी ये माल के दे प्यार है ना थी ये जन्म अंदर तो थी ये माल के दे प्यार है ता इंसान दी जुन्ने मुली के इंसान दी जुन्ने मुली दे खरा कम कमाई करी है।
0: हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक बोलू कर दें तो है इंसान री जीवना मोल दे आकी का है खरे कर्म भी कर रहे बुन और खरा कमूर बबो लेकिन इंसान जाने इंसान री जीवना में चलिंदा हरदीप जी तहने सो ये सब चीज़ा भुलेगंदा
1: है
0: ना तहने सो दुए री बुराई लगी पिंदा करना तहने सो दुए दुए हो गए किया सो दुए खरा बुरा भरा बुरा भला किया सो बलना लगी पेंदा दुए रा बुरा करना किया सो लगी पेंदा पूजा पाठ था कि सो दूर बुचेगंदा हा है ना सच्चाई दी रात था कि सो दूर बुचेगंदा हा अपने अंदर किया सो मतलब है कसियो भी कुछ भी किया सो बलि दिन दे लेकिन है अपने अंदर किया सो जांकी करी ने देखिया है कितने करी पानी अंदर है ना
1: और
0: हमेशा दुए हो किया सो दुख दिंदा इंसान हर्ट करता हाँ आजकल आजकल के ये चल रहा है इस कलयुग में इस दौर में ये आजकल का इंसान मतलब बड़े घट मिलने हरदेव जी जो सच्चे भून जैसे अपने कमों मतलब बुआ जो कसियों कुछ ना लेना देना बुआ है ना ऐसे मनु बड़े घट नहीं है दुनिया अंदर।
1: हाँ जी
0: प्रेरित करने वाले बड़े घाट घाट न तुसो शाबाश देने वाले बड़े घाट ने है दुनिया अंदर इस समय कि तो है चलो अच्छा काम करो कर दे तुसो कोई मतलब शाबाश दिया कि यार खरा काम आवा के मैं गुड थोड़ी करी और हागू बड़ा है ना।
1: हाँ जी हाँ जी
0: बहुत घट है ये इंसान रे आजकल कोरियोग्राफी इस प्रकार रे कुछ
1: हाँ बिल्कुल ये अच्छे आदमी घर मोड़ने जी
0: बहुत कम बहुत कम
1: हाँ क्या लिखी सूरत तुम देख ना रहे तो हम मोड़े ना फिर हम वट यार
0: अच्छा
1: हाँ मिल मिल फिर ये ला मिलो
0: अच्छा जी
1: हाँ जी
0: चलिए ठीक है जी जरूर ये और फेसबुक रे माध्यम तो भी है तो हंदे भी बंदे ना और फेसबुक के माध्यम तो तू इंदे बड़े पुराने श्रोतन इस कार्यक्रम रे ता फेसबुक के माध्यम तो भी तू है रूबरू करवाना चंदे मनुष्य के। चलिए ठीक है हरदेव जी हरदेव जी क्या फरमाइश है तुम दे फरमाइश दसा
1: टुट्टी मेरी छिकुनो दी काची हो बैरिया बाल है वो बाल है
0: क्या बात है क्या बात है चलिए ठीक है जी जरूर तू सुएगी थोड़ा ले
1: ठीक है महाराज जी
0: असु और भी श्रोता कॉल करो कर दें ना तो कनेक्ट कर दें तुस इन अगले श्रोता असु की कनेक्टेड है नमस्ते जी।
2: हेलो
0: हेलो हेलो नमस्कार जी
2: नमस्कार नमस्कार नमस्कार
0: नमस्कार क्या हाल चाल जी ठीक ठाक राजीव बाजी
2: बढ़िया बढ़िया एकदम तंदुरुस्त
0: अच्छा तंदुरुस्त है ना बहुत जरूरी है।
2: हाँ जी हाँ जी और क्या अगर इतनी वो मैं समझता हूँ कि वो तंदुरुस्त है जो हॉस्पिटल का चक्र से दूर है ना वो तंदुरुस्त है।
0: हाँ बिल्कुल जो हॉस्पिटल रहे चक्र से दूर है सो सो सुखी है
2: सब वो सो संतुष्ट है
0: जी बिल्कुल
2: ऐसे बड़ा मुश्किल है कोविड वाले में,
0: हाँ जी
2: तो उसे बेहतर है कि दुआइयों से दूर रहो, है ये
0: जी
2: दुआइयां खाने के टेक निकले। हर आदमी की जिंदगी में मैं देखता हूँ कि दुआइयां आ ही चुकी हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, तो
0: जी
2: उनसे
0: बिल्कुल
2: दूर रहो ज्यादा बेहतर है। तो आज मैं एक छोटी बात करूंगा, आप अभी आपकी विषय है,
0: जी
2: अभी 2 मिनट कर रहे थे किसी पर्यावरण के बारे में कुछ बात कर रहे थे, पेड़ों
0: बिल्कुल
2: पौधों के बारे में।
0: बिल्कुल बिल्कुल जानकारी जो थी सो है बिल्कुल पहुंचाए तू सुधगरे, और ये हिमाचल प्रदेश सरकार वालों कर दे जी, और जो जानकारी बंदे सो आम जनता तक पहुंचाना इनका दायित्व बनी गंदा, इनका कर्तव्य बनी गंदा था,
2: बिल्कुल बिल्कुल
0: ये
2: बिल्कुल
0: जानकारी है पहुंचाए तू
2: तो
0: सुधग
2: हाँ हाँ
0: जी
2: पहुंचा दीजिए, बड़ी शुक्रिया। खैर मैं आपको एक बात पूछूंगा आपकी के माध्यम से, आपके आप ही के मंच पर, अभी तो आपने बात करी पेड़ों की या पौधों की लगाने की,
0: ना हम आपको के फिर
2: अभी
0: तो सो
2: मेरे
0: क्लियर करना
2: ज्वाइन
0: चाहता जनाब, एक गल मैं ना करे गल हिमाचल प्रदेश सरकार करो कर दिया, ऐसे
2: ठीक
0: फैक्ट
2: ठीक
0: जरिए
2: ठीक
0: अंतुष तक
2: ठीक है,
0: पहुंचाने थे
2: मान
0: कर
2: लीजिए मान लीजिए मान लीजिए मान लीजिए,
0: जी
2: ये अभी जुलाई महीने का पहले पहले तो पखवाड़ा था ना, इसे हमें वन महोत्सव मनाते हैं, ठीक
0: जी
2: है
0: बिल्कुल
2: मनाते हैं ना,
0: बिल्कुल
2: तो मुझे ये बताइए सचिन हम लोगों ने आज तक कितने कितने पेड़ कितने में कितने पेड़ लगाए हैं और कितने सक्सेसफुल हुए, कोई ऐसा जवाब दीजिएगा मुझे कि आपने पेड़ लगा दिए और मतलब आपके पेड़ संरक्षण किया और सक्सेसफुल हो गया, ये मुझे बताइए। जो पेड़ बोलना आसान है जब तक प्रैक्टिकली नहीं हुए ना, है ना, और जो पौधे के नीचे फोटो खिंचवाना या कुदाल खुद फोटो खिंचवाना अलग चीज है।
0: अच्छा
2: जानवर खा दे जो मर्जी खा दे कोई लेने देना नहीं है, तो पैसा कौन जाया करता बिना बदले, इस पैसे की बेचे हुए कर दी इसलिए से नहीं लगा क्या फायदा पखवाड़े मनाई करी, है ना। मैं सीधी गल कर रहा मजाक में बिल्कुल सही बात है कि मैंने देखा नहीं, मैंने जितने भी इन लोगों ने पौधे लगाए ना बाहर न्यूज में बोलते कि खबरों में बोला जाता है।

0: कि हमने इस साल इतने पौधे लगा दिए, फला फला वैरायटी की स्पीशीज के पौधे लगा दिए। मुझे बताइए पौधे कहाँ से लगे हुए, मुझे देखो पौधे नजदीक में नहीं, रह नहीं रहा ना। जो लगाए थे वो भी काट कूट के मतलब वहां बिल्डिंग खड़ी कर दी।
1: चलिए जी, ये सवाल की स्वतंत्रता बड़ा जायज दिया सवाल है, और एक आम नागरिक जो आम नागरिक जो जनाब ये सवाल करना गया सो बिल्कुल बेहद ज़रूरी भी है। और चलिए तो है अपनी गल किया सो इस प्लेटफॉर्म तक, इस प्लेटफॉर्म के जरिए कि सो रखे है और बखूबी रखे, और इस तो बेहतरीन और राय बे चलिए इस समय तक न जाने कितने मनु हज़ार या लख हसु होने कर दिन शायद इतनी में से तुम दी गल की सो जरूर होने बुने कि जो पौधे लाओ कर दिन जी हाँ हज़ार वह हैक्टर हिसाब हो गए लगू कर दिन या 50 लाख पौधा रोपण की दसू कर दिन क्या है लाना हिमाचल प्रदेश सरकार तुम्हारा आम नागरिक बुने रहे आम नागरिक रहे बिल्कुल हक है जानने रहा कि अगर 50 लाख पौधा लगो है तो तेरी देखभाल किया सुगस करने तो आऊँ बिल्कुल ए तुसु थोड़ा कर दसना चाहता कि देखभाल वास्ते किया सो हिमाचल प्रदेश सरकार री और जो डिपार्टमेंट है वन विभाग है त्यारा दायित्व बनी गंदा त्यारा कर्तव्य बनी गंदा अपनी ड्यूटी निभाना क्योंकि सो जो ग्राउंड वर्कर भी हैं सो भी आई थिंक जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने सो 40-50 हज़ार भी है तनख्वाह लेव कर दिन हर महीने है ना, और जो ऑफिसर A1 A2 A3 है ना लेवल ग्रेड A B वे जो बिखरे हैं ऑफिसर सो तो अच्छी खासी सैलरी लेव कर दिन त्यारा दायित्व बनी गंदा सरकार रा तो चलो तू ना करे कि इं बलिता और इं लाइता है इतों बाद विभाग रा कार्य कि सो बनी गंदा ना कि तिया जो सो संभाले करे रखना और त्यारी देखभाल किया सो त्यारा दायित्व बनी गंदा तस पर्टिकुलर पर्सन रा दायित्व बनी गंदा कि सो अपनी ड्यूटी जो कि सो बखूबी निभा जो कि तस्यो इस ड्यूटी वास्ते कि सो सरकार महीने वा 40 हज़ार या 50 हज़ार रुपया जितना भी अमाउंट तिजो मुलदा वो है ना इति बिच ही मुलदा तो सो तो त्यार दायित्व बनी गंदा जी।
0: जी
1: जी जनाब
0: मैं ये बोल रहा था कि मतलब देखो जिस तरह क्लाइमेटल डिस्टर्ब हो रहा है इस सारा इकोलॉजिकल डिस्टर्ब इसी कारण हो रहा है कि डिफोरेस्टेशन बहुत ज्यादा हो गई है।
1: बहुत ज्यादा बिल्कुल
0: है ना
1: जी।
0: तो इसी का ये सबका ही दायित्व सब सबकी अकाउंटेबिलिटी बनती है इस मामले में।
1: बिल्कुल
0: कोई एक आदमी की पर्सनल नहीं है, समाज साझा बर्तन है हर आदमी का। प्रत्येक जब तक प्रत्येक इस चीज को नहीं समझेगा जिम्मेदारी से तो हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हमें कोसेंगी कि मैं हमारे बुजुर्ग मैं क्या छोड़ के गए थे।
1: बिल्कुल ये बोला था चलिए धन्यवाद जी। अनिल जी तो है धर्मशाला HPCA स्टेडियम वे किनारे तुंदे घर न, और अक्सर तो है सूझबूझ वाले सवाल के न सो चुकते हैं तुंदा उन तहे दिल तो धन्यवाद करनु।
0: थैंक यू धन्यवाद
1: धन्यवाद जी। चलिए जी अनिल जी थी और बड़ा सूझबूझ रहा सवाल थो कि चलो 50 लाख पौधा था लगना जो मैं खबर लाई थी कि 50 लाख पौधा रोपण रहा लक्ष्य के सो रुक रहा तो इं बड़ा मतलब चिंता रहा ये एक विषय भी थो, और जाहिर दे गल है कि सवाल करना आम जनता रह गया सो बिल्कुल दायित्व भी है कर्तव्य भी है कि अगर 50 लाख पौधा लाना तो तेरी देखभाल कौन कर ला है ना, और हर दे बिन हीरो भी बुने इं कि हाँ तैयारी देखभाल कोई ना करता तो बिल्कुल ये विभाग रहा काम किया सो बनी गंदा फॉरेस्ट गार्ड रहा काम किया सो बनी गंदा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रहा काम किया ये बनी गंदा हा कि अगर त्यार एरिया अंदर इस प्रकार रहे इतने पौधे के लगू कर दें या इतने पेड़ लगू कर दे हिन पौधे लगू कर दे हिन तो त्यारी देखभाल करना क्या सो 10% री जिम्मेदारी बनी गंदे जो ग्राउंड पर उपस्थित था है ना जो फील्ड पर उपस्थित था। बहरहाल तो सब बन रहे हैं इस समय आरजे सचिन कपूर सोगे कार्यक्रम में हिंदी अपनी गप्पा बिल्कुल लाइव हुनु कर दे हिन अपने अपने वीडियो सेट में, और भी श्रोता सोगे बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं कॉल करो कर दे थी आऊँ रुक कर दे तो 708-8-8-709 पर तो है कॉल कर सकते हैं श्रोतों। आइए फिलहाल मोहित गर्गरी आवाज़ में हूँ दिन कांगड़े दी बारात ए गीत।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गंजन धर्मशाला तो है सब ये ट्यून कर रहा और कार्यक्रम मिंदी अपनी गप्पा गैन सो चल रही हैं श्रोतो ता ये कार्यक्रम जो होगा बढ़ते हैं और कार्यक्रम मंच अब अगली अमन कौर रघुरा गीत है श्रोतो जो इन दे फरमाइश छोरे थे दाढ़ी थो ए फरमाइशा जो पूरी कर दें और अमन कौर रघुरा गीत किए सो हूँ दिन फरमाइशा को ज़्यादा हिंता समेरा भी अभाव रह गंदा थे के फटाफट फरमाइशा दौर पूरा कर दें।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेली गुंजन धर्मशाला तो है सभी है ट्यून कर रहा और कार्यक्रम में दी अपनी गप्पा गया सो बिल्कुल लाइव चल रही तो सभी रहे रेडियो सेट में वेली गुंजन धर्मशाला में अगमो के फिर मोटा मोटा स्वागत है जनाब, बड़ा बड़ा स्वागत है। फरमाइश रहा दौर की सो बिल्कुल चल रहा है इस समय और फरमाइश बचुरी भी नली हरिपुरे रहा बा खनियारत हूँ फरमाइश से कमल नहरी रहा गुरु गीता जरूर तुस तक है पहुँचल है लेकिन जानकारी और जो तुसु तक सु साझा करने हर्षो तो एच आर टी सी परिचालक अब 150 किलोमीटर थो अधिक दूरी वाले रूट पर के असो फ्रंट सीट पर बैठ सकते हैं। एच आर टी सी चालक परिचालक संघ है किया सो बीते माह निगम प्रबंधन व सरकार रसोगी बैठक में किया सो ये मांग अन्य मांग सोगे मांग भी प्रमुखता पर रखे थे और 200 किलोमीटर थो अधिक लंबे रूट पर परिचालक जो कि सो फ्रंट सीट पर बैठने रे मांग किया सो करे थे लेकिन निगम प्रबंधन रेस 150 किलोमीटर किया सो करी दिता है। ठेरी पुष्टि एच आर टी सी चालक परिचालक यूनियन और निगम प्रबंधन रे बिच बछोरे महत्वपूर्ण बैठक रे प्रोसेडिंग में किया सुबह छोरे हर्षोतों और तटीय संबंध में के सो जल्दी आदेश जारी हुए न और हजारों निगम परिचालक जो किया सो राहत भी किया सो मोड़े हर्षोतों यानी कि अब एच आर टी सी परिचालक किया सो 150 किलोमीटर तो अधिक दूर वाले रूट पर किया सो फ्रंट सीट पर बैठ सकता हाँ कुछ विवाद हुआ तो श्रोता हूँ और एक वीडियो वायरल हुए थे और सो वीडियो के सो पुज्जे बुने और तत्थों बाद फैसला किया सो बिल्कुल चलिया और हजारा निगम परिचालक जो कि सो राहत प्रदान भोया राहत मुड़े हा श्रोता हूँ तब

हाल कार्यक्रम जो हगु ब्रंदन और आऊ सचिन कपूर तो सुथों इजाजत भी ले लेनो शतो आवे का जो कि समय बुझगो तो सु सब भी तो इजाजत लेनेरा तो सु सब भी जो टाटा बाय बाय बलनेरा और गंदे गंदे वसे बलना चाहनोगे माता पिता री सेवा किया सो जरूर करा है ना सियाने री सेवा किया सो जरूर करा और हम हमेशा बोलता कि मौत हो मोटा दोस्त तुंदा कोई ना भूल सकता है ना सो सब भी मोटा तुंदा दोस्त था और तुंदा भगवान हा तुंदा सब कुछ हा था मोरी सेवा हमेशा करा मौत हो हमेशा ज़्यादा प्यार किए सो ज़रूर करा सो तो और माँ कभी अगर डांटे भी दिया गुस्से अंदर था सो खाए भी लेना चाहिए कभी कभी प्रसाद मुंजो तो हर त्रीय दिन मोलता रहता चलिए यही प्यार है और इस प्यार जो हमेशा तो यही बनाए कर रखा किसी भी चुगली मत करा किसी भी बुराई मत करा किसी भी बुरा भला मत बोला किसी वे बारे में बुरा मत सोचा सोता अच्छे कर्म करा इंसान री जीवन में छूरे हिंता अच्छे कर्म करना की सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हिन अपने कम मत हो मतलब रखना किया सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सोता हूँ इन शब्द था सचिन कपूर ले लेने तो सुता हूँ इजाजत नमस्ते धर्मशाला हंसदरिया मुस्कुरंदे रिया।

0: लो आ गई फायर ब्रिगेड।
1: चुप कर माँ, कितनी बार कहा है बिजली बचाओ,
2: अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है। और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो, बिल भर देंगे पापा।
1: माँ बात बिल की नहीं है, बात खपत की है। देखो बिजली कहाँ से आती है, थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा। और पता है इससे जो फ्लाई ऐश निकलती है वो हवा पानी और मिट्टी तीनों को प्रदूषित करती है।
0: हमें उससे क्या,
1: उपभोग कम तो मांग कम, पावर प्लांट से प्रोडक्शन का बोझ कम, समझे?
0: आना समझ गया।
1: मम्मा पानी बंद करो, ये भी बिजली से ही आता है।
3: सुविधाओं का इस्तेमाल समझदारी से करें, जरूरत के अनुसार ही पानी और बिजली खर्च करें। उत्पादन का बोझ होगा कम तो सुरक्षित पर्यावरण और हम।

0: देखिए इसकी सांसें तेज चल रही है, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा।
1: तुम तो यूं ही घबरा जाती हो।
2: अच्छा मेरे एग्जाम कब है?
1: एग्जाम?
2: हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है?
1: बेटा ये सब माँ को पता होगा ना?
2: पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना।
1: चलो अस्पताल चलते हैं।
3: इसे निमोनिया हुआ है, सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही।
4: पार्थ याद रखना, जिंदगी कल से शुरू नहीं होती, क्योंकि वो कल कभी आता ही नहीं। जो तुम आज नहीं कर सकते उसे तुम कल भी कभी नहीं कर पाओगे। हम अक्सर कल के इंतजार में अपना आज खो देते हैं और फिर एक दिन बस अफसोस ही बाकी रह जाता है। अगर जीतना है तो आज से ही लड़ना सीखो, क्योंकि बहाने बनाने वालों के लिए मंजिल हमेशा दूर होती है। अपनी मेहनत को कल पर मत टालो, क्योंकि वक्त किसी का सगा नहीं होता। उठो और आज ही कुछ ऐसा करो कि तुम्हारा कल खुद बदल जाए।
5: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
6: हेलो
7: हेलो सर, सर मैं फॉर्चुनेट लॉटरी से अनुज।
6: हाँ बोलिए।
7: बधाई हो सर, आपको 10 लाख की लॉटरी लगी है।
6: 10 लाख? सच्ची?
7: जी जी सर। एंड सर आपको क्लेम करने के लिए सिर्फ 10,000 की रजिस्ट्रेशन फी देनी होगी।
6: 10,000 की रजिस्ट्रेशन? क्यों?
7: सर ये वन टाइम प्रोसेसिंग फी है।
6: ओके।
7: इससे आपकी लॉटरी पे टैक्स भी नहीं लगेगा।
6: अच्छा
7: सर, मैं पेमेंट के लिंक भेज रहा हूँ, आप उस पे ट्रांसफर कर दीजिए।
6: अच्छा ये लिंक?
7: यस सर।
6: ओके।
8: मछली तो फंस गई।
9: शिंगे
10: और ये स्क्रीन का फोटो लो। हार्ड डिस्क, सारे हार्ड डिस्क उठाओ। याद रखिए, ऐसे फर्जी लॉटरी कॉल्स पे या उनसे आए मैसेजेस पे विश्वास ना करें, ना ही किसी अनजान लिंक पे क्लिक करें। तो सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
11: चलो बच्चों खाना लग गया।
12: पर ये क्या माँ, ये तो हरी हरी सब्जियाँ है।
13: कुछ अच्छा नहीं बनाया।
11: अरे ये हरी सब्जी ही है सबसे अच्छी। हरी सब्जियाँ बच्चों खाओ।

0: अरे 6 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चे बने स्वस्थ और तंदुरुस्त।
1: सुनो तुम पढ़ी लिखी हो?
2: हाँ बिल्कुल।
1: तो मेरे एक सवाल का जवाब दो।
2: पूछो।
1: रेडियो और अखबार में क्या फर्क है?
2: सिंपल, रेडियो में रोटी नहीं लपेट सकते।
1: वाटसन यूनिवर्सिटी से पढ़ी हो?
2: हाँ, तुम्हें कैसे पता?
1: बस गेस कर रहा था।
2: तुम्हारे गेस भी
3: कौन है? कहाँ से आते हैं?

शाला 91.2 MHz पर। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त सुरुचिका, हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों आप सभी गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। शाम हो गई है और शाम का वो समय आ गया है जब आप सुनते हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। बिल्कुल जी हाँ, आप समझ गए कि समय जो है वो 6 बजे का हो गया है, क्योंकि कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला जिसे आप रोज़ाना सुनते हैं शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे

नमस्कार और गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे और आज संडे का दिन आपने बहुत ही अच्छे से बिताया होगा। जो जो काम आपने सोचे थे वो सभी काम हुए होंगे और आज आपने इंजॉय भी किया होगा अपनी इस छुट्टी को। तो बिल्कुल श्रोताओं, सुबह शाम दोपहर जब भी हो हम हाजिर हो जाते हैं आपका मनोरंजन करवाने के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए। और आज की शाम ने भी हमें फिर से मौका दिया है आपके साथ बात करने का, आपसे मिलने का। तो श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। और जो श्रोता अभी तक कार्यक्रम में नहीं जुड़े हैं उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि जल्दी से जल्दी कार्यक्रम के साथ जुड़ जाइए। श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला जिसका समय रहता है रोज़ाना शाम 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का। और इस कार्यक्रम में रोज़ाना की तरह हम आपके साथ करते हैं बातचीत, साथ ही जानकारियां भी आप तक पहुंचाते हैं और आपके मनोरंजन के लिए प्यारे प्यारे गीत भी लेकर आते हैं। तो श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत हमने कर दी है बातों के साथ, लेकिन हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गई कि कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं विचार के साथ भी श्रोताओं। और आज का विचार यही कहता है कि ईश्वर पर आस्था हो तो उलझनों में भी रास्ता निकल आता है। बिल्कुल, ऊपर वाले पर हमें विश्वास होना चाहिए, खुद पर विश्वास होना चाहिए, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। तो श्रोताओं, इस विचार के साथ, बातों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है और अब चलते हैं, शुरुआत करते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। तो लीजिए, कार्यक्रम का आगाज़ कर रहे हैं इस प्यारे से गीत के साथ, सुनिए अपने रेडियो सेट पर।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। इस समय आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं आपके अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ, और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में हम प्यारे प्यारे गीतों को लेकर आए हैं श्रोताओं, और कोई ना कोई बातचीत हम लेकर आते हैं आपके समक्ष। और श्रोताओं, आप सभी जानते हैं कि फेसबुक पेज से लाइव भी आप हमें देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और ये मुहिम हमने शुरू की है और उम्मीद करते हैं आपको पसंद भी आई होगी। श्रोताओं, आप लोग हमारी जो भी प्रोग्राम है वो सुनते हैं और ज़रूर उसमें कोई ना कोई अपना कमेंट ज़रूर डालते हैं, अच्छी बात है श्रोताओं। और हम यही कहेंगे कि आपको अगर कोई भी बात अच्छी लगती है, नहीं लगती है, कोई कमी लगती है, या कोई भी सजेशन आप देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम में हम आज बात करने वाले हैं बरसात पर। हाँ, और साथ ही आपको बता दें कि जब आप कमेंट्स करते हैं तो उसमें से एक हमारी जो लिसनर हैं, जिन्हें मैं ये कहूँगी कि नियमित श्रोता हमारी हैं, जिनका नाम है इंदु करके, उन्होंने पिछले किसी एक वीडियो में, किसी लाइव में उन्होंने कमेंट किया था कि बारिश पर गाना सुना दीजिए। तो श्रोताओं, जब हम लाइव आते हैं, ये कार्यक्रम लेकर आते हैं, उस समय तो हम फरमाइशी गीत नहीं सुना सकते हैं, लेकिन जब वो कमेंट मैंने पढ़ा था उस दिन, आज के कार्यक्रम की तैयारी मैं कर चुकी थी और आज बाई चांस ही जो गीत मैं लेकर आई हूँ वो बारिश पर ही आधारित है। तो मैं ये मानूँगी कि इंदु जी अगर हमारे साथ जुड़ी हैं तो उन्हें आज बारिश पर गीत जो है वो सुनने को ज़रूर मिलेंगे श्रोताओं। और अगर आपकी कोई फरमाइश हो तो आप भी कमेंट पर लिख सकते हैं, लेकिन वो फरमाइश आपकी सेम डे तो नहीं हो पाएगी, लेकिन जब भी हमें मौका मिलेगा हम ज़रूर उस गीत को अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। श्रोताओं, बरसात आ गई है और बरसात जैसे ही आ जाती है हमारे दिल दिमाग पर पुरानी यादें जो है वो ताज़ी हो जाती हैं। ऐसी एक याद मेरी भी ताज़ी हुई थी और मैंने भी सोचा था कि आपके साथ इस पर ज़रूर बात की जाएगी। बच्चे होते हैं, बच्चों को एक आस होती है, एक उम्मीद होती है कि जैसे ही बरसात आएगी तो बरसात की छुट्टियां स्कूल में पड़ेंगी और छुट्टियों को लेकर प्लानिंग जो है बच्चों की तैयार हो जाती है। तो श्रोताओं, हमें भी कहीं ना कहीं अपना बचपन याद आता है जब हमें भी छुट्टियां पड़ती थी और बरसात की छुट्टियों के लिए हम भी बड़े खुश रहते थे और तैयारी में रहते थे कि इस बार की छुट्टियों में हम कहाँ जाएंगे। तो बिल्कुल श्रोताओं, और बारिश की ये पहली फुहार पड़ते ही जाने अनजाने में कहीं ना कहीं हम अपने बचपन में चले जाते हैं, उन यादों को ताज़ा कर लेते हैं। बिल्कुल, आप लोगों को भी अब भी वो दिन याद आते होंगे जब आपके स्कूल में भी बरसात की छुट्टियां पड़ती थी और आप भी अपनी नानी, मामा या किसी के भी घर जाया करते थे और छुट्टियों को एंजॉय किया करते थे। तो आज कार्यक्रम में हम ज़रूर इस विषय पर बात करेंगे और आप भी तैयार रहिए अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए। और कोई एक ऐसी बात जो आपको याद आ रही हो छुट्टियों की, खास करके बरसात की, तो ज़रूर उसे भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में अभी आपने जो सुना था अरिजीत सिंह की आवाज़ में गीत था, और अब कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत के साथ। अंदाज फिल्म का ये गीत है श्रोताओं, और अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की आवाज़ें हैं।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला के साथ आप जुड़े हुए हैं इस समय। और श्रोताओं, कार्यक्रम में आपने सुना ये प्यारा सा गीत। आज कार्यक्रम में आपको बारिश पर आधारित गीत जो है वो ज़्यादा सुनने को मिलेंगे। श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला, जिसे कि आप सुन रहे हैं अभी 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला पर, और आपको बता दें 88.4 मेगाहर्ट्ज पर हमीरपुर के ढटवाल की आवाज़ पर भी आप हमें सुन सकते हैं और सुन रहे हैं। हमीरपुर के जितने भी श्रोता इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं और हमें सुन रहे हैं, उन सबका भी कार्यक्रम में स्वागत है, और उन सबको भी सुषमा की प्यार भरी राम राम, नमस्कार और गुड इवनिंग। आप सभी भी ठीक ठाक होंगे ऐसी उम्मीद हम रखते हैं श्रोताओं। और हमारे श्रोता कहीं से भी हमारे साथ जुड़े हुए हों, हमें उनका ख्याल रहता है और उनके बारे में हम भी सोचते हैं कि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रोताओं, आपका प्यार ही है जो हमें आगे बढ़ाता है और कार्यक्रम में आपके साथ जोड़ता है। तो कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में हम बातचीत के साथ साथ जानकारियाँ भी आप तक पहुँचाते हैं श्रोताओं। तो चलते हैं, एक जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला के MBA एवं MCA विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी मंगलवार 7 जुलाई 2026 तक प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय HPTU हमीरपुर के ई काउंसलिंग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन एवं काउंसलिंग फॉर्म भर सकते हैं। कॉलेज की ओर से जारी प्रवेश सूचना के अनुसार MBA और MCA दोनों पाठ्यक्रमों में 60 नियमित तथा 13 अतिरिक्त सीटों सहित कुल 73 सीटों पर प्रवेश दिए जाएंगे। प्रवेश प्रक्रिया HPTU के निर्धारित नियमों के अनुसार HPCET 2026 मेरिट के आधार पर आयोजित काउंसलिंग के माध्यम से पूरी की जाएगी। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी जो कि आप तक पहुंचाई रेडियो गुंजन धर्मशाला ने। और जानकारी के बाद एक बार फिर से हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, फिर से प्यारे से गीत के साथ। गुरु फिल्म का ये गीत श्रोताओं आप सभी के रेडियो सेट पर इंजॉय।

श्रोताओं, श्रेया घोषाल की आवाज़ में अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत। 91.2 MHz पर श्रोताओं, आप सभी जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। श्रोताओं, बरसात का मौसम आ जाता है और हमें बहुत सारी यादें हमारी ताज़ा करवा जाता है। श्रोताओं, बरसात का मौसम आ गया है और अगर आप बाज़ार जाते हैं, बाज़ार में देखते भी होंगे कि आजकल बाज़ार में दुकानें जो हैं वो चूड़ियों से, ख़ास करके हरे रंग की चूड़ियों से परे पड़े हैं। साथ ही मेहंदी आजकल बहुत बिकती है, क्योंकि मान्यता है कि बरसात में मेहंदी लगाना शुभ रहता है, अच्छा रहता है। और हमारी जो श्रोता महिलाएं हैं वो ज़रूर बरसात में चूड़ियां भी पहनती हैं, मेहंदी भी लगाती हैं। साथ ही श्रोताओं, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि बरसात का मौसम आता है और बच्चों को इंतज़ार रहता है छुट्टियों का, तो खैर आजकल की छुट्टियां थोड़ी सी कम हो गई हैं, लेकिन हमारे समय में 2 महीने की छुट्टियाँ पड़ा करती थी। तो श्रोताओं, जैसे ही बरसात आती थी और हल्की फुल्की बारिश होती थी ना, तो हम सोने से पहले ये सोचते थे, हे भगवान, कल सुबह इतनी तेज़ बारिश हो कि हम स्कूल जा ही ना पाए। हमारे पेरेंट्स हमें खुद बोले कि आज बहुत बारिश है, छुट्टी करो। और हम यही भगवान से अरदास करते थे कि भगवान, कल सुबह जब तक हमारे स्कूल का समय रहेगा तब तक इतनी बारिश करना कि हम स्कूल ना जा पाए और स्कूल में छुट्टी हो जाए। और जब ऐसा होता था तो हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता था। हम लोग तो चेहरे से ऐसे मायूस हो जाते थे कि ओहो, छुट्टी करनी पड़ गई, लेकिन अंदर जो खुशी के लड्डू फूटते थे ना, वो अलग ही बात थी। और जैसे ही स्कूल का टाइम हो जाता था और बादल भी चढ़ जाते थे और बहुत तेज़ धूप भी निकल आती थी, तब पेरेंट्स कहते थे, छुट्टी करवा के हमने बुरा काम किया। हमें पता होता तो छुट्टी करवाते ही नहीं, लेकिन हमारी जो एक कहते हैं ना मन्नत, वो पूरी हो जाती थी। श्रोताओं, आप लोगों ने भी अपने स्कूल समय में ऐसा किया होगा और बहुत बार आपने भी बहुत सारे बहाने छुट्टी करने के लिए मनाए होंगे। तो याद कीजिए वो कौन से बहाने थे और कैसे आप छुट्टी के लिए भगवान के आगे अरदास किया करते थे। तो बारिश पर आधारित आज गीत आपको सुनवा रहे हैं श्रोताओं। तो चलते हैं, बढ़ते हैं, एक और प्यारा सा गीत आपको सुनवाते हैं बागी फिल्म से, और आवाज़ रहेगी मोनाली ठाकुर की।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत, और इन गीतों को सुनकर अगर आपका मन करे थिरकने का तो ज़रूर थिरक लीजिएगा श्रोताओं, क्योंकि ये प्यारे प्यारे गीत हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप इन्हें साथ में गुनगुनाएं, और अगर आपका मन करे कहीं नाचने का तो नाच भी लें, क्योंकि श्रोताओं ये ज़िंदगी बार बार नहीं मिलेगी, और ऐसे पल अगर हमें मिल जाते हैं जिसे हम इंजॉय कर सकते हैं तो ज़रूर इंजॉय करना चाहिए। ज़िंदगी में जो होता है होने दीजिए, अपनी ज़िंदगी को खुशी से बिताइए। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में अब समय है श्रोताओं एक छोटे से अंतराल का, छोटे से ब्रेक का। इस ब्रेक के बाद फिर से हम लौटेंगे कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 MHz पर श्रोता हूँ, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। इस छोटे से अंतराल के बाद कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सभी श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और श्रोताओं आप इंजॉय कर रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। शाम का ये समय रहता है श्रोताओं और हमें बहुत सारे काम रहते हैं घर के। घर में हमें किचन में जाकर खाना भी बनाना है, शाम की तैयारी भी करनी है और घर के बाहर भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिन्हें हमें करना होता है। अगर बच्चे हैं तो उन्हें पढ़ाना भी है, उनका होमवर्क भी करवाना है और ये सब काम आप कर सकते हैं और साथ ही इंजॉय कर सकते हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला को भी और सुन सकते हैं प्यारे प्यारे गीत। गीतों के साथ काम कीजिए, सच में आपको बहुत मज़ा आएगा। श्रोताओं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में हम आगे बढ़ते हैं और एक जानकारी जो है वो आप तक पहुंचाते हैं। आयुष कानून तथा युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री यादविंदर गोमा ने आज जयसिंहपुर उपमंडल के गांव जलाड़ी एवं नहलना में आयोजित विभिन्न जनसभाओं में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना तथा संबंधित अधिकारियों को उनके शीघ्र एवं प्रभावी समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। श्रोताओं गांव जलाड़ी में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मंत्री यादविंदर गोमा ने कहा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र एवं संतुलित विकास के लिए प्रतिस्पर्धा के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है तथा जनहित से जुड़े प्रत्येक मुद्दे को गंभीरता से प्रदेश सरकार के समक्ष रखा भी जाएगा। साथ ही श्रोताओं यादविंदर गोवा ने कहा कि गांव तरिंडा तक सड़क निर्माण कार्य के लिए 9 लाख रुपए उपलब्ध करवाए गए हैं जिसका कार्य जल्द ही आरंभ किया जाएगा तथा निर्धारित समय में पूर्ण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पालमपुर से सरिमोलग तक बस सेवा का संचालन भी शीघ्र आरंभ करने के प्रयास किए जाएंगे जिससे क्षेत्र के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। तो श्रोताओं उन्होंने साथ में ये भी बताया कि क्षेत्र की सड़क की टारिंग का कार्य हाल ही में पूरा किया गया है जिससे स्थानीय लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिल भी रही है। उन्होंने कहा है कि खराब ट्रांसफार्मर को भी बदल दिया गया है ताकि उन्हें लोगों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। तो ये थी जानकारी जो कि आप तक पहुँचाई रेडियो गुंजन धर्मशाला ने और इस जानकारी के बाद कार्यक्रम में फिर से हम लौटेंगे एक प्यारे से गीत के साथ। तो लीजिए कृष्णा फिल्म का ये सुनिए अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज़ में।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में आप सभी जुड़े हुए हैं। और श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं बरसात की, या फिर अपनी बरसात की छुट्टियों की, या स्कूल समय की, या बचपने की। श्रोताओं, बहुत सारी बातें हमें याद आ जाती हैं और एक ऐसा ही किस्सा मुझे भी याद आया है। बचपन सच में बचपन ही होता है। बचपन में बच्चे क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कुछ पता नहीं होता। श्रोताओं, हम बचपन में छोटे थे और हमें अभी भी याद है कि एक हमारा छोटा सा एक बाग होता था और उसमें बहुत सारे फलों के पेड़ लगे होते थे, खास करके नाशपाती का वो सीज़न था। शायद आजकल के ही दिनों में नाशपाती जो है वो लगी हुई थी। और मेरा एक भाई था, यानी कि मेरा कज़न था, वो और मैं, मतलब हम लोग वहाँ गए। हमने कहा चलो नाशपाती जो है वो खाते हैं, तोड़ते हैं। तो उसे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था और मैं पेड़ पर चढ़ गई। मैंने कहा मैं नाशपाती तोड़ूंगी और तुम नीचे खड़े होकर उसे कैच करना। ठीक है, हम चढ़ गए और पेड़ पर नाशपाती तक पहुँचते पहुँचते मुझे नहीं पता था कि वहाँ कहीं मधुमक्खियों ने छत्ता बनाया है और कब उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया पता भी नहीं चला। और जैसे ही उन्होंने मुझ पर हमला किया तो मैं तो भाई वहाँ चिल्लाने लग पड़ी और जो मेरा कज़न ब्रदर जो नीचे पेड़ के नीचे खड़ा था वो दौड़ता भागता, पता भी नहीं चला उसका कि कब वो घर पहुँच गया। तो श्रोताओं, बचपना ऐसा ही होता है। बहुत सारी ऐसी हरकतें हम कर देते हैं जो आज इस समय में हमें याद आती हैं और उन हरकतों को याद करके, उन दिनों को याद करके हम आज भी खुश हो लिए जाते हैं। तो श्रोताओं, समय जो है वो अपनी रफ्तार से कब दौड़ता चला जाता है, कब बचपना हमारा पीछे छूट जाता है और बस यादें ताज़ी रह जाती हैं। उन्हें याद करके हम आज भी मुस्कुराते हैं, हंसते हैं और लोगों को सुनाते हैं। ऐसी ही बहुत सारी यादें श्रोताओं कई बार हमारी ताज़ा हो जाती हैं। खैर, समय चला जाता है, यादें बनकर रह जाती हैं। कहीं ना कहीं वो रिश्ते, वो प्यार, वो अपनापन जिम्मेदारियों में खो जाता है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए श्रोताओं। अपने वो दिन याद करने चाहिए, अपना वो भाईचारा हमें हमेशा याद रखना चाहिए। तो कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में हम आज बरसात पर बात कर रहे हैं और बहुत सारी पुरानी बातों पर भी बात कर रहे हैं, मतलब पुरानी जो यादें हैं उन पर भी हम बात कर रहे हैं श्रोताओं। और आज ख़ास करके हम गीत भी लेकर आए हैं सावन से जुड़े हुए, बरसात से जुड़े हुए। तो लीजिए एक और प्यारा सा गीत आपके रेडियो सेट पर पहुंचा रहे हैं साजन का घर फिल्म से, साधना सरगम और कुमार शानू की प्यारी आवाज़ों में ये गीत आप सभी के रेडियो सेट पर।

श्रोताओं 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। अभी आपने सुना ये गीत और सावन का महीना आने वाला है यानी कि बरसात तो अब लगी पड़ी है श्रोताओं, और ऐसे में हम लोग बहुत सारी तैयारियां करते हैं। बरसात का मौसम आता है तो हम खाने पीने के लिए भी अपने जो बहुत सारे स्वाद हैं हमारे वो जाग जाते हैं गरम गरम पकोड़े चाय के साथ। और अब ये समझ लीजिए कि हमारी डिमांड्स जो है वो बढ़ने वाली है, बस जैसे ही बारिश हुई हल्की सी ठंड महसूस हुई तो चाय और पकौड़ा तो हर घर में बनता ही है। श्रोताओं कार्यक्रम में हम आज बात कर रहे हैं बचपने की और बरसात की, इस मौसम की। कहते हैं समय बदलता है और उसके साथ साथ बदल जाती हैं हमारी आदतें, हमारी दुनिया और हमारा बचपना भी। एक वो बचपन था श्रोताओं जब खुशियां मोबाइल की स्क्रीन में नहीं गली मोहल्ले की धूल में हुआ करती थी। बारिश होते ही कहीं भी हमें पानी मिलता था नदी नाले में कागज़ की एक कश्ती बनाई और चल पड़े उसे बहाने। देखते थे कि किसकी कश्ती जो है वो कितनी तेज़ उड़ती है, किसकी कश्ती जो है वो आगे चलती है। तो श्रोताओं ये जो पुराने दिन थे पुरानी यादें थी वो आज भी ताज़ा हो जाती हैं और कहीं ना कहीं हमें खुश कर देती हैं। पुराने दिन पेड़ों पर चढ़ना, फ्रूट्स तोड़ना, वो बैठ के खाना और कहीं चुपके से बाज़ार जाना और कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ जो है वो छुप छुप के खाना। तो श्रोताओं ऐसा ही एक किस्सा और मैं आपको सुनवाऊंगी कि हमें बाज़ार भेजा जाता था कि कोई सामान लेके आओ। उस समय में 1 रुपये का एक पान मिलता था। मैं और मेरा एक कज़न हम लोग जाते थे और चुपचाप कहीं 1-2 रुपये बचा लेते थे अपने खाने के लिए और हमने पान खरीद लिया। उस समय में जो था वो पान खाना ऐसा समझा जाता था कि गलत बात होती है, लेकिन वो पान मीठा पान जो सिंपल पान होता है वो हमने लिया और कहीं हमें घर में डांट ना पड़े उसी डर से हमने जो राशन लेने गए थे वो लेकर आए और कहीं चुपचाप एक खेत में बैठ के हमने वो पान खाया मज़े से और अपना मुंह बिल्कुल साफ करते हुए शरीफ बनकर अपने घर वापस लौट आए। और सच में वो दिन बड़े याद आते हैं और ऐसी जो हमने हरकतें की होती ना आज याद आती हैं कि सच में उस समय हमारे पास ना तो मोबाइल होते थे ना हमारे पास ज़्यादा कुछ खेल खिलौने हुआ करते थे। जो थोड़ा बहुत हमें मिलता था हम उसी में खुश हो लिए जाते थे। और श्रोताओं आज का समय, आजकल बच्चों को हर कुछ मिलता है, मोबाइल मिलता है, वीडियो गेम्स मिलती हैं, लेकिन बच्चे फिर भी खुश नहीं होते हैं। तो श्रोताओं वो समय और आज के समय में बहुत फ़र्क है। हम ये नहीं कहते कि आजकल का बचपना बचपन नहीं है जहाँ छोटे छोटे हाथों में खिलौनों की जगह में आज मोबाइल है, लेकिन श्रोताओं आज भी बहुत सारी ऐसे तकनीक जो बच्चों को मिल रही है, दुनिया की जानकारी 1 मिनट में हमारे हाथों में आ जाती हैं। लेकिन खैर बचपने की बात है और बचपन उस समय में बहुत अलग था, आज के समय में बहुत अलग है। कहीं ना कहीं हमें अपना बचपना आज भी जीना चाहिए। तो आप भी जिए और सोचिए कौन सा वो किस्सा है जो आपको अपने बचपने का याद आता है, कीजिए हमारे साथ साझा। और ज़रूर आप अपनों के साथ भी उन बातों को साझा कर सकते हैं और अपनी यादों के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे अब एक और प्यारे से गीत के साथ। दिल तो पागल है इस फिल्म का गीत श्रोताओं, लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ों में आप सभी के रेडियो सेट पर।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोता, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। और श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में अब समय है समाचारों का, तो चलेंगे पहले सुनेंगे समाचार और समाचारों के बाद फिर से जुड़ेंगे कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। तो आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और जुड़िए कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में इन समाचारों के बाद।

0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से अधिक का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस LNG की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर से शुरू करने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इसी बीच पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसे विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े के उदयगिरी शक्ति और कवरत्ती युद्धपोत ने सिंगापुर के चांगी नौसैनिक अड्डे का दौरा पूरा कर लिया है। यह दौरा भारतीय नौसेना की परिचालन तैनाती का हिस्सा था। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह दौरा भारत और सिंगापुर के बीच बढ़ती समुद्री साझेदारी में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल आज से 11 जुलाई तक कर्नाटक के दौरे पर है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करना और प्रमुख योजनाओं के प्रगति और कार्यान्वयन का आकलन करना है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर कुछ व्यक्तियों द्वारा व्यापार, प्रवासन और अन्य नीतिगत मामलों पर मंत्रालय को सलाह देने संबंधी दावों का खंडन किया है। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये सोशल मीडिया हैंडल मंत्रालय के साथ काम करने के तरीकों पर सशुल्क सलाह के साथ साथ सत्र भी आयोजित कर रहे हैं। इकाई ने स्पष्ट किया कि इन व्यक्तियों का विदेश मंत्रालय से कोई संबंध नहीं है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। अधिकारियों ने लोगों को मानसून के दौरान नदियों, जलप्रपातों और अन्य जल निकायों से दूर रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज ब्राजील का सामना नॉर्वे से होगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: MHz पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आप सभी समय सुन रहे हैं और कार्यक्रम में समाचारों के बाद फिर से चलते हैं एक और प्यारे से गीत की ओर। आजमाइश फिल्म का ये गीत श्रोताओं अब आप सुनने वाले हैं सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ों में।

बिल्कुल श्रोताओं, आप भी अभी कहीं मत जाइए क्योंकि कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला का समय अभी बाकी है और अगर आप चले गए तो हमारा क्या होगा, यानी कि हम अगर हैं तो आपके साथ ही हैं और आपके साथ ही कार्यक्रम है। श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला अभी आप सुन रहे हैं 91.2 MHz पर आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला से। श्रोताओं, गीत संगीत हम हर कार्यक्रम में लेकर आते हैं और संगीत के बारे में हम बार बार यही बात करते हैं कि संगीत एक ऐसी भाषा है जिसे समझने के लिए शब्दों की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है, ये सीधे दिल से जुड़ता है और हमारी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का सबसे सुंदर माध्यम भी बन जाता है। श्रोता, जब हम खुश होते हैं तो संगीत हमारी खुशी को और ज़्यादा बढ़ा देता है और जब हम उदास होते हैं तो ये संगीत हमें सुकून देता है, सहारा देता है। जीवन के हर रंग में संगीत किसी न किसी रूप में हमारा साथ देता है। श्रोताओं, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब हम उदास होते हैं तो हम सैड सॉन्ग सुनते हैं, गज़ल सुनते हैं। खैर, गज़ल को हम सैड सॉन्ग में नहीं बोल सकते हैं, गज़ल तो गज़ल है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रहती है जैसा हमारा मूड होता है हम वैसा ही म्यूज़िक चुनते हैं। लेकिन ये गलत होता है, ऐसा करना नहीं चाहिए। जब हम उदास हों तो हमें ऐसे गीत सुनने चाहिए जिससे हमें एनर्जी मिले, हम खुश हों और ज़्यादा डल फील ना करें। तो श्रोताओं, कभी भी ऐसा मत किया कीजिए कि हमारे मूड के हिसाब से संगीत को सुनना चाहिए। जो गीत बजता है उसे सुनिए और उसके साथ गुनगुनाइए और थिरक भी लीजिए। श्रोताओं, संगीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं है बल्कि मन को शांति, ऊर्जा और सकारात्मकता भी प्रदान करता है। कई शोध हमें ये बताते हैं कि मधुर संगीत तनाव को कम करने और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक होता है। बिल्कुल, तो अगर ऐसा ही है तो चलिए एक और प्यारा सा गीत सुनते हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। श्री 420 इस फिल्म का गीत मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज़ों में आप सभी के रेडियो सेट पर।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। और अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत। श्रोताओं, ये गीत बहुत पुराना था, लेकिन जब भी इसे सुना जाए तब अच्छा लगता है। और गीतों ने अपनी जगह हमारे दिल में ऐसी बना ली होती है कि उन्हें जब सुने तब हमारा दिल करता है कि इन्हें बार बार सुना जाए। श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में अब थोड़ी सी बात हम करेंगे हिमाचल की, यानी कि खूबसूरत प्रदेश की, जिसे हम प्यार से कहते हैं हिमाचल प्रदेश। देवों की भूमि, प्राकृतिक सौंदर्य का खजाना, संस्कृति की अनमोल धरोहर। श्रोताओं, ऐसे में जब ये बरसात आती है और हल्की सी बारिश होने के बाद जब कहीं हल्की सी धूप खिलती है और रेनबो निकलता है, यानी कि इंद्रधनुष निकलता है, तो वो नज़ारा देखने वाला होता है। हमें अगर ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं तो आजकल हम फटाफट अपना मोबाइल फ़ोन लेते हैं और उस सीन को, उस चीज़ को कैप्चर करके रख लेते हैं अपने मोबाइल फ़ोन पर। श्रोताओं, आजकल आप ऐसा नज़ारा भी देखते होंगे जब बारिश होती है और बारिश होने के बाद हल्का सा मौसम ठीक होता है तो ऐसा लगता है कि बादल जो है वो धरती पर आ गए हों। और वो बादल जब चलते हैं हरे हरे पेड़ों के बीच में तो वो नज़ारा देखने वाला होता है। कई बार हमें लगता है कि सच में हम बहुत खुश किस्मत हैं कि हम हिमाचल में रह रहे हैं। ऐसे नज़ारों को देखने के लिए लोग बहुत सारा पैसा खर्च करके यहाँ आते हैं और हमें घर बैठे ये नज़ारे रोज़ाना देखने को मिलते हैं। तो श्रोताओं, हिमाचल को शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ और सिर्फ पहाड़ियां नहीं हैं जो बर्फ़ से ढकी हुई हैं, बल्कि यहाँ के लोगों की सरलता, सादगी और अपनापन भी इसकी असली पहचान है। भाषाओं की बात करें तो हिमाचल में हर कुछ किलोमीटर के बाद बोली जो है वो बदल जाती है। यहाँ की प्रमुख पहाड़ी बोलियों जैसे मंडियाली, कांगड़ी, कुलवी, चंबियाली, शिरमोरी, ये एक बोली अपने आप में एक कहानी कहती है। श्रोताओं, इन भाषाओं में जो मिठास है, एक अपनापन है जो दिल को छू जाता है। लेकिन श्रोताओं, फिर भी हम ये कहेंगे कि आजकल के बढ़ते इस प्रचलन में कहीं ना कहीं हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, हम उन्हें सिर्फ और सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी, ये दो भाषाएँ ही सिखा रहे हैं। हम उनके साथ हिंदी में या इंग्लिश में बात करते हैं, हम उनके साथ पहाड़ी में, कांगड़ी में, कुलवी में, चंबियाली में, सिरमौरी में बात करना कम कर रहे हैं। हमें ये लगता है कि शायद बच्चे ये सीखेंगे तो शायद उनका जो बड़प्पन है या जब वो बड़े होंगे, कहीं बाहर जाएंगे तो शायद थोड़ा सा शाय फील करेंगे। लेकिन श्रोताओं, एक बात कहना चाहेंगे, अपनी मिट्टी के साथ, अपनी परंपरा के साथ, अपनी संस्कृति के साथ जुड़े रहना चाहिए। और जब हम भी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो हम भी कई बार राम राम कहते हैं और अच्छा लगता है जब हमारे बहुत सारे श्रोता फेसबुक पेज लाइव पर भी कई बार उन्होंने हमें राम राम का जवाब राम राम में ही दिया है। तो बिल्कुल भी अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को भूलना नहीं चाहिए और शर्म तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जिस मिट्टी में हम पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, जिस संस्कृति को आज हम लेकर यहाँ पहुँचे हैं, उसे आगे बढ़ाना भी हमारा कर्तव्य है। बिल्कुल। तो श्रोताओं, इन बातों को यहीं पर रोकते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सुनवाते हैं आपको बहुत ही प्यारा एक गीत 1942 आ लव स्टोरी फिल्म से, कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में। लीजिए, सुनिए इस प्यारे से गीत को।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। आप सभी सुन रहे हैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। श्रोता, थोड़ी सी बात करेंगे आजकल के समय में। आजकल हम लोग जो है बहुत मतलबी होते जा रहे हैं। जहाँ हमें अपना मतलब दिखता है वहाँ तो हम जी जान लगा देते हैं रिश्ते बनाने में भी और हर काम में, लेकिन जब हमारा मतलब ख़त्म हो जाता है तो हम वहाँ से पीछे हट जाते हैं। तो श्रोताओं, मतलब की दीवार इतनी भी ऊंची मत करो कि जब खुद को ज़रूरत पड़े तो कूदा भी ना जाए। बिल्कुल रिश्तों में कह लीजिए या किसी भी तरह से कह लीजिए, मतलब ही होना बहुत गलत है। अगर हम मतलब के लिए किसी के साथ जुड़ते हैं तो ये भी याद रखना चाहिए कि कभी ना कभी हमें भी किसी की ज़रूरत पड़ सकती है, और तब हमारी जो इमेज किसी के सामने बनी होगी तो फिर वो हमारा साथ देंगे या नहीं। तो आजकल के समय में हर किसी के काम हमें आना चाहिए, और कभी भी हमें अपने मतलब के लिए ही नहीं सोचना चाहिए, दूसरों के बारे में भी हमें ज़रूर सोच लेना चाहिए। जहाँ हमारी ज़रूरत किसी को लगती है वहाँ हमें ज़रूर खड़े होना चाहिए, और दुख सुख में हमेशा साथ रहना चाहिए। खुशी हो सुख हो तो हम सभी खड़े हो जाते हैं, लेकिन दुख में बहुत कम हम ऐसे होते हैं जो जाकर खड़े होते हैं। लेकिन श्रोताओं, हमारा ये मानना है कि खुशी में अगर आप किसी के शरीक ना भी हो पाए तो कोई बात नहीं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा यही सुनने को मिलेगा कि आपके पास समय नहीं है, आप नहीं आए। लेकिन दुख का समय हो किसी पर भी तो कितना भी ज़रूरी काम क्यों ना हो, हमें वो काम छोड़कर सबसे पहले वहाँ पहुँचना चाहिए जिसे हमारी उस समय ज़रूरत होती है। क्योंकि कहते हैं बुरा वक्त दुख किसी के दरवाज़े पर कब आ जाए पता नहीं होता। तो श्रोताओं, अपनी सोच को हमें बड़ा करना चाहिए, हमें अपना दिल बड़ा करना चाहिए, और ज़िंदगी में हम आए हैं तो किसी के काम अगर आ सकें तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में गीतों का सिलसिला चला हुआ है, और गीतों के इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। इस छोटे से ब्रेक के बाद फिर से हम कार्यक्रम में जुड़ेंगे और आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम का प्यारा सा गीत। तो आप सभी यूं ही जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोताओं, इस अंतराल के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। और इस कार्यक्रम को अब हम आगे बढ़ाते हैं एक और प्यारे से तराने के साथ। अजनबी फिल्म का ये गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में आप सभी के रेडियो सेट पर।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। अभी आपने सुना ये गीत। श्रोताओं, आप कहोगे कि आज बिन बादल बरसात जो है कार्यक्रम में सुषमा ने कर दी है, तो श्रोताओं देखिए, आज बरसात तो नहीं हुई लेकिन गीतों के माध्यम से मैंने बारिश ज़रूर कर दी है। और इन गीतों में, यानी कि इस गीतों की बरसात में आप सभी ज़रूर भीगे होंगे। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में श्रोता, हम आपको सुनवाते हैं प्रेरणादायक कहानी और समय हो गया है आपको कहानी सुनाने का, तो चलते हैं सुनते हैं कहानी। श्रोता, ये कहानी है एक बुढ़िया अम्मा की, जिनको पशु पक्षियों से बहुत प्यार था और उन्हें जब भी कोई पक्षी दिखता था तो उनके लिए दाना पानी वो ज़रूर देते थे। और बुज़ुर्ग थे, अकेले रहते थे घर पर, तो खिड़की पर ही वो उनके लिए दाना पानी रख देते थे और जितने भी पक्षी उन्हें देखते थे तो उन्हें देखते ही वो फटाफट खिड़की पर आ जाते थे और दाना चुगते थे, पानी पीते थे और चले जाते थे। ऐसे करते करते वो पक्षियों की जो तादाद है वो बढ़ती गई। आस पड़ोस वाले लोग भी उनको कहने लगे कि अम्मा, क्यों आप ऐसे दाना देते हो और पक्षी जो है वो आकर गंद भी डालते हैं, है ना, तो गंदगी होती है। तो वो कहते थे, तो इनका कौन है, इन्हें दाना कौन देगा, हम अगर ऐसा सोचेंगे तो इनका कौन, मतलब इन्हें कहाँ से इनका पेट भरेगा, तो हमें इनके बारे में सोचना चाहिए। लोगों की बातों को उन्होंने इग्नोर किया और अपना जो काम था वो रूटीन में करते थे। सुबह उठते थे, दाना पानी जो था वो रखते थे और पक्षियों को भी इंतज़ार रहता था कि कब अम्मा उठेंगी और हमें दाना पानी जो है वो डालेंगी। श्रोताओं, बरसात का दिन था, सर्दियों के दिन थे और बरसात में ठंड बहुत थी और उन अम्मा की थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, तो उन्होंने फटाफट जो है वो रात को दरवाज़े खिड़कियाँ अपनी पूरी बंद कर दी ताकि ठंडी हवा अंदर ना आ पाए और वो सोने के लिए अपने बेड पर चली गई। लेकिन गलती से कहीं उनकी जो गैस का रेगुलेटर है वो कहीं ऑन रह गया और धीरे धीरे वो जो गैस थी वो रात भर घर में फैल गई और गैस की वजह से वो अम्मा जो थी वो बेहोश हो गई। लेकिन सुबह जब समय हो गया, वो जल्दी उठती थी, दाना पानी देती, जब पक्षी उनकी खिड़की पर आए, देखा कि अम्मा अभी तक उठी नहीं है, खिड़की बंद है और दाना हमारे लिए नहीं रखा गया है। बहुत देर इंतज़ार के बाद उन पक्षियों को आभास हो गया कुछ घटना या दुर्घटना शायद हुई है, इसी वजह से अम्मा आज दाना लेकर नहीं आई। तो उन पक्षियों ने क्या किया कि ज़ोर ज़ोर से चोंच मारना शुरू कर दिया उस खिड़की के शीशे पर और बार बार उनकी चोंच की चोट से वो शीशा टूट गया। जैसे ही वो शीशा टूटा, वो गैस जो थी वो बाहर की तरफ आई और जब उस भारी आवाज़ से अम्मा की थोड़ी सी जो नींद है, या यूँ कह लीजिए कि उनको थोड़ा सा होश आया, वो बेहोशी में ही हल्के फुल्के से उठी और उन्हें लगा कि कहीं गैस जो है वो रिस रही है, उसकी वजह से उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। वो खिड़की दरवाजे या दीवारों के सहारे से अपने किचन तक पहुंचते हैं और अपना जो रेगुलेटर है वो ऑफ़ करती हैं और फटाफट सारे दरवाजे खिड़कियां जो हैं वो खोल देते हैं। तो इस तरह से उन्हें बहुत हैरानी होती है कि अगर ये पक्षी आज ना होते तो मैं आज दुनिया में नहीं होती। तो पक्षियों को भी आस थी कि हमें रोज़ इस समय दाना मिलता है लेकिन आज दाना नहीं मिला। और कहते हैं कि पशु पक्षियों को कोई भी घटना दुर्घटना होनी हो तो उस चीज़ का आभास पहले से हो जाता है। उन पक्षियों को भी आभास हुआ और उन्होंने भी अपना पूरा जोर लगाया और अपनी चोंच से वो शीशा तोड़ डाला और उस आवाज़ से वो अम्मा जो है वो फिर से उठी और उन्हें एक नया जीवन मिला। तब से उन्हें उन पक्षियों के साथ प्यार हुआ। और कहते हैं श्रोताओं, ये कहानी जो है वो हमें ये सिखाती है कि कहीं हम किसी का छोटा सा भी भला करेंगे तो हमारे लिए भगवान ने बहुत अच्छी सोच जो है वो रखी होगी। अगर आज वो अम्मा उन्हें दाना ना देती होती तो वो पक्षी ना आते और ना ही उनकी जान बच पाती। तो कहीं ना कहीं हमारे कर्म जो हैं वो हमें बचा लेते हैं, अच्छे कर्म, लेकिन बुरे कर्म नहीं। इसलिए अच्छे कर्म कीजिए और किसी के काम आइए, कब कोई आपके काम आ जाए कोई पता नहीं होता। तो श्रोताओं, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी जो है वो ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी के बाद कार्यक्रम में वापस लौटते हैं श्रोताओं और फिर से चलते हैं गीतों की ओर। और गीतों में से लेते हैं एक और गीत मंजिल फिल्म से। ये गीत अभी आप सुनेंगे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। लीजिए श्रोताओं, इस गीत को सुनिए आप सभी अपने रेडियो सेट पर।

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो कुंचन धर्मशाला कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत। श्रोताओं, इस गीत के साथ कार्यक्रम में अब समय हुआ जा रहा है प्रादेशिक समाचारों का। तो चलते हैं, पहले सुनते हैं प्रादेशिक समाचार, बाकी की बातें समाचारों के बाद।
1: आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार द्वारा वीपीजी रामजी के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने विकसित भारत 2047 के निर्माण के लिए बौद्ध मूल्यों और आधुनिक विज्ञान को महत्व देने पर दिया बल। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने पार्टी पदाधिकारियों से विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने का किया आह्वान और राज्य पे नई ड्रेनेज नीति के तहत सड़क निर्माण में आधुनिक जल निकासी व्यवस्था अपनाएगी सरकार। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के तहत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये राशि जारी की। उन्होंने कहा कि इस पहली किश्त का उद्देश्य राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाना है ताकि भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके।
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
1: केंद्रीय मंत्री ने बताया कि विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन करीब 10% की वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए धन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। राज्य सरकार प्रदेश में नवाचार, उद्यमिता और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। इस उद्देश्य से सरकार ने तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों के लिए राज्य नवाचार नीति और नवाचार कोष को मंजूरी दी है। इससे राज्य में नवाचार आधारित इकोसिस्टम तैयार होगा और हिमाचल प्रदेश देश के नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित होगा। नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकार ने वर्ष 2026 से वर्ष 2028 तक की अवधि के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने विकसित भारत 2047 के निर्माण के लिए बौद्ध मूल्यों और आधुनिक विज्ञान पर बल दिया है। वे आज कांगड़ा जिले में बैजनाथ के ताशीजोंग में आयोजित एक राष्ट्रीय संगोष्ठी में बोल रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि पूरा विश्व आज हिंसा, युद्ध, पर्यावरण संकट और नैतिक मूल्यों में कमी जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। ऐसे में भगवान बुद्ध की आत्मज्ञान पर आधारित शिक्षाएं पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गई हैं। उन्होंने देश के युवाओं से नालंदा परंपरा के मूल्यों का अनुसरण करने और प्रेरणा लेने का आह्वान भी किया। कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए पशु चिकित्सकों को वैज्ञानिक और व्यवहारिक रोड मैप तैयार करने को कहा है। शिमला के समीप कुफरी में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विभिन्न मौसमों में पशुओं में होने वाली बीमारियों, आवश्यक दवाओं और टीकों की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं को पशुपालन से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने पार्टी के अग्रणी संगठनों व विभागों से अपने दायित्वों को पूरी निष्ठा व ईमानदारी से निभाने का आह्वान किया है। शिमला में आज कांग्रेस से जुड़े संगठनों के पदाधिकारियों की बैठक में उन्होंने कहा कि संगठनों व विभागों के कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। रजनी पाटिल ने अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए तैयार रहने और आपसी तालमेल से कार्य करने पर भी बल दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार भी इस दौरान मौजूद रहे। इस बीच कांग्रेस महासचिव विनोद जिंटा ने बताया कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तैयार है और दिशा में रणनीति पर भी चर्चा की गई है।
3: कांग्रेस कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर पूरी तरह से 2027 के चुनाव के लिए गियर अप हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी मिशन रिपीट करने वाली है, उसको लेकर हमारी पूरी रूपरेखा तैयार हो चुकी है। कार्यकर्ताओं को हमारी प्रभारी श्रीमती रजनी पाटिल जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने, सीएम साहब ने और डिप्टी सीएम साहब ने एक मैसेज दिया है कि किस तरह से हमें जाकर फील्ड में काम करना है।
1: लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि नई ड्रेनेज नीति के तहत सड़क निर्माण में आधुनिक जल निकासी व्यवस्था अपनाई जाएगी। इसके तहत बड़े कलवर्टों का निर्माण किया जाएगा ताकि बरसात के दौरान सड़कों को नुकसान ना हो। शिमला जिले के कुमार सेन में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार जनसेवा, सुशासन और समग्र विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में कुमार सेन क्षेत्र के लिए 8 संपर्क सड़कें स्वीकृत की गई हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय युवा कार्यक्रम व खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल अभियान में भाग लिया। इस अभियान का उद्देश्य लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना और उन्हें अधिक सक्रिय जीवन शैली की ओर ले जाना है। मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने साइकिल चलाने के विभिन्न स्वास्थ्य लाभों का उल्लेख करते हुए इसे शहरों में प्रदूषण और यातायात की समस्या का समाधान भी बताया।
4: साइकिलिंग हार्ट को ठीक रखता है और बॉडी को भी फिट रखता है, सोल को भी ठीक रखने का काम करता है। एक साइकिलिंग से पॉल्यूशन का सोल्यूशन होता है, अपने स्वयं को फिट रखती है। साइकिलिंग ही ट्रैफिक का भी समाधान है, क्यों न हम साइकिलिंग करके विकसित भारत के प्रधानमंत्री जी के स्वप्न के साथ चले, यही आज आप सबसे अपेक्षा है।
1: शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2027 तक 10,000 से अधिक शिक्षकों व प्राध्यापकों की नियुक्ति का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि इनमें से करीब 8,000 नियुक्तियां पहले ही की जा चुकी हैं। मंडी जिले में द्रंग विधानसभा क्षेत्र के दयोरी में आज विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के उद्घाटन व शिलान्यास अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा और विद्यार्थियों के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी। ठाकुर ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण व आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा है कि सोलन विधानसभा क्षेत्र की प्रत्येक पंचायत में ग्रामीणों की मांग के अनुसार विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। कंडाघाट उपमंडल की ममलीक पंचायत के दोची गांव में आज जन सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है। शांडिल ने आश्वासन दिया कि नई बनी वशील पंचायत में जल्द ही पंचायत घर का निर्माण किया जाएगा। स्पीति घाटी में संस्कृति और मातृभाषा संरक्षण पर 4 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में भाषा व संस्कृति के संरक्षण पर बल दिया गया। देश भर से करीब 400 प्रतिभागी इसमें भाग ले रहे हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे जिला संवाददाता।
5: लाहौल स्पीति के रंगरेक और काजा में आयोजित राष्ट्रीय बोध सांस्कृतिक सम्मेलन से भाषा और संस्कृति संरक्षण का संदेश दिया गया। हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चर एसोसिएशन स्पीति और मुंसरिंग के संयुक्त तत्वावधान में 3 से 6 जुलाई तक चल रहे इस सम्मेलन में देश भर के विद्वान, लामा, शोधकर्ता और करीब 400 प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन में बौद्ध दर्शन, शिक्षा और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए। आयोजन समिति ने सभी वक्ताओं और प्रतिभागियों को सम्मानित किया। नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का संकल्प भी दोहराया गया। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति समय सुरेंद्र कुमार।
1: माकपा ने सरकारी विभागों में की जा रही भर्ती की नीतियों व नियमों में बदलाव का कड़ा विरोध किया है। पार्टी के राज्य सचिव संजय चौहान ने कहा कि सरकार जॉब ट्रेनी, मल्टी टास्क वर्कर, पार्ट टाइम, अंशकालिक, ठेका और आउटसोर्स आधार पर काफी कम वेतन या मानदेय पर भर्ती कर रही है, जिसमें भविष्य में रोजगार की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार की इन नीतियों से युवाओं में आक्रोश बढ़ रहा है और युवा पीढ़ी बेरोजगारी के कारण गलत कदम उठाने को मजबूर है। सिरमौर जिला भाजपा का पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण अभियान आज पौंटा साहब में संपन्न हो गया। समापन अवसर पर सांसद सुरेश कश्यप ने प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को संगठन की सबसे बड़ी शक्ति बताया और उम्मीद जताई कि ये कार्यकर्ता बूथ स्तर तक भाजपा की विचारधारा को पहुंचाएंगे। कांग्रेस सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने जनता से कई बड़े वादे किए थे, लेकिन 3.5 वर्ष बीत जाने के बाद भी अधिकांश वादे पूरे नहीं हुए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार द्वारा वीबीजी रामजी के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने विकसित भारत 2047 के निर्माण के लिए बोध मूल्यों और आधुनिक विज्ञान को महत्व देने पर दिया बल। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने पार्टी पदाधिकारियों से विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने का किया आह्वान। और राज्य में नई ड्रेनेज नीति के तहत सड़क निर्माण में आधुनिक जल निकासी व्यवस्था अपनाएगी सरकार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20। नमस्कार।
0: 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। श्रोताओं, समाचारों के साथ साथ हमारे कार्यक्रम यानी कि गुड इवनिंग धर्मशाला का समय भी अब समाप्ति की ओर है। और एक शाम हमें आज फिर से मिली आपके साथ बात करने की, आपके साथ बिताने की, और आपने भी इंजॉय किया होगा इस सफ़र को। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में अब चलते चलते आज के कार्यक्रम का आखिरी गीत आप तक पहुँचाएँगे चांदनी फिल्म से सुरेश वाडकर की आवाज़ में। सुनिए इस गीत को और इस गीत के साथ अपनी रेडियो दोस्त सुषमा को दीजिए आज के लिए जाने की अनुमति। जय हिंद।

0: बिजली बचाओ।
1: अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है, और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो। बिल भर देंगे पापा।
0: माँ, बात बिल की नहीं है, बात खपत की है। देखो, बिजली कहाँ से आती है? थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा। और पता है, इससे जो फ्लाई ऐश निकलती है वो हवा, पानी और मिट्टी तीनों को प्रदूषित करती है।
2: हमें उससे क्या?
0: उपभोग कम तो मांग कम, पावर प्लांट से प्रोडक्शन का बोझ कम। समझे?
2: आना, समझ गया।
0: मम्मा, पानी बंद करो, ये भी बिजली से ही आता है।
3: सुविधाओं का इस्तेमाल समझदारी से करें, जरूरत के अनुसार ही पानी और बिजली खर्च करें। उत्पादन का बोझ होगा कम तो सुरक्षित पर्यावरण और हम।

0: शिव की खासियत तेज चल रही है, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा।
1: तुम तो यूं ही घबरा जाती हो।
2: अच्छा, मेरी एग्जाम कब है?
1: एग्जाम?
2: हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है?
1: बेटा, ये सब माँ को पता होगा ना?
2: पापा, जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना।
3: चलो अस्पताल चलते हैं।
4: इसे निमोनिया हुआ है, सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही।
5: पार्थ, याद रखना, जिंदगी कल से शुरू नहीं होती, क्योंकि वो कल कभी आता ही नहीं। जो तुम आज नहीं कर सकते, उसे तुम कल भी कभी नहीं कर पाओगे। हम अक्सर कल के इंतजार में अपना आज खो देते हैं और फिर एक दिन बस अफसोस ही बाकी रह जाता है। अगर जीतना है तो आज से ही लड़ना सीखो, क्योंकि बहाने बनाने वालों के लिए मंजिल हमेशा दूर होती है। अपनी मेहनत को कल पर मत टालो, क्योंकि वक्त किसी का सगा नहीं होता। उठो और आज ही कुछ ऐसा करो

0: लो आ गई फायर ब्रिगेड।
1: चुप कर माँ, कितनी बार कहा है बिजली बचाओ।
2: अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है, और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो। बिल भर देंगे पापा।
1: माँ बात बिल की नहीं है, बात खपत की है। देखो बिजली कहाँ से आती है, थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा। और पता है इससे जो फ्लाई ऐश निकलती है वो हवा पानी और मिट्टी तीनों को प्रदूषित करती है।
0: हमें उससे क्या,
1: उपभोग कम तो मांग कम, पावर प्लांट से प्रोडक्शन का बोझ कम, समझे?
0: आना समझ गया।
1: मम्मा पानी बंद करो, ये भी बिजली से ही आता है।
3: सुविधाओं का इस्तेमाल समझदारी से करें, जरूरत के अनुसार ही पानी और बिजली खर्च करें। उत्पादन का बोझ होगा कम तो सुरक्षित पर्यावरण और हम।

0: आँखें इसकी खासी तेज चल रही है, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा।
1: तुम तो यूं ही घबरा जाती हो।
2: अच्छा, मेरी एग्जाम कब है?
1: एग्जाम?
2: हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है?
1: बेटा, ये सब माँ को पता होगा ना?
2: पापा, जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना।
3: चलो अस्पताल चलते हैं।
4: इसे निमोनिया हुआ है, सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही।
5: पार्थ, याद रखना, जिंदगी कल से शुरू नहीं होती, क्योंकि वो कल कभी आता ही नहीं। जो तुम आज नहीं कर सकते, उसे तुम कल भी कभी नहीं कर पाओगे। हम अक्सर कल के इंतजार में अपना आज खो देते हैं और फिर एक दिन बस अफसोस ही बाकी रह जाता है। अगर जीतना है तो आज से ही लड़ना सीखो, क्योंकि बहाने बनाने वालों के लिए मंजिल हमेशा दूर होती है। अपनी मेहनत को कल पर मत टालो, क्योंकि वक्त किसी का सगा नहीं होता। उठो और आज ही कुछ ऐसा करो कि तुम्हारा कल खुद बदल जाए।
6: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
7: हेलो।
8: हेलो सर। सर, मैं फॉर्चुनेट लॉटरी से अनुज।
7: हाँ, बोलिए।
8: बधाई हो सर, आपको 10 लाख की लॉटरी लगी है।
7: 10 लाख? सच्ची?
8: जी जी सर। एंड सर, आपको क्लेम करने के लिए सिर्फ 10,000 की रजिस्ट्रेशन फी देनी होगी।
7: 10,000 की रजिस्ट्रेशन? क्यों?
8: सर, ये वन टाइम प्रोसेसिंग फी है।
7: ओके।
8: इससे आपकी लॉटरी पे टैक्स भी नहीं लगेगा।
7: अच्छा।
8: सर, मैं पेमेंट के लिंक भेज रहा हूँ, आप उस पर ट्रांसफर कर दीजिए।
7: अच्छा, ये लिंक?
8: यस सर।
9: मछली तो फंस गई।
10: शिंगे,
11: देखो गर्मी।
10: और ये स्क्रीन का फोटो लो। हार्ड डिस्क, सारे हार्ड डिस्क उठाओ। याद रखिए, ऐसे फर्जी लॉटरी कॉल्स पे या उनसे आए मैसेजेस पे विश्वास ना करें, ना ही किसी अनजान लिंक पे क्लिक करें। तो सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
12: चलो बच्चों, खाना लग गया।
13: पर ये क्या माँ, ये तो हरी हरी सब्जियाँ हैं।
14: कुछ अच्छा नहीं बनाया।
12: अरे, ये हरी सब्जी ही है सबसे अच्छी। हरी सब्जियाँ बच्चों,

0: छह वर्ष तक के आयु के सभी बच्चे बने स्वस्थ और तंदुरुस्त।
1: सुनो तुम पढ़ी लिखी हो?
2: हाँ बिल्कुल।
1: तो मेरे एक सवाल का जवाब दो।
2: पूछो।
1: रेडियो और अखबार में क्या फर्क है?
2: सिंपल, रेडियो में रोटी नहीं लपेट सकते।
1: वाटसन यूनिवर्सिटी से पढ़ी हो?
2: हाँ, तुम्हें कैसे पता?
1: बस गेस कर रहा था।
2: तुम्हारे गेस भी
3: कहाँ से आते हैं?

दोस्तों 91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर, गीत सुहाने नए पुराने, जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ गए हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी और वो कहानी छूकर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों, आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये नए पुराने गीत हर शाम हर दिन हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को जहाँ हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

दोस्तों इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों गीत सुहाने नए पुराने।

0: लो आ गई फायर ब्रिगेड।
1: चुप कर माँ, कितनी बार कहा है बिजली बचाओ।
2: अरे 5 मिनट पहले ही तो चलाया है, और ये क्या बिजली बचाओ करती रहती हो। बिल भर देंगे पापा।
1: माँ बात बिल की नहीं है, बात खपत की है। देखो बिजली कहाँ से आती है, थर्मल पावर से। जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, और पता है इससे जो फ्लाई ऐश निकलती है वो हवा पानी और मिट्टी तीनों को प्रदूषित करती है।
0: हमें उससे क्या,
1: उपभोग कम तो मांग कम, पावर प्लांट से प्रोडक्शन का बोझ कम, समझे।
0: आना समझ गया।
1: मम्मा पानी बंद करो, ये भी बिजली से ही आता है।
3: सुविधाओं का इस्तेमाल समझदारी से करें, जरूरत के अनुसार ही पानी और बिजली खर्च करें। उत्पादन का बोझ होगा कम तो सुरक्षित पर्यावरण और हम।

0: देखिए उसकी खांसी तेज चल रही है, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा।
1: तुम तो यूं ही घबरा जाती हो।
2: अच्छा मेरी एग्जाम कब है?
1: एग्जाम?
2: हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है?
1: बेटा ये सब माँ को पता होगा ना।
2: पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना।
1: चलो अस्पताल चलते हैं।
3: इसे निमोनिया हुआ है, सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही।
4: पार्थ याद रखना, जिंदगी कल से शुरू नहीं होती, क्योंकि वो कल कभी आता ही नहीं। जो तुम आज नहीं कर सकते उसे तुम कल भी कभी नहीं कर पाओगे। हम अक्सर कल के इंतजार में अपना आज खो देते हैं और फिर एक दिन बस अफसोस ही बाकी रह जाता है। अगर जीतना है तो आज से ही लड़ना सीखो, क्योंकि बहाने बनाने वालों के लिए मंजिल हमेशा दूर होती है। अपनी मेहनत को कल पर मत टालो, क्योंकि वक्त किसी का सगा नहीं होता। उठो और आज ही कुछ ऐसा करो कि तुम्हारा कल खुद बदल जाए।
5: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
6: हेलो
7: हेलो सर, सर मैं फॉर्चुनेट लॉटरी से अनुज।
6: हाँ बोलिए।
7: बधाई हो सर, आपको 10 लाख की लॉटरी लगी है।
6: 10 लाख? सच्ची?
7: जी जी सर। एंड सर आपको क्लेम करने के लिए सिर्फ 10,000 की रजिस्ट्रेशन फी देनी होगी।
6: 10,000 की रजिस्ट्रेशन? क्यों?
7: सर ये वन टाइम प्रोसेसिंग फी है।
6: ओके।
7: इससे आपकी लॉटरी पे टैक्स भी नहीं लगेगा।
6: अच्छा।
7: सर मैं पेमेंट के लिंक भेज रहा हूँ, आप उस पर ट्रांसफर कर दीजिए।
6: अच्छा, ये लिंक?
7: यस सर।
8: मछली तो फंस गई।
9: शिंगे
10: और ये स्क्रीन का फोटो लो। हार्ड डिस्क, सारे हार्ड डिस्क उठाओ। याद रखिए, ऐसे फर्जी लॉटरी कॉल्स पे या उनसे आए मैसेजेस पे विश्वास ना करें, ना ही किसी अनजान लिंक पे क्लिक करें। तो सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
11: चलो बच्चों खाना लग गया।
12: पर ये क्या माँ, ये तो हरी हरी सब्जियाँ है।
13: कुछ अच्छा नहीं बनाया।
11: अरे ये हरी सब्जी ही है सबसे अच्छी। हरी सब्जियाँ बच्चों खाओ भरपूर, इनसे हो जाती हैं सब बीमारी दूर। हरी सब्जियों के होते फायदे बड़े, विटामिन्स और मिनरल से ये सब है भरे। 6 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चे बने स्वस्थ और तंदुरुस्त।
14: सुनो तुम पढ़ी लिखी हो?
15: हाँ बिल्कुल।
14: तो मेरे एक सवाल का जवाब दो।
15: पूछो।
14: रेडियो और अखबार में क्या फर्क है?
15: सिंपल, रेडियो में रोटी नहीं लपेट सकते।
14: वाटसन यूनिवर्सिटी से पढ़ी हो?
15: हाँ, तुम्हें कैसे पता?
14: बस गेस कर रहा था।
15: अरे गेस भी
16: कौन है? कहाँ से आते हैं?

0: तेल को छोड़ा, बिजली की रेल को छोड़ा, कल चांद और तारों में पहुंचेगा एटमी घोड़ा।
1: अरे भाई, अरे भाई,
0: अरे भाई ने

हाँ जी, अच्छा ख्याल है आपका दीदी, ये मुझको पता, अपने बाप का आपके बाप को चिट्ठी के जरिए बता दूंगा, अच्छा ख्याल है आपका।

सड़क टेढ़ी है देसी राग की ई, ई, ई, ई, ई, चल मोड़ ले टमटम गले को गर्म कर ले।

0: आते हैं
1: मेरे जूते से।
0: जूता पॉलिश करेगा, जूता पॉलिश करेगा, लेकिन तुम पर मरेगा। चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना।

0: बताओ हमको
1: दूध मरो
0: डूबेगा नहीं तरेगा डूबेगा नहीं तरेगा प्यार से हम नहीं डरेगा चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना आज हमको मोहब्बत करेगा दुनिया से नहीं डरेगा चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना आज हमको मोहब्बत

निगाहें हाय हाय ये निगाहें हाय हाय हाय ये निगाहें कर दे शराब जिसे चाहे मत।

सुन रहे हो लड़के, मैंने जब देखा मुड़ मुड़ के वाह वाह वाह, फिर दोनों के दिल धक धक धक धड़के, दोनों ने देखा मुड़ मुड़ के वाह वाह वाह। हम थे वो थी और हमारा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

खींचा आ हा हा घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा मैंने खींचा आ हा हा हमसे वो थी और हमारा रंगीन समझ गए ना जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना याने याने याने प्यार हो गया।

की आवाज बने आपका अपना रेडियो, हम सबका यही है प्रयास। दुनिया के किसी भी कोने में रहें आप सुन सकते हैं गुंजन रेडियो की आवाज। सो स्टे ट्यून्ड विद रेडियो गुंजन 91.2 FM।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर भक्ति संगीत आराधना। तो आइए श्रोताओं करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से भजन के साथ। आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 MHz पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।